समय हुआ है 5:30 और 15 सेकेंड। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं मल्लिष्का बनर्जी का गाया हुआ राग ललित।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मल्लिष्का बनर्जी का गाया हुआ राग ललित। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

0: भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta yesterday, Mr. Modi said, India follows path of development, not expansionism.
0: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर सुबह के ठीक 6:40 होने को है। आइए अब सुनते हैं चिंतन के अंतर्गत तुलसी के राम।
1: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता तुलसी के राम, वाचन स्वर और आलेख महेश वर्मा का।
2: तुलसी किसी परिचय के मोहताज नहीं, वे कालजयी व्यक्तित्व के रूप में अमर हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ने समझने वाला बहुत बड़ा वर्ग वो है जो भक्ति रस में आखंड निमग्न होकर उनकी चौपाइयों को हृदय की गहराइयों से आत्मसात करने को तत्पर रहता है। सदियों से रामकथा वाचन की लोकश्रुत शैली द्वारा रामकथा को लोक प्रसिद्धि के नए आयाम प्रदान किए हैं हमारे तुलसीदास जी ने। भक्त कवि तुलसी ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, और समस्त जग में सीताराम के दर्शन किए उन्हीं की लीला।

0: का गुणगान किया है। राम कथा को सरल ढंग से कहने की उनकी अनूठी कला ने वाल्मीकि रामायण से भी अधिक ख्याति अर्जित की है। तुलसीदास के रामचरितमानस में राम का चरित्र और उनके आदर्शों का वर्णन विस्तार से किया गया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पहलू में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन किया है। तो आइए राम के आदर्श और उनके चरित्र को रामचरितमानस के कुछ उद्धरणों से समझते हैं। पहला है त्याग और बलिदान। राम का वनवास उनके त्याग और बलिदान की मिसाल है। पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने राज्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर वनवास स्वीकार किया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल की ये प्रथा सदा से चली आई है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, करुणा और दया। राम का चरित्र करुणा और दया से परिपूर्ण है। उन्होंने हमेशा अपने शत्रुओं के प्रति भी करुणा और दया का व्यवहार किया है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अर्थात राम का चित्त कोमल है और वो अत्यंत दीनों पर दया करने वाले हैं, वो बिना ही कारण कृपालु हैं। तीसरा लक्षण जो राम को मनुष्य के सर्वोच्च लक्षणों में ले जाता है वो है मित्रता और स्नेह। राम का स्नेह और मित्रता के प्रति आदर भी उनके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। उन्होंने सुग्रीव, विभीषण और हनुमान के प्रति जो स्नेह और मित्रता दिखाई वो अद्वितीय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेउ जो जान निहारा। अर्थात राम को केवल प्रेम ही प्यारा है और हर कोई जान ले जो जानने का इच्छुक हो। उसके अतिरिक्त राम आदर्श और न्यायप्रिय राजा के रूप में भी थे। राजा राम जिनके राज्य को राम राज्य के रूप में जाना जाता है वो आदर्श शासक के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि माना और न्याय और सत्य का पालन करते हुए शासन किया। राम राज्य का वर्णन इस प्रकार है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज्य में ना कोई शारीरिक दैविक या भौतिक कष्ट था, सबो सुख शांति थे। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि राम ने अपने शासन में हर किसी को न्याय प्रदान किया। राम को मंगल भवन अमंगलहारी कहा गया है। उनका गुणगान पाप का नाशक है। विषम परिस्थितियों में कुंठाओं तनावपूर्ण माहौल में सार्थक जीवन कैसे जिया जाए, रामचरितमानस इसका प्रेरक उदाहरण है। प्रकृति और जीवन की समरसता को स्थापित करने का आधार है राम। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम के चरित्र को विभिन्न पहलुओं को इतने सुंदर और सरल तरीके से प्रस्तुत किया है कि वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राम कथा को संपूर्ण समाज के लिए ग्राह बनाकर तुलसीदास अमर हो गए और आज 500 वर्ष बाद भी घर घर में रामचरितमानस या राम की कथा कही जाती है। तुलसी के राम और उनके आदर्श हमें नैतिक और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। सत्य, धर्म, करुणा, स्नेह और न्याय जैसे आदर्शों पर चलकर हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जय श्री राम।
1: चिंतन में अभी आपने सुना तुलसी के राम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीएनएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:45 होने को है। ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को रामचरितमानस सुनवाने का। आज रामचरितमानस में आप सुनेंगे बालकांड का भाग 110। तो आइए सुनते हैं रामचरितमानस।

आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

0: इसी के साथ रामचरितमानस का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:55 होने को है। आपसे थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। सबसे पहले संस्कृत, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।

एशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7:10 और 15 सेकेंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप सुनेंगे ड्वनि वी श्रीवास्तव द्वारा गाए भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत संगीतिका। इसमें आज आपने सुने ध्वनि वी श्रीवास्तव द्वारा गाए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। वक्त हो चुका है हमारे अगले कार्यक्रम और आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का एक बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है और अगर इस खूबसूरत मौसम में खूबसूरत वादियों अगर आप हैं तो वाकई में आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं जो इतने खूबसूरत मौसम को आप एंजॉय कर रहे हैं। और हम भी धनी हैं क्योंकि हम आपके साथ हैं, आज इस कार्यक्रम के जरिए आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। यहाँ से कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूँ आपकी दोस्त अर्चना, जो आपसे आती है मिलने, आपसे रूबरू होती है और बातें करते हैं हम लोग बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी बातें। फिलहाल आज हम बातें करेंगे छोटी छोटी खुशियों के बारे में। दोस्तों, हम अक्सर बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, सोचते हैं कि जब बड़ी नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब बड़ा घर होगा तब खुश होंगे, या कुछ बहुत बड़ा अपने लाइफ में हम अचीव कर लेंगे तो ही खुश होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि असली मुस्कान तो उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, जैसे सुबह की माँ की, जब सुबह में माँ अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में उठाती है, बारिश की पहली बूंदों की खुशबू, उसमें एक अलग खुशी होती है। दोस्तों का अचानक से फोन आ जाना, और स्पेशली उस दोस्त का जो कभी आपको कहीं, मतलब कहते ना, एक भूली बिसरी यादों में रह गया है, वो दोस्त पीछे कहीं छूट गया है आपके इतने बिजी शेड्यूल के चलते, और परीक्षा में उम्मीद से ज्यादा अच्छे नंबर आ जाना या फिर किसी अजनबी का मुस्कुरा कर आपको थैंक यू कह देना, ये बस छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें आप खुशियों को ढूंढ सकते हैं। यही तो है जिंदगी की सबसे कीमती खुशियां। चलिए इसी बात पे एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। आज के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रोज पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखा करते थे, किसी ने उनसे एक दिन आकर पूछा, बाबा आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, दोस्त मैंने पूरी जिंदगी अपने जो है ना पैसे कमाने में लगा दी, लेकिन अब समझ आया कि असली खुशी तो इन हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों में थी। वाकई में इस छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए आप कितने लंबे वक्त का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने से पहले छोटे छोटे पलों को एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को अपने जो है ना यादों में सजाइए, सजोए और उन्हें एंजॉय करें।

जी हाँ दोस्तों, सच तो यही है ना कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती, उसे महसूस किया जाता है। अब जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब बिना किसी वजह के खुलकर हंसे होंगे? कब आपने किसी अपने को सिर्फ इसलिए फोन किया होगा कि उनका हालचाल पूछ सके, या फिर कब आपने किसी की मदद करके दिल से खुशी महसूस की होगी?

दोस्तों यहाँ बात चल रही है खुशी की, ये तो आप जानते हैं और ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हर दिन कुछ मिनट हंसने, आभार व्यक्त करने और अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताने से तनाव कम होता है, आपकी मुश्किलें हल होती हैं और मन अधिक शांत रहता है। तो आज एक छोटा सा वादा कीजिए, हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज जरूर ढूंढेंगे जो आपको मुस्कुराने की वजह दे। याद रखिए दोस्तों, खुश रहने के लिए जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस नजरिया बदलना ही काफी होता है।

दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हम इसे अपनी चिंताओं से बहुत बड़ा बना लेते हैं और साथ ही साथ बहुत मुश्किल भी बना लेते हैं। हम भविष्य की फिक्र में आज की खुशी खो देते हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम है दूसरा मुस्कुराना। जरा सोचिए, अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे खास दिन हो तो क्या आप इसे शिकायतों में बिताना चाहेंगे या फिर मुस्कुराते हुए?

दोस्तों कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। बात यहाँ चल रही है खुशी के बारे में, मुस्कुराहट के बारे में। मुश्किलें सबके जीवन में आती है दोस्तों, लेकिन जो व्यक्ति हार मानने के बजाय आगे बढ़ता है वही सफलता पाता है। एक छोटी सी मुस्कान भी सामने वाले के का जो दिन है ना वो बेहतर बना सकती है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद कहना सीखिए। जी हाँ, धन्यवाद कहना और आभार व्यक्त करना मन को सकारात्मक बनाता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो अक्सर अधिक खुश रहते हैं। हर दिन कुछ मिनट हंसना तनाव कम करने में मदद करता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, ज्यादा नहीं कुछ वक्त निकालिए, खुलकर हंसिए। कोई लाफिंग जो क्लब्स होते हैं, लाफ्टर क्लब्स होते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिए। खूब हंसिए, बिना किसी बात के हंसिए, बिना किसी जोक सुने हंसिए। तो आज से एक छोटा सा संकल्प जो है ना वो आप सब ले, रोज किसी एक व्यक्ति की मदद करेंगे, किसी एक अपने का हाल पूछेंगे और किसी एक बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि आखिर ये सब चीजें ईश्वर की तो ही देन है।

जी आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग. आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता. और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है आपको वक्त से अवगत कराने का. जी हाँ, 7:49 और ये हुए पूरे 40 सेकेंड्स.

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खुशी की, और खुशी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाती है। आपको उसे कहीं ढूंढना खोजना नहीं पड़ता, या आपको उसे पाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े काम नहीं करने पड़ते। बस एक बच्चे की मुस्कुराहट को देखिए, उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसमें जो खुशी छिपी है वो आपको ज़रूर दिखेगी। और उस खुशी को जब आप देखेंगे, महसूस करेंगे, तो वाकई में आपका दिन बन जाएगा। जी हाँ, चिड़ियों की चहचहाहट जब आप सुबह उठते हैं, पक्षियों की आवाज़, उसमें भी एक अलग खुशी होती है। सुबह स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, आप सुबह उठते हैं सोकर और सडनली देखते हैं कि बाहर बारिश का मौसम हो गया है। आज तो बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है, तो वो जो बारिश होने की जो खबर आपको मिलती है, उसमें जो खुशी छिपी होती है वो होती है असली खुशी। जी हाँ, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपका कोई दोस्त आपको मिल गया कि चल यार मैं तो जा छोड़ देता हूँ, स्कूल छोड़ दूँ, कॉलेज छोड़ दूँ या ऑफिस छोड़ दूँ, तो वो जो खुशी मिलती है, वो उसमें जो छुपी हुई खुशी होती है, उसे आप महसूस कीजिए। वाकई में ये खुशियाँ आपको कहीं ढूंढने पर नहीं मिलती हैं, ये खुद चलकर आपके पास आती है। तो बस ऐसी छोटी छोटी खुशियों को आप ढूंढिए और उन्हें महसूस कीजिए और खुश रहिए।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन जीने का एक खूबसूरत तरीका होता है। मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दीजिए और हर दिन में छिपी छिपी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। आई होप

ये कार्यक्रम जो है बेहद पसंद आया होगा, और ऐसे ही और कार्यक्रमों के साथ जल्द हाजिर होंगी आपकी आज की अपनी रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना, इसी संदेश के साथ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने अपनों का ख्याल रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, ध्यान रखिए अपना। बस इसी तरीके से हमें सुनते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर

0: और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप दासगुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयर ट्रंक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट स्टेरिस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में

0: आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
3: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निमटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निमटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है।

0: तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीरे आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही 33 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे 1 खरब डॉलर तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़ीरे दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनअती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पीएमओ ने मुख्तलिफ शोबों पर एल नीनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरतेहाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखीर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदाम किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलिन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमूई सूरत हाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरत हाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवसुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमेरिका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमेरिकी फौजों ने ये हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं, जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताजा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने एक लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया है, जिसके तहत अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को खत्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख्त की इजाजत दी गई थी। अमरीका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मनसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और जरूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे गजानन राव जोशी द्वारा राग देशकर में गायन का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

0: stem cell into the knee and will actually convert itself into the cartilage, thereby regenerating the knee cartilage and rejuvenating the patient. And that's where the future of orthopedics and regenerative medicine lies.
1: That's wonderful. Dr. Simon Thomas, thank you so much for joining us in the studios today and sharing so much about future of orthopedics, bone biology and emerging frontiers. We were talking to Dr. Simon Thomas, MBBS DNB Orthopedics, FJR Germany, Senior Director and Head of Robotics, Joint Replacement and Reconstruction Unit at the Max Super Speciality Hospital, Shalimar Bagh in New Delhi. And this interview came to you in our Science Magazine program broadcast from Akashvani, Delhi. Thank you, Dr. Simon Thomas. Thank you for joining us.
0: Thank you.
2: Now, this episode of Science Magazine ends reminding you science has no borders, only possibilities. Stay tuned, stay curious, and stay inspired. This broadcast came to you from Indraprastha channel of Akashvani Delhi. अभी आप सुन रहे थे साइंस मैगजीन. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि प्रातः 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश. इसमें आज आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा, तो सुनना ना भूलेगा ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और जुड़िए इस कार्यक्रम में अपने संदेशों के जरिए. फिलहाल 9:30 होने को है, वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का.

मेरे आवे मैया कादी तू तू मैं लाई है। गुरदास मान की आवाज विच हुणे तुसी ए गीत सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हां अगला गीत हरजीत हरमन की आवाज विच।

0: अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा

0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 77,816 पर, जबकि निफ्टी 139 अंक लुढ़ककर 24,260 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia, addressing Indonesian lawmakers in Jakarta. Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values and a common vision for the future. Describing India as the mother of democracy, the Prime Minister said New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
2: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
1: Prime Minister Modi is visiting the iconic Prabhamam Temple in Yogyakarta along with the Indonesian President today. The visit underscores the deep cultural and civilizational ties that have connected India and Indonesia for over 1,000 years. Built in the 9th century, Prabhamam is Indonesia's largest Hindu temple complex and one of Southeast Asia's finest architectural masterpieces. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. The Prime Minister's office held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister, Dr. P.K. Mishra, at Seva Tirth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Mr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. Domestic equity markets opened lower today, tracking weak global cues amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. Sensex opened 364 points or 0.46% lower at 77,816, while Nifty slipped 139 points or 0.57% to 24,260 in the opening trade today. Meanwhile, Asian markets traded mixed, with Japan's Nikkei

0: edging lower, while Hong Kong's Hang Seng rose more than 2%. South Korea's KOSPI was trading over 1% lower. The U.S. military has launched new strikes against Iran hours after three merchant ships were struck in the Strait of Hormuz. In a statement, U.S. Central Command said that American forces have launched strikes to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The India Meteorological Department informed that conditions are favourable for southwest monsoon to further advance into the remaining parts of North Arabian Sea, Rajasthan, Haryana and Punjab during next 2 to 3 days. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. With this win, Argentina entered the quarterfinals of the tournament. In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out for paltry score of 76 in 11.4 overs. With this win, England leads the match series 2-0. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी के कैनवास पर खुशियों का रंग बिखर जाता है। जिंदगी के कैनवास पर खुशियों का रंग बिखर जाता है जब आपकी महफिल में हमारा ये सफर आता है। यूं तो वजह ढूंढती है दुनिया मुस्कुराने की हमेशा, पर हमारा तो आपकी फरमाइशों से ही चेहरा निखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, सच कहूं तो जब भी शो का हम आगाज करते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान अपने आप ही आ जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी इस मुस्कुराहट की असली वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आपका ये साथ और आपका ये प्यार ही इस प्रोग्राम की जान है।

दोस्तों, आपकी फरमाइश हमारे पास लगातार आ रही हैं और जैसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू होता है तो आपकी फरमाइशें पूरी जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले फरमाइश पढ़ते हैं हम। ये फरमाइश हमारे पास आई है समता नगर काष्ठी से, लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे, निशांत जगताप। और ये अगली मेल है हमारे पास चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। इन्होंने हमें नमस्ते कहा है, आपको भी हमारा नमस्कार। कैथल हरियाणा से हैं जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। इन्होंने लिखा है कि हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि तीन चार लिसनर्स एक दूसरे का और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम बिगाड़ कर लिख रहे हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि फीमेल मेंबर्स का नाम भी बिगाड़ रहे हैं। तो ये तो दोस्तों बहुत गलत बात है कि जो नाम है आपका वो ही रहना चाहिए, और नाम बिगाड़ने में तो बहुत ही गलत बात है। तो ये आप थोड़ा सा सुधार करिए इसमें। और अगली फरमाइश हमारे पास है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन की, छत्तीसगढ़ से। और मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसान नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया, ये मेल भेजा है इन्होंने झारखंड से। सनावत से शेख मुखा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। और ये हमारे नियमित श्रोता।

बताता है, महसोल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, और ये हमारे प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमेशा इनकी फरमाइश हमारे पास आती है। अगला मेल है हमारे पास नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नावकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान और आशीष का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आपकी फरमाइशें हमारे पास लगातार आ रही हैं और हम बड़े उत्साह से अपना प्रोग्राम करते हैं जब आपकी फरमाइशें ऐसे हमारे पास आती रहती हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि एक फरमाइश आप एक ही बार कीजिए ताकि हम अपना समय जो है वो खराब ना

कर पाए और आप सबकी फरमाइशें शामिल हो जाएं। ये हमारे पास मेल आया है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत कमल साहनी जालंधर से, और ये हमारे पास आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का। इन्होंने लिखा है, आपको हार्दिक नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। इन्होंने लिखा है कि बेहतरीन प्रस्तुति है, बेहतरीन नगमे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत आपने जो शेर व शायरी के साथ की है तो हमें बहुत आनंद आया सुनकर, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली फरमाइश हमारे पास ये आई है किशोर कुमार, किशोर नगर अमरावती से है ये, हीरामन शीला देवी और सिद्धार्थ की। चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। हरजिंदर सिंह भाटिया की फरमाइश हमारे पास आई है, इन्होंने लिखा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। संदीप मक्कड़ और पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित, सुरेश गगनेजा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। इन्होंने लिखा है कि हम भी आपके नियमित श्रोता हैं और गुजारिश है कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, आप तो हमें हमेशा ही याद रहते हैं। चौधरी वास हरियाणा से हैं मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार। संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। और मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म संगीत आपकी पसंद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। तो फरमाइशों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे पास फरमाइशें आ रही हैं। ये फरमाइश हमारे पास आई है छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। और ये हमारे पास मेल आया है दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी का। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबेर अली खान। संदीप मक्कड़ की हमारे पास मेल आई है और ये हमारे पास मेल आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। रघुबीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। रघुबीर नगर से फिर से यही हमारे पास मेल आया है। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, किशन वंजानी, इनका हमारे पास मेल आया है और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है, गीत भी पसंद के हैं और ये गीत भी बहुत हमें अच्छा लगा, तो शुक्रिया आपका। शीशपाल वर्धान का गाजियाबाद से ये हमारे पास अगली फरमाइश आई है अहमद फूल वाले। इन्होंने लिखा है कि आपको आदाब नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है और मेरे मेल को जरूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल, हमने आपके मेल को शामिल कर लिया है। और ये हमारे पास मेल आई है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर।

0: मोहम्मद अलकमा, खत्री मोहम्मद अल्तमस की। किशन वंजानी की फिर से हमारे पास मेल आया है, तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।
1: मैं फौज छोड़ देना चाहता हूँ सुमन, क्योंकि ये मेरे उसूलों को तोड़ फोड़ कर मुझ में कैसी आत्मा भर देना चाहती है जो हिंसा और मारपीट में विश्वास रखती हो। एक तरफ मन कहता है कि किसी की जान लेना पाप है और हमेशा दूसरे के दुख पर तड़पता है, और दूसरी तरफ ये फौजी वर्दी एक ऐसे फर्ज में जकड़ लेने की कोशिश में है कि मौका आने पर एक निशान बेशुमार जाने लेने के लिए मजबूर करते हैं। क्या ऐसा वक्त आने पर मैं फर्ज के सामने अपने अहिंसा के नियमों को ठुका सकूंगा, मैं कह नहीं सकता।

ये दोस्तों हमारे पास अगली फरमाइश आई है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज घोरवाल, कमला रानी, गीतिका घोरवाल, भानु प्रकाश और दिल्ली से हैं प्रकाश गोगिया। और ये फरमाइश आई है बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुरिधान खुराना। और शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल। उत्तम नगर दिल्ली से ही बोधराज घोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। उत्तम नगर ये फिर से हमारे पास फरमाइश कर रहे हैं श्रोताओं, ये आपसे गुजारिश है कि अपनी मेल एक ही बार भेजें, क्योंकि हम फिर से फिर वही पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें भी परेशानी होती है। जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी। श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, पर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत समय के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बदलना भी ज़रूरी है। और हमारे पास मेल आ रहे हैं लगातार, और ये हमारे पास अगला मेल आया है पटियाला पंजाब से, सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु का। और पत्रोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से हैं मंगल जनागत, रोशनी जनागत, अंकुर इंदु और डॉक्टर सुनील। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, इनका मेल आया है बागपत उत्तर प्रदेश से। सुदर्शन मुखी, अनीता मुकुल, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, नवीन, सौरव शर्मा और शैना और मैंडी शर्मा। मुरादाबाद गांव दूलापुर से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। हिसार से हैं इशिता, दैविक, सचिन कुमार, वीना रानी, रश्मि, आदित्य, अविनाश, पीयूष और जितेंद्र। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

था, पर समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है तो अब आपके मेल हमें आने लगे हैं, पहले चिट्ठियां आती थी, तो समय तो भाग ही रहा है दोस्तों। तो फरमाइश पढ़ते हैं आपकी, दिग्दर्शन और कविता गोर इनकी फरमाइश आई है मेरठ कैंट से, महाराष्ट्र से हैं संतोष खट से और विनोद खट से, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान और अरजान अब्बासी, रोहिणी दिल्ली से हैं सतप्रकाश गोयल, इन्होंने बहुत ही सुंदर एक शेर लिखा है, सादा जीवन ही सबसे सुंदर गहना है, सादा जीवन ही सबसे सुंदर गहना है, हर हाल में खुश और शांत रहना है, मिले जो भी मोड़ इस सुहाने सफर में उसे मुस्कुरा कर खूबसूरत जिंदगी कहना है। वाह, बहुत ही अच्छा लिखा इन्होंने, शुक्रिया आपका। अमरावती महाराष्ट्र से हैं प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ और हागोणे परिवार। पंकज शर्मा की हमारे पास मेल आई है, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और हरिपल। सरथना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवियम जैन। हरियाणा से हैं अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश, जीविका। पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, फिरोजपुर पंजाब से। किशनगंज बिहार से हैं रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, प्रमिला भावसार, भावेश सत्री भावसार, अजीत भावसार, वीरमगाम से। चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, हंसते रहिए कि महफिल में बहार रहे, हंसते रहिए कि महफिल में बहार रहे, आपका और हमारा यूं ही अटूट प्यार रहे। आज का सफर अब यहीं थमता है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे ताकि ये सिलसिला बरकरार रहे। इसी के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रांबानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रांबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रांबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की

कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरला में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 11:10 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरस।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुरमंजरी कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन राग मियां की तोड़ी में।
1: नमस्कार, अभी मैं राग मियां की तोड़ी बजाऊंगा। ये राग मियां तान सेन से बना हुआ है। ये रागों में आरोही अवरोही है, लाइक दिस।

ये मॉर्निंग राग है, ये राग मियां की टोड़ी ठाट तुड़ी का मेन राग है। अब बहुत ही मेलोडियस राग है, बहुत सुंदर राग है। कहा जाता है सम्राट अकबर का ये सबसे पसंद किया राग है, जो तानसेन हमेशा उनको सुनाते थे। तो अभी इसमें मैं छोटा आलाप जोड़ देन मसीद खानी गत एंड रजा खानी गत बजाऊंगा, जो दो गत तीन ताल में निबद्ध है। उसका बाद एंड में झाला बजाऊंगा। मेरा साथ तबला में संगत कर रहे हैं पंडित अनूप घोष जी। तो आप लोग सुनिए राग मियां की टोड़ी। धन्यवाद।

अंतर्गत सुरमंजरी कार्यक्रम में अभी आप चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन सुन रहे थे राग मियां की तोड़ी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के 80 से अधिक

0: London.
1: घर आंगन के आज के शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला और
2: मैं हूँ रश्मि कुकरेती।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.1 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: तो मंजुला, शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत ख्याल से। शिक्षा ने महिलाओं को सिर्फ डिग्री या नौकरी ही नहीं दी है, बल्कि सबसे बड़ा उपहार दिया है, वो क्या है?
1: आजादी।
2: नजरिया। वो नजरिया जो पूछना सिखाता है, क्या ये सही है, क्या मैं यही चाहती हूँ, और मैं तो कहूंगी ये ही है असली आजादी, है ना?
1: जी हाँ। तो आजादी दीजिए थोड़ी देर के लिए अपनी सभी परेशानियों, जिम्मेदारियों को, और अब याद कीजिए बस अपने खुशियों से भरे सपनों को, अपने बचपन को। तो आज का सवाल है, बारिश के मौसम में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बारिश में भीगना, कुछ गुनगुनाना, या फिर कुछ? और अपने जवाब हमें लिखकर भेजिए इस ईमेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com।
2: तो बने रहिए हमारे साथ, जहां हर पल मिलेगा मनोरंजन, नई जानकारी और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली ढेर सारी बातें।
1: बिल्कुल।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया से। और दोस्तों, जब भी मौसम विभाग बारिश, तूफान या गर्मी की सटीक जानकारी देता है तो हम अक्सर सिर्फ मौसम का हाल सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में मौसम विज्ञान को इतना भरोसेमंद बनाने के पीछे किन लोगों का योगदान रहा? तो आज बात करते हैं भारत की वेदर वुमन अन्ना मणि की।
1: वाह, तो मुझे लगता है तुम जो बताने जा रहे हो अन्ना मणि के बारे में वो बहुत हम सुनेंगे। और जैसा कि तुम क्या बता रही थी, हम आ रहे थे स्टूडियो में, कि वो बचपन से किताबों की दीवानी थी, है ना। और आठवें जन्मदिन पर पता है उन्होंने क्या चीज मांगी?
0: क्या?
1: एनसाइक्लोपीडिया।
0: क्या बात है। हाँ। तो यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें भारत की महान वैज्ञानिकों में शामिल कर गई
1: और उनको नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के साथ उन्होंने शोध किया और बाद में मौसम विज्ञान विभाग में जुड़कर मौसम मापने वाले उपकरणों के विकास में क्रांतिकारी योगदान उन्होंने दिया।
0: और उस दौर में भारत मौसम संबंधी उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अन्ना मणि ने स्वदेशी उपकरण विकसित कर इस निर्भरता को काफी हद तक समाप्त किया।
1: और सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण शोध किए। उनके काम ने न केवल मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाया बल्कि भारत में सौर और पवन ऊर्जा के विकास की भी मजबूत नींव रखी।
0: बिल्कुल। और लेकिन अन्ना मणि की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी उपलब्धियां नहीं थी दोस्तों। उन्होंने एक बार कहा था कि हम अवसरों का इंतजार नहीं करते, हम उन्हें अपने काम से बनाते हैं। और ऐसे समय में जब विज्ञान की दुनिया में महिलाओं की मौजूदगी बहुत कम थी, अन्ना मणि ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से साबित कर दिया कि सपनों की कोई लैंगिक सीमा नहीं होती।
1: बिल्कुल। तो मंजुला, अगली बार जब आप मौसम की सटीक जानकारी के लिए अपने मोबाइल या रेडियो तक पहुंचे तो उस सफर में अन्ना मणि जैसे वैज्ञानिकों के योगदान को जरूर याद करिएगा।
0: बिल्कुल याद करूंगी।

0: और अभी हम सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत जिसको गाया था सुलक्षणा पंडित ने और अनवर ने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से।
1: और मंजुला, अभी जब तुमने ये वेदर वमन नमणि जी की बात की और साथ में गीत लगाया, बड़ा सुंदर गीत चुना तुमने सुलक्षणा जी का गाया हुआ। सच में इतनी खूबसूरत अभिनेत्री और देखिए कितनी विलक्षण प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, कितनी सुंदर मीठी उनकी आवाज, एक शास्त्रीय संगीत से जुड़े घर से आती है। जतिन ललित उनके भाई प्रमुख संगीतकार रहे हैं और पंडित जसराज उनके चाचा जी हैं, और ये मधुर गीत बता रहा था कि ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जब महिलाओं में होती हैं तो वो अलग से ही चमकती हैं, है ना?
0: बिल्कुल सही। और देखिए, जब हमने बात की कि मेल के बारे में कि क्या विषय है, तो इसके बारे में हमारे पास जवाब भी आने लगे। हनी रे ये लिखती है कि आई लाइक टू सिट नियर विंडो, यानी ये खिड़की के पास बैठना पसंद करती है, वहां पे एक कप चाय या फिर नॉवेल पढ़ना पसंद करती हैं। और मैं कहूँ कि मेरा भी कुछ ऐसे ही शौक है तो मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे में गाना सुनना।
1: हाँ, और एक और मेल आई हुई है चौधरीवास जिला हिसार से, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रियांशी, वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में मैं इधर से उधर पेड़ों के नीचे से गुठली उठाकर कहीं पर जगह दिखे तो लगा देता हूँ। भाई वाह, सबसे बड़ी दौलत यही है कि पेड़ पौधे बुरे से बुरे आदमी को भी छांव देते हैं। और एफएम गोल्ड की तारीफ करना मेरे बस की बात नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सबसे पहले मैंने ही ईमेल भेजनी शुरू की थी। भाई वाह, क्या बात है, इनकी जो कोशिश है वो काबिले तारीफ है। मंजुला, हम पर्यावरण के प्रति सतर्क रहें और बारिश तो क्योंकि समय वन महोत्सव भी चल रहा है ना, और ये समय है कि आप नए नए पौधे लगाएं, नए नए एफर्ट्स भी करें, है ना?
0: बिल्कुल। और अंशु माला जी ने लिखा है कि बारिश की बूंदे जब मेरी हरी भरी बालकनी पे पड़ती है तब गिली मिट्टी की एक नॉस्टैल्जिक महक हवा में घुल जाती है, उस टाइम दिल बस एक ही मेमोरी में बार बार लौट आता है।
1: क्या बात है, मुझे भी बारिश की मिट्टी की सौंधी

0: गंदी खुशबू मंजुला बहुत पसंद है। और अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि बेटियों को भी कुछ चीजें सिखानी चाहिए, जैसे कि नो का मतलब नो होता है और बाउंड्रीज उन्हें जरूर बताएं। उन्हें सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं है, उन्हें जिंदगी जीने की सही समझ और अपने लिए खड़े होने का साहस भी सिखाना बहुत जरूरी है। बचपन से ही उन्हें बताइए कि ना एक पूरा वाक्य होता है। अगर किसी बात पे इंसान या किसी परिस्थिति में उन्हें सहज महसूस नहीं हो रहा है तो उनका ना ही काफी है, उन्हें किसी को सफाई देने या वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी, उन्हें मुखर बनाइए, उन्हें अपनी बाउंड्री सीमाएं तय करना सिखाइए। हर किसी को अपनी निजी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। अपनी भावनाएं, अपनी बातें और अपनी परेशानियां भाई हर किसी के साथ साझा करना भी समझदारी नहीं होती मंजुला।
0: बिल्कुल, और आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बेटियों को ये भी समझाइए कि वहां जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं होता। अपनी निजी तस्वीरें, लोकेशन, रोजमर्रा की गतिविधियां या हर छोटी बड़ी बात सार्वजनिक करने से बचें। इंटरनेट पर एक बार गई जानकारी हमेशा के लिए रह सकती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजुला। मैं तो ये कहूंगी कि कभी किसी पार्टी या समारोह पर या किसी जगह पर हो तो उन्हें एक पल के लिए भी ये लगे कि माहौल ठीक नहीं है या लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं या वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो भाई उनको बिना किसी झिझक के वहां से निकल जाना चाहिए। यही सही फैसला है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बुरा मान जाए, या उनको देखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा किसमें है ना।
0: और उन्हें ये भी सिखाइए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। भरोसेमंद लोगों के फोन नंबर याद रहें, आपातकालीन सेवाओं की जानकारी रखें और अपने मन की आवाज पर भरोसा करना सीखें।
1: भाई आत्मरक्षा सिर्फ हाथों की ताकत थोड़ी होती है, सही समय पर सही फैसला लीजिए। अगर ये समझ है तो मैं तो कहूंगी ये सबसे बड़ी सुरक्षा है ना मंजुला।
0: बिल्कुल, तो आइए अपनी बेटियों को सिर्फ अच्छे अंक और अच्छी नौकरी ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्ट सीमाएं और सुरक्षित जीवन जीने के कौशल भी दें, क्योंकि सशक्त बेटी ही सुरक्षित बेटी होती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आंगन की कली से, और बारिश की फुहारे, मिट्टी की खुशबू और चाय की चुस्कियां, मॉनसून का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन बताइए, क्या इस मौसम में आपके बाल भी ज्यादा टूटते हैं या स्किन अचानक ऑयली और डल हो जाती है? अगर जवाब हाँ है तो आज की ये छोटी सी बात, छोटे मोटे जो टिप्स है, आपके बहुत काम आने वाली है।
1: और शुरुआत मैं करने वाली हूँ वो टिप्स का। भाई, सबसे पहले बालों की देखभाल की बात करते हैं। कोशिश कीजिए कि बारिश के पानी से बालों को बचा कर रखें, है ना। अगर बाल भीग जाएं तो घर पहुंचकर उन्हें साफ पानी से धो दें और अच्छी तरह सुखाने के बाद ही बांधें।
0: बिल्कुल, और एक आसान सा DIY हेयर सीरम भी आजमाइए।
1: मुझे बताओ, ये मैं सुनना चाहती हूँ बहुत अच्छे से।
0: एक स्प्रे बॉटल में पानी भरें और उसमें 2-3 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और 2-3 बूंद टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलाइए। हर हेयर वॉश के बाद इसे बालों की लंबाई पर हल्का सा स्प्रे करें। इससे बाल फ्रेश, मैनेजेबल और स्कैल्प भी तरोताजा महसूस होगी।
1: और जब मंजुला तुमने बालों की बात की तो चेहरे को हम कैसे छोड़ सकते हैं ना।
0: चलिए, अब मैं सुनती हूँ ध्यान से क्या बताने वाली है।
1: भाई, हर रात चेहरा साफ करने के लिए कॉटन की मदद से राइस वाटर लगाइए अपने चेहरे पर। हाँ, और इसे रात भर रहने दो। ये आपकी जो त्वचा है उसको बिल्कुल प्राकृतिक ग्लो देगा और उसे हाइड्रेट रखने में भी मदद करेगा।
0: बिल्कुल, और हाँ, खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं आती। भरपूर पानी पीजिए, प्रोटीन और मौसमी फलों को अपनी प्लेट में जरूर जगह दीजिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसका नूर चेहरे और बालों पर अपने आप दिखाई देता है।
1: क्या बात है, जुल्फों पर बात हो रही है। मुझे लगता है तुम्हारा गाना भी जरूर जुल्फों से जुड़ा हुआ होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो एक छोटी सी कविता मैं सुना दूं?
0: बिल्कुल, इंतजार कर रही हूँ, कब सुनाने जा रही है।
1: बारिश का मौसम है तो मुस्कुराना भी जरूरी है, खुद का ख्याल रखना और हर बहाना भी जरूरी है।
0: बाल हो या चेहरा, प्यार थोड़ा खुद से कीजिए, क्योंकि हर मौसम में आपका खिलखिलाना भी जरूरी है, चाहे चेहरा हो या बाल।

0: अभी हम सुन रहे थे यसुदास और लता मंगेशकर को फिल्म त्रिशूल से, और मुझे लग रहा है कि रश्मि जी मेल्स चेक कर रही हैं।
1: जी बिल्कुल, मेल्स की तो बारिश हो गई है यहाँ जबरदस्त। हाँ, और तो उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि भाई मैडम जी हमें तो बारिश में चाय पकौड़े खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। देखो चाय पकौड़े किसको नहीं अच्छे लगते ना बारिश में।
0: और गौरी शंकर जी लिखते हैं, आप दोनों बेटियों को राम राम, और आज का जो सवाल है बहुत ही बढ़िया पूछा, मौसम के हिसाब से अब तो खैर उम्र चली गई लेकिन बचपन में बारिश का इंतजार करते थे, घंटों घंटों नहाते थे, तबीयत खराब हो जाए या हमारे खाने के लिए चीली बना देती थी, खुश रहते थे, अच्छा लगता था।
1: और कामायनी लक्ष्मी नगर से कह रही है कि मुझे तो बस बारिश की बूंदों को गिरते देखना बहुत पसंद है, जब हरे हरे पौधों और पत्तियों पर फूलों पर गिरती है ना तो बहुत अच्छा लगता है।
0: और सुदर्शन मुखी जी लिखते हैं कि बचपन और बारिश दोनों का चोली दामन का साथ है, बचपन में कागज की कश्ती चलाना, गलियों में दौड़ लगाना, हमारे बच्चों के जो मीठी यादें हैं बचपन की वो अभी भी याद आती है।
1: और अनिल जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं मुझे बारिश में भीगना और रोस्टेड कॉर्न खाना पसंद है। भाई मुझे भी बहुत पसंद है अनिल जी।
0: बिल्कुल, तो एक बार फिर से सवाल भी बता दें और ईमेल आईडी भी। हमारा आज का सवाल है कि मॉनसून में बारिश में आपको क्या सबसे अच्छी बात लगती है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। किटी पार्टी नाम तो सुना होगा
1: भाई, यहाँ बारिश और वहाँ किटी पार्टी, भाई क्या कॉम्बिनेशन है गजब।
0: तो नाम सुनते ही हंसी ठिठोली गपशप और ढेर सारी मस्ती याद आ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार वही म्यूजिकल चेयर, वही ड्रेस कोड, वही पुराने गेम्स, तो कहीं ना कहीं इस खूबसूरत मिलन को थोड़ा सा दोहराव वाला तो नहीं बना देते
1: भाई। म्यूजिकल चेयर और वही ड्रेस कोड, पुराने गेम, कहना क्या चाहती हो मंजुला?
0: तो मैं इस बार चाहती हूँ क्यों ना अपनी किटी पार्टी में एक फ्रेश बदलाव लेकर आया जाए। सबसे पहले ड्रेस कोड का दबाव छोड़िए, हर व्यक्ति अपने पसंदीदा कपड़ों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सहज महसूस करता है। जब सभी कम्फर्टेबल होंगे तब उनकी मुस्कान भी सच्ची होगी और बातचीत भी दिल से निकलेगी। फैशन से ज्यादा जरूरी है आपका अपनापन।
1: और अब मैं कुछ गेम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि गेस द पर्सनैलिटी जैसा एक गेम हो, या इमोजी क्विज हो, या पिक्चर पजल हो, या फिर मेमोरी चैलेंज हो, पर मुश्किल से गेम्स है लेकिन आप कर सकते हैं ट्राई। और उसके बाद टीम बनाकर छोटे छोटे दिमाग लगाने वाले खेल खेले जाएं, क्योंकि खेल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि जो हमारे सोचने की क्षमता है, टीम वर्क को और बातचीत को भी बढ़ाते हैं। और अगर चाहे तो एक छोटा सा टैलेंट कॉर्नर भी रख सकते हैं ना, कोई कविता सुनाए, कोई गाना सुनाए, कोई ट्रैवल स्टोरी साझा करे, और कोई आसान सी रेसिपी भी बताए, या फिर कोई लाइफ हैक शेयर करे। यकीन मानिए हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है।
0: और एक और खूबसूरत आइडिया है नॉलेज एक्सचेंज। हर सदस्य 5 मिनट में कोई नई जानकारी, किताब, हेल्थ टिप या निवेश की छोटी सी सीख या किसी नए स्किल के बारे में बताएं। सोचिए एक किटी पार्टी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का मंच भी बन सकता है।
1: और एक सबसे जरूरी बात मैं मंजुला कहना चाहती हूँ, भाई तुलना नहीं होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए है ना, आलोचना भी नहीं होनी चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए जहाँ हर सदस्य खुद को महत्वपूर्ण महसूस करे। क्योंकि यादगार पार्टियां जो होती है ना वो महंगे डेकोरेशन से नहीं बनती बल्कि अच्छे माहौल से और खूबसूरत यादों से बनती है ना।
0: बिल्कुल, तो अगली बार जब किटी पार्टी हो सिर्फ मेन्यू नहीं, सोच बदलिए, कुछ नया जोड़िए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे से सीखिए और ऐसी यादें बनाइए जो तस्वीरों से नहीं दिलों से जुड़ जाए।
1: हाँ, और आप पंछी बनकर गगन में उड़ने लगे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनाड़ी से, और एक ईमेल हमारा इंतजार कर रहा है पढ़ने के लिए। महेश अग्रवाल जी लिखते हैं कि रश्मि जी नमस्कार, आप दोनों को बालकनी में बैठकर मौसम का आनंद लेना, चाय की चुस्की और समोसे के साथ आनंद लेना चाहिए। चलिए हम ले लेंगे बाद में, अभी तो पूरे मानसून पड़ा हुआ है।
1: और साथ में एक और बड़ी खूबसूरत सी मेल आई है, रमीशा जैन है आप, वो कह रही है कि अगर मुझसे पूछा जाए वर्षा ऋतु की सबसे प्रिय बात क्या है, तो वो कहती हैं कि मेरा उत्तर होगा कि महाराष्ट्र के घाटों की हरियाली और उस समय ज्योतिर्लिंग यात्रा करने का अनुभव। भाई भाई क्या बात है, वर्षा के दिनों में वो कहती है सहयाद्री पर्वतमाला का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है और चारों ओर फैली हुई हरियाली और पर्वतों को अपनी गोद में समेटे हुए बादल, छोटी छोटी जलधाराएं, शीतल वायु मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने स्वयं को नए रूप में सजा लिया है। जब बादल धीरे धीरे पर्वतों और वनों को घेर लेते हैं तो वह दृश्य शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। वाह, मुझे विशेष रूप से वर्षा ऋतु में महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना बहुत पसंद है। भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों की ओर जाते हुए घुमावदार घाटों से होकर गुजरना अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव है। और मार्ग के दोनों ओर फैले हुए वन, पर्वतों से गिरते हुए असंख्य जलप्रपात और धुंध से ढके हुए शिखर, भाई वाह, यात्रा को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का साधन ही नहीं रहने देते बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक आनंद का संगम बना देते हैं। भाई मैं तो ये कहूंगी
0: बहुत खूबसूरत, और पता है रश्मि

0: जी मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ, और ये मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे होंगे, वो भी महसूस कर रहे होंगे। जब आप ये बातें बता रही थी, ये पढ़ रही थी, तो हम सब अपने दिमाग में उसको कल्पना कर रहे थे।
1: बिल्कुल रमीशा,
0: सामने ये सब हो रहा है।
1: रमीशा जैन जी, हम ये कहेंगे कि आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं, आपने तो शब्द चित्र बना दिया, आंखों के सामने वो चित्र घूमने लग गए, शब्द तैरने लग गए। ऐसा ही लिखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है घर आंगन। और मेल करते रहिए, मेल बताएंगे मंजुला दोबारा।
0: हाँ, मेल बता देती हूँ, पहले तो विषय जो हमारा प्रश्न है वो बता दूं कि बरसात में आपको क्या करना अच्छा लगता है और बरसात की सबसे अच्छी बात कौन लगती है। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और अभी जो आपने ये मेल पढ़ा वो ऐसा लग रहा था जैसे रिमझिम के तराने बज रहे हों।

0: अभी हम सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म काला बाजार से।
1: और बारिश की बातें हो रही हैं और हमारे पास मेलों की भी बारिश हो रही है, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। रोनी सेक्टर 8 से संजय कुमार, पुनीत रावत, विजय परवीन कुमार, प्रदीप, अरुण शिवा और ईशा कह रहे हैं कि वर्षा में हरियाली और मिट्टी की सुगंध का बस मजा ही आ जाता है और परिवार के साथ बैठकर बारिश का आनंद ले या घूमना हो तो वो कहते हैं देहरादून जाना उन्हें बहुत पसंद है।
0: क्या बात है। नहीं, देहरादून सच में बारिश में बहुत खूबसूरत
1: जी, देहरादून और मसूरी।
0: और अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गुणों के लिए हम हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं वही खजाना हमारे अपने खेतों, हमारी रसोई और आयुर्वेद में सदियों से मौजूद है। तो चलिए करते हैं दिलचस्प तुलना। अकाई बेरी, जिसका नाम आपने सुना होगा, या आंवला, तो अकाई बेरी को रोगों से लड़ने वाला जो तत्व है उसका भंडार कहा जाता है, लेकिन हमारे आंवले में विटामिन सी कई गुना अधिक होता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, त्वचा, बाल और पाचन सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। और कीमत, जितने में अकाई बेरी का एक छोटा पैकेट आता है उतने में एक किलो ताजा आंवला मिल जाता है।
1: और इसके अलावा जो केल यानी कि केल या सहजन यानी मोरिंगा के पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और केल तो दुनिया कहती है सुपर ग्रीन कहलाती है, थोड़ा महंगा होता है पर इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो। लेकिन हमारे जो अपना जो देसी सहजन के जो पत्ते हैं ना भाई, वो कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन और

0: पोटेशियम से भरे हुए हैं और पोषण के मामले में ये किसी भी विदेशी सुपर फूड से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी मंजुला कई बातों में वो आगे ही है ना।
1: बिल्कुल सही क्या। और कोरियन जिनसेंग की बात बहुत होती है, लेकिन हमारा अश्वगंधा भी कम नहीं है। तनाव कम करने के लिए कोरियन जिनसेंग काफी लोकप्रिय है। वहीं अश्वगंधा सदियों से आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा रहा। आधुनिक शोध भी बताते हैं कि ये तनाव कम करने, अच्छी नींद लाने, ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है।
0: और क्रेनबेरी और कोकम, भाई क्रेनबेरी जो है उसकी जूस की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन जो कोकम है वो भी रोगों से लड़ने वाले तत्वों से भरपूर है और ये शरीर को ठंडक भी देता है और पाचन में मदद भी करता है और गर्मियों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक पेय है। और मैं तो ये कहूंगी मंजुला, कोकम शरबत है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी इसकी रेसिपीज भी, अगर महाराष्ट्र कोंकण रीजन की बात करें तो जब मैं बंबई प्रवास में रही तो बहुत सुंदर सुंदर बट मीठी मीठी डिशेज जो है वो मैंने वहां पे मुझे खाने का अवसर मिला। वाकई ये अच्छा हम लोगों ने आज लिया है कोकम को।
1: और जापानी माचा का नाम तो बहुत है, लेकिन हमारे हल्दी दूध भी कम नहीं है दोस्तों। और कहते हैं कि रोगों से लड़ने वाले तत्व इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। हल्दी में पाए जाने वाले कर्क्यूमिन प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने वाले सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक गिना जाता है।
0: जी बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं कर्क्यूमिन। भाई हमने बचपन में भी हल्दी तेल का तो खूब प्रयोग किया ही है त्वचा के लिए, और दूध में हल्दी डालकर भी हम लोगों ने पी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक स्टाइलिश नाम चाहिए तो हम इसको वैसे भी आजकल हल्दी टर्मरिक लाते भी तो बोलते हैं।
0: बिल्कुल जी, जो हम घर में माँ और दादी हमें बनाकर देती थी ना दूध उबालकर हल्दी, रात को कहती थी भाई चोट लगी है तो इसे पी लो, अंदर की चोट ठीक हो जाएगी, तो उसका जो थोड़ा सा फैंसी सा सजा धजा जो नाम है वो है टर्मरिक लाते, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हम तो ये कहेंगे भाई सेहत का मतलब मंजुला केवल महंगे लेबल नहीं है बल्कि पोषण है, सही पोषण है ना।
1: बिल्कुल सही। और विदेशी सुपर फूड अच्छे हो सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारतीय विकल्पों से बेहतर हो,
0: और क्योंकि भारतीय विकल्प तो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं हमारे, अधिक ताजे हैं, स्थानीय हैं, किफायती हैं और पोषण से भरपूर है ना।
1: और इसलिए अगली बार जब कोई इम्पोर्टेड सुपर फूड की चर्चा करे तो एक नजर अपनी रसोई और अपने खेतों की ओर भी जरूर डालिए, क्योंकि सुपर फूड विदेश में ही नहीं हमारी अपनी थाली में है। स्वस्थ रहिए, स्वदेशी अपनाइए और समझदारी से चुनिए।

0: मन पे जादू की छड़ी में संग आंख लड़ी रे।
1: और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मधुमति से।
2: और मेरे पास एक और संदेश आ गया है मंजुला वीरम गांव गुजरात से। अजीत भावसार जी कह रहे हैं कि मुझे तो बरसात की याद आ रही है और मरीन ड्राइव पर घूमना याद आ रहा है और अच्छे खान पान के स्टॉल पर गरम गरम वड़ा पाव की मौज लेने की याद आ रही है। भाई वाह। और एक और संदेश हमारे पास आया है, सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है मयूर विहार से। वो कहती है कि बारिश के बाद आसमान में खिलता हुआ इंद्रधनुष मुझे बहुत पसंद है, ऐसा लगता है सुंदर रंगों से आसमान पर मुस्कान उकेर दी। और वो कहती है कि ये सिखाता है जिंदगी में चाहे कितनी भी बारिश हो, मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद रंगों से भरी एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है। इसे जब भी इंद्रधनुष दिखाई देता है तो मैं कुछ पल रुककर उसे निहारना नहीं भूलती। और एक बात और मैं कहूंगी मंजुला, कि ये कार्यक्रम आज हमने बिल्कुल बारिश के गीतों पर रखा, बारिश की बातें करी। हम कहेंगे कि भारत में, हमारे देश में संतुलित बारिश रहे, सब जगह बारिश हो और अन्न धन के देवता प्रसन्न हो, हमारे देश विकास की प्रगति पर चलता रहे।
1: बिल्कुल सही। आप सबका मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को, फिल्म है प्यासा सावन।
1: और इसी के साथ मंजुला अपने इस कार्यक्रम को, इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, खुश रहिए और दूसरों की मुस्कान का कारण बनिए।
0: दीजिए मंजुला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5

तो मैं आपकी होस्ट और दोस्त रिया, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे वो 1982 में बनी एक हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम रोग है, जिसका निर्देशन और निर्माण राज कपूर ने किया था और पटकथा जैनेन्द्र जैन और कामना चंद्रा ने लिखी थी। ये फिल्म एक प्रेम कहानी है और मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह और समाज में महिलाओं की स्थिति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में पद्मिनी कोल्हापुरे मनोरमा यानी रमा की भूमिका में हैं और ऋषि कपूर देवधर यानी देव के किरदार में शामिल हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, 30 जुलाई 1982 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रोग उस वर्ष में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सुभाष घई की फिल्म विधाता के बाद इस फिल्म ने कमाई में दूसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही फिल्म का संगीत बहुत ही शानदार और सदाबहार रहा। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी द्वारा रचित था और गीत संतोष आनंद, नरेंद्र शर्मा और आमिर कजलबश द्वारा लिखा गया था। तीसवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में राज कपूर साहब को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए, पद्मिनी कोल्हापुरे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और संतोष आनंद जी को गीत मोहब्बत है क्या चीज के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए। बाकी और 8 कैटेगरीज फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड रहे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी सुपरहिट रही होगी।

श्रोताओं, फिल्म प्रेम रोग की लेखिका कामना चंद्रा की ये पहली फिल्म थी। कामना चंद्रा ने अपनी माँ से एक रियल लाइफ कहानी सुनी थी। उन्होंने ये कहानी राज कपूर साहब को सुनाने का फैसला किया। उन दिनों राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे। जब कामना चंद्रा ने ये कहानी राज साहब को सुनाई तो पहले वो और बाकी लोग उनके बात से सहमत नहीं हुए, पर बाद में राज साहब ने फिल्म बनाने का फैसला किया। पर कामना चंद्रा की कहानी अधूरी थी। फिल्म के इंटरवल के बाद जो कुछ भी दिखाया गया है उसे राज कपूर साहब ने खुद से जोड़कर फिल्म की कहानी को पूरा किया और नतीजा ये निकला कि फिल्म एक मिसाल बन गई।

श्रोताओं, इस फिल्म में ऋषि कपूर ने अपनी सादगी भरी और दिल छू लेने वाली अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने किरदार में मासूमियत और मजबूती दोनों को बड़ी खूबसूरती से निभाया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तब वो महज केवल 17 वर्ष की ही थी। इसके साथ शम्मी कपूर जैसे कलाकारों ने भी कहानी को गरिमा और गहराई दी।

श्रोताओं, प्रेम रोग सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये समाज में संवेदनशीलता और बदलाव का संदेश देने वाली फिल्म थी। समीक्षकों की सराहना और व्यावसायिक सफलता दोनों ही इस फिल्म को मिली, जिसने राज कपूर साहब की विरासत को और मजबूत किया। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारने वाले सीन के लिए 8 रीटेक लेने पड़े थे। फिल्म में शमी कपूर ने राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म में पहली बार काम किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस में 25 हफ्ते तक चली थी और सिल्वर जुबली साबित हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुब्यांतो नाल योग

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के

0: आईटीआईजीए की 13वीं मीटिंग की मेजबानी कर रहा है ताकि आसियान भारत तिजारती समझौते का मजीद जायजा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतालिका मीटिंगें इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें कुछ अरकान वहां मौजूद हैं जबकि बाज़ अरकान वर्चुअल तरीके से मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनअत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत जेली कमेटियों को उनके काम से मुतल्लिक शोबों के बारे में कलीदी नवीयत की रहनुमाई फराहम हुई है। ब्रिक्स मुल्कों के खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। यह इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नजदीक देही तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तग़ज़िया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में ख्वातीन की क़यादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ईरान ने अपने सूबे होर्मुज़गान और बंदरगाही शहर महाशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीका की फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फिजाइया ने अमरीका के 85 फौजी ठिकानों पर मिजाइल और ड्रोन से मुश्तरका कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा है कि सायरन बजने के बाद पनाहगाहों में चले जाएं। इससे पहले अमरीका ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। उधर खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ है क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने वेनेजुएला में 24 जून को आए दोहरे शदीद जलजले के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वहां भारत की जानिब से भेजी गई इमदाद की तौसीक करने के लिए वेनेजुएला हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत में शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के बारे में टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान जनाब शाह ने सूरत हाल से निमटने में वजीर आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से भी रियासत में शदीद बारिश और पानी जमा होने से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती सरकार को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वैंकूवर में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक मैच में अटलांटा में अर्जेंटीना मिस्र को 2-3 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ़ में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की 2 रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया है। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta.

0: अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगे। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज

0: कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे यह भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR

0: न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त हो रहा है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा के किस्से सुनाएंगे जिन्होंने अपनी मासूमियत, चुलबुले अंदाज और बेहतरीन एक्टिंग की बदौलत दर्शकों के दिलों पर राज किया। इनका फिल्मी सफर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुआ और फिर एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतू सिंह जी की। आज ही के दिन यानी 8 जुलाई 1958 को नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ। आकाशवाणी की तरफ से इन्हें जन्मदिन की

ढेरों सारी शुभकामनाएं। नीतू सिंह का फिल्मी करियर और पर्सनल लाइफ बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही, इस बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे उनकी फिल्म से एक गीत और फिल्म का नाम है यादों की बारात।

0: की जो हमारी कलाकार हैं वो है नीतू सिंह और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीतू सिंह का असली नाम हरनीत कौर है। इनका जन्म पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। पिता का नाम दर्शन सिंह और मां का नाम राजी कौर सिंह था। जब नीतू सिंह बहुत छोटी थी तब इनके पिता का निधन हो गया था। फिर इनकी मां राजी ने पूरे परिवार को संभाला, आर्थिक तंगी का सामना भी किया और यही वजह थी कि नीतू ने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। महज 8 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इनकी पहली फिल्म 1966 में रिलीज हुई सूरज, जिसमें इन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई। फिल्म में इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। इसके बाद इन्होंने बहुत सी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिसमें 10 लाख, 2 कलियां, वारिस और पवित्र पापी शामिल है। 2 कलियों में इन्होंने बहनों का डबल रोल किया था, जिसकी बहुत तारीफ हुई। फिर आगे चलकर कैसे इन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर सक्सेस पाई, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पर फिलहाल वक्त हो गया है इनकी फिल्म दीवार का ये रोमांटिक सॉन्ग सुनने का।
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?
1: कह

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की

0: बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं नीतू सिंह, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत नीतू सिंह ने 1973 में फिल्म रिक्शावाला में लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई। ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली। फिर इसी साल नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में इनके डांस नंबर ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिर इन्होंने दीवार, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर जैसे हिट फिल्मों में अपनी चुलबुली और रोमांटिक एक्टिंग से दर्शकों को एंटरटेन किया। नीतू सिंह ने वैसे तो कई एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर किया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ इनकी जोड़ी बेहद खास थी। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया और उस दौर की ये जोड़ी सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गई। आगे ये जोड़ी कैसे रियल लाइफ में भी हिट हुई जानेंगे, पर वक्त हो गया है फिल्म खेल खेल में का ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुनने का।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो कलाकार हैं हमारी वो हैं नीतू सिंह। नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने बहुत सी फिल्मों में साथ काम किया। इस दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और 1980 में इन्होंने शादी कर ली। नीतू और ऋषि के दो बच्चे हैं, बेटी रिधिमा कपूर सहानी और बेटा रणबीर कपूर। रिधिमा एक फैशन डिज़ाइनर है और दिल्ली के बिजनेसमैन भरत सहानी से इनकी शादी हुई है। बेटा रणबीर कपूर बॉलीवुड का एक सफल एक्टर है। शादी के बाद नीतू ने करियर के पीक पर होने के बावजूद एक्टिंग से संन्यास लेने का फैसला किया और करीब 26 साल बाद वापसी की। क्या नीतू सिंह का कमबैक सफल साबित हुआ, ये हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म रफू चक्कर का ये दिलकश सा गाना।

आकाश में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं नीतू सिंह, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आपके प्यारे प्यारे मेल हमारे पास आ गए हैं तो उसे भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है हमारे पास ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुलराल और अविराज जी का, और ये है पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन। ये लिखते हैं होस्ट राखी बनर्जी जी, गुड आफ्टरनून। हम भी इस शो में बने हुए हैं एक ही कलाकार में, नीतू जी की बेहतर जानकारी मिल रही है। नाइस सॉन्ग, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आगे बढ़ते हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी का मेल है, और ये है साहजी बोखड़े, श्रीमती नंदा हनुमान, हिंगोली महाराष्ट्र से, और ये हैं गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी का। और आगे बढ़ते हैं, और ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखते हैं आदरणीय राखी बैनर्जी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं एक जिसमें आज आप बात कर रही हैं अभिनेत्री नीतू सिंह की उच्च कोटि की प्रस्तुति, रोचक जानकारियां, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। ज्योति मक्कर, मन्नत भरत और कमल पिंगावाला चौक से हैं, और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार। संबल फाकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और आगे बढ़ते हैं, अमर रमेश कुमार खत्री जी हैं, और ये है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, नीतू सिंह पर केंद्रित आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और ये है हर्षित, जय, तेजस और मीना, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, बेडी नाना जी तामसे से। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि करीब 26 साल के गैप के बाद जब नीतू सिंह ने 2009 में फिल्म लव आजकल में एक कैमियो रोल के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की, ठीक इसके अगले ही साल 2010 में इन्होंने फिल्म दो दुनी चार में अपने पति ऋषि कपूर के साथ लीड रोल किया। सालों बाद भी इन दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब मनोरंजन किया। फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और नीतू जी की एक्टिंग की तारीफ हुई। फिर इन्होंने जब तक है जान फिल्म में भी एक कैमियो किया। बेशरम फिल्म में अपने बेटे रणबीर और ऋषि कपूर के साथ एक्टिंग की। आगे इन्होंने जुग जुग जियो फिल्म में भी एक स्ट्रांग रोल निभाया है। नीतू सिंह के कमबैक से ये साबित कर दिया कि प्रतिभा कभी फीकी नहीं पड़ती। नीतू सिंह को इनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 2012 में इन्हें मुंबई के बांद्रा बेस्ट स्टैंड में वॉक ऑफ द स्टार्स में शामिल किया गया, जहां इनके हाथ के निशान को रिजर्व किया गया। ये दो बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। मौजूदा दौर में नीतू सिंह बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं और बहुत से रियलिटी शोज में भी एक्टिव हैं। वाकई में नीतू सिंह का एक सदाबहार अदाकारा रही, जिन्होंने अपने जीवन और करियर दोनों में असाधारण छाप छोड़ी है।

दोस्तों प्रियतमा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ ही एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद हम जुड़ेंगे आपके साथ मैटिनी मेलोडीज में।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का। तो अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार स्वीकार कीजिए और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। जब भी हम 50 और 60 के दशक के गाने सुनते हैं तो दिल को एक अलग सा ही सुकून मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन खूबसूरत गानों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी दिलचस्प कहानियां और कितने अनसुने राज छिपे हुए हैं। आज तो एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए ढेर सारी तकनीकियां मौजूद हैं, लेकिन उस दौर में कलाकारों के पास ना आधुनिक मशीनें थी और ना ही कंप्यूटर, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए जो आज भी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगले आधे घंटे में हम खोलेंगे

गोल्डन एरा की कुछ ऐसी ही सीक्रेट रास, जिसे सुनकर आप आज इन गानों को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से सुनेंगे। तो चलिए रेडियो की वॉल्यूम को थोड़ा सा अपना बढ़ा लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके साथ। आज की हमारी पहली कहानी है जुड़ी हुई है गानों की रिकॉर्डिंग से। आजकल क्या होता है कि अगर गिटार वाले ने गलती की तो सिर्फ गिटार दोबारा से रिकॉर्ड हो जाता है, सिंगर ने गलती की तो सिर्फ सिंगर की लाइनें ठीक कर दी जाती हैं। इसे कहते हैं मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग। लेकिन 50 और 60 के दशक में ऐसा नहीं होता था। उस समय पूरा ऑर्केस्ट्रा, सारे म्यूजिशियन और गायक एक साथ खड़े होकर लाइव रिकॉर्डिंग करते थे। लेकिन जरा सोचिए, लगभग 100 कलाकार मिलकर गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में किसी ने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो पूरा गाना फिर से शुरू। कई बार तो एक गाने के लिए दर्जनों टेक लेने पड़ते थे, तब जाकर एक परफेक्ट गाना बनता था। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही फिल्म से सॉन्ग और याद करते हैं उसके पीछे छिपी हुई मेहनत।

श्रोताओं, अभी आपने मधुमति फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे शानदार गायिका शमशाद बेगम जी की। उनकी आवाज़ इतनी दमदार और बुलंद थी कि जब वो माइक के पास गाती थी तो रिकॉर्डिंग में आवाज़ बहुत तेज आ जाती थी। इसलिए रिकॉर्डिंग इंजीनियरों ने एक अनोखा तरीका निकाला। रिकॉर्डिंग के वक्त बाकी

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त और होस्ट राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें मेल करके जरूर बताएंगे। और आपको हमारा मेल आईडी तो पता ही होगा, IPRADIODELHI@gmail.com। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बाहर फिल्म के इस गीत के बाद आप सभी ने राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 का वो मशहूर गाना तो सुना ही होगा, रमैया वस्तावैया। गाना तो बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हिंदी नहीं बल्कि तेलुगु भाषा के शब्द हैं, जिसका मतलब है राम क्या तुम आओगे। अब आपको बताती हूं ये गाना कैसे बना। कहते हैं कि संगीतकार शंकर जयकिशन, राज कपूर और गीतकार शैलेंद्र एक बार मुंबई के बाहर घूम रहे थे। वहीं पास में एक तेलुगु ढाबा मालिक को ये शब्द गुनगुनाते हुए सुना था और उन्हें इतना पसंद आया कि इस शब्द को अपने गाने का हिस्सा बना दिया। और नतीजा क्या हुआ, आज 70 साल बाद भी ये गाना हर भारतीय की जुबान पर है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज। दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, अब एक और मजेदार किस्सा हम आपको बताते हैं। ये किस्सा है एक संगीतकार के दो पहचान के बारे में। महान संगीतकार श्री रामचंद्र को आप सभी जानते हैं। 50 के दशक में श्री रामचंद्र अपनी बेहद गंभीर क्लासिकल और संजीदा धुनों के लिए जाने जाते थे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके पास सिर्फ इमोशनल गानों के लिए आते थे, लेकिन रामचंद्र साहब के अंदर एक चुलबुला और मॉडर्न सिंगर भी छिपा था जो वेस्टर्न और रॉक एंड रोल गाना चाहता था। अब परेशानी ये थी कि अगर वो ऐसे मजाकिया गाने गाते तो उनकी क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टर वाली जो इमेज थी वो खराब हो जाती। तो उन्होंने

तगड़ा रास्ता निकाला। जब भी वो कोई हल्के फुल्के फनी या वेस्टर्न अंदाज के गाने गाते तो क्रेडिट्स में अपना नाम अन्ना चितलकर लिखवाते थे। सालों तक दुनिया को पता ही नहीं चला कि ये एक ही इंसान की दो अलग पहचान है। तो चलिए सुनते हैं उनके इसी सीक्रेट अवतार का एक बेहद मज़ेदार और खूबसूरत सा गाना।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किशोर कुमार जी की। किशोर कुमार का नाम आते ही उनकी योडलिंग की याद आ जाती है। कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में किशोरदा जैसा योडलिंग आज तक कोई भी सिंगर नहीं कर पाया। लेकिन क्या आपको पता है कि किशोरदा ने ये अनोखा स्टाइल कहाँ से सीखा? कहते हैं उनके भाई अनूप कुमार के विदेशों से लाए हुए कई वेस्टर्न म्यूजिक के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, जैसे विदेशी गायक जिमी रॉजर्स और टेक्स मार्टिन की रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। किशोरदा को वो गाने बहुत पसंद थे। किशोरदा चुपके से वो रिकॉर्ड सुनते और लगातार प्रैक्टिस करते। यही आगे

चलकर उनकी पहचान बनी और भारतीय संगीत को एक बिल्कुल नया अंदाज मिला। तो आइए सुनते हैं किशोरदा की उस जादुई यॉडलिंग का एक एवरग्रीन सॉन्ग।

जी हाँ श्रोताओं, 5 रुपया 12 आना ये गीत था, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। तो श्रोताओं, आज का आखिरी जो कहानी है वो जुड़ा है महान फिल्मकार गुरुदत्त साहब से। साल 1959 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, कागज के फूल। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उनका प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल मुश्किल दौर से गुजरने लगा। उनके पास अगली फिल्म करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन और स्टूडियो भी बंद होने के कगार पे था। ऐसे डूबते हुए वक्त पे उन्होंने साल 1960 में एक फिल्म बनाई, चौधवी का चांद। गुरुदत्त साहब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही इस फिल्म का टाइटल ट्रैक रेडियो पर रिलीज हुआ था, लोगों के दिलों में बस गया। फिल्म सुपरहिट हुई और कहते हैं कि इस सफलता ने गुरुदत्त साहब के स्टूडियो को नई जिंदगी दे दी। इसे कहते हैं संगीत का असली ताकत। तो चलिए इसी गीत को सुनते हैं।

श्रोताओं, आज के मैटिनी मेलोडीज में बस इतना ही। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प किस्सों और बेहतरीन गीतों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए गीत सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ।

में इतनी मोहब्बत करो कि वो तुम्हें हासिल हो जाए, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए, और अगर शौक सच्ची लगन और नेक जज्बे के साथ मेहनत करने के बावजूद नाकाम हो जाओ तब भी कभी मायूस मत होना। रोशनी का ख्वाब हमेशा देखते रहना और उसकी ताबीर के लिए कोशा रहो। अटूट मेहनत के बावजूद कामयाबी तुम्हारे दर से होकर अगर नहीं गुजरे तो उस काम का पीछा मत छोड़ देना। उस वक्त दिल को समझा लेना कि वो खुशी जो तुम्हें नहीं मिली वो तुम्हारे लिए नहीं थी। ये सोचकर अपने मकसद में लग जाओ। नाकामी से तजुर्बा मिलता है, नाउम्मीदी नहीं, इसलिए कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। आज कहकशा और सीमा के साथ दिखने वाली तनु ने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत और मुरव्वत और हमदर्दी जैसे लफ्ज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। जज्बाए उल्फत और अपनायत का कोई वजूद होता है, मैं ये कतई नहीं मानती। सीमा और कहकशा ने तन्नू की एकतरफा सोच को अपने रखरखाव और अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से बदलने का पक्का इरादा कर लिया था। तन्नू पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार नहीं थी, इसलिए उसकी तरफ टीचरों की तवज्जो भी कुछ ज्यादा नहीं थी, जबकि कहकशा और सीमा दोनों दोस्त होने के बावजूद इम्तिहानात के नतीजे में एक दूसरे पर सबकत का जज्बा दिल में रखती थी। पढ़ते पढ़ते दोनों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। कहकशा चाहती थी कि अगर मेरी तालीम और खेल कूद में शिरकत का जज्बा उन बेटियों में से किसी एक की मिसाल बन जाए जिन्हें यौम जमहूरिया के मौके पर इनाम मिले हैं, तो मैं खुद को खुश नसीब जानूंगी। कई ऐसी बेटियां हैं मुल्क में उनकी धूम मची है, मैं चाहती हूं जैसा कि उन बेटियों को नाज है तो कल जरूर मेरी सताइश की जाए। मुझे यकीन है अगर मैं भी पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी तो मुझे एजाजो इकराम से भी नवाजा जाएगा। मैं भी लेडी फातिमा बन सकती हूँ जिन्होंने जज का ओहदा संभाला जो इस बावकार ओहदे पर फाइज हुई। वही सीमा की ख्वाहिश थी मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, मैं भी मुल्क की खिदमत करूं, समाजी ढांचे में अपनी शमूलियत यकीनी बनाऊं। तनु पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेती थी, उसे तो बस बड़ा बनना था। एक दिन तनु ने मुनासिब मौका जानकर क्लास में साथ बैठने वाली लड़की से पूछ ही लिया कि क्या तुम्हारे पापा घर पे हैं और मैं उनसे मिल सकती हूँ। उसने कहा क्यों नहीं, लेकिन तुम मिलकर क्या करोगी। तनु ने कहा मेरी मम्मी कहती हैं बड़ों से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा से कुछ मशवरा लूं और आगे तरक्की करूं, आखिर वो भी तो मेरे बारे में कुछ सोचते ही होंगे। बचपन से मैं देख रही हूँ पड़ोसी होने के नाते हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी है, लेन देन भी है, खुशी और गम में भी बराबर एक दूसरे के शरीक होते हैं, वो भी तो आखिर मुझे देखते होंगे और कुछ मेरे बारे में सोचते होंगे। उसने कहा मैं तो तुम्हारे बारे में किसी किस्म का ख्याल भी नहीं करती, सबकी अपनी मर्जी, कोई कोर्स करे, आगे बढ़े, जॉब करे, वो भला क्यों सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे इर्द गिर्द तो कहकश और सीमा होती है, उन दोनों को तुम्हारा मेरे साथ होना शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी मैंने तुम्हारी तरफ साथी के सिवा और किसी नजर से देखा तक नहीं। तन्नू उसे अपनी हमराज समझ बैठी थी, अब क्या था। तन्नू के पैर कुछ देर के लिए लड़खड़ाए, वो जिस अनजाने शहर के घनेरे आबादी नुमा जंगल की हरियाली में सुई की तरह गुम थी वो उसे अपनी अजनबियत का एहसास दिलाने वाली थी। तन्नू के ख्वाबों का जहान खत्म होने वाला था क्योंकि उसकी बुनियाद लालच पर टिकी थी। बचपन से स्कूल में साथ बैठने और पढ़ने वाली लड़की को भी ये पता नहीं था कि उसके वालिद का क्या कारोबार है, इसलिए तन्नू के कुछ सवालों में से बेशतर के जवाब वो ना दे सकी। उधर तन्नू ने अपनी मंजिल पाने में जिस लगन का मुजाहिरा किया था वो देखने के लायक था, लेकिन बगैर पहली सीढ़ी पर पैर रखे तो छत के ऊपर नहीं पहुंचा जाता। कहकशा और सीमा की बेजा मोहब्बत का तनु ने मजाक तो नहीं उड़ाया, हाँ मगर दोनों को एहसास कमतरी का शिकार बनाने में कमी भी ना छोड़ी थी। ये दूसरी बात है कि कहकशा और सीमा ही इससे हर एक मैदान में आगे थी। पढ़ने में भी उन दोनों की तनु से हमेशा अच्छी पोजीशन रही। उन दोनों की आंखों में उस रोशनी के ख्वाब बसे थे जिससे समाज का भला होता है, जिन कामों को समाज के कल्याण के नाम से जाना जाता है। जिन दिनों कहकशा, सीमा, तन्नु एक साथ क्लास में पढ़ते थे उनके साथ एक बॉबी नाम का लड़का भी पढ़ता था। क्लास में साथ बैठने वाले बच्चों ने बताया कि बॉबी उन आवारा और गलत लड़कों के साथ खड़ा होने लगा है जो कई

मर्तबा पुलिस से थप्पड़ खा चुके हैं। पढ़ाई में भी वो कोई खास दिलचस्पी नहीं लेता था। तन्नू के तरफ उसका बढ़ता रुझान कुछ और ही इशारे करता है। सुना है तन्नू की दोस्ती अब बॉबी से होने वाली है, जो उसे मुख्तलिफ मोबाइल गेम के सहारे बड़ा आदमी बनाने के ख्वाब दिखा रहा है। कहकशा और सीमा को फिक्र हुई कि हमारा एक साथी, जिसे हमने अपनी मोहब्बत से बदलना चाहा था, अब वो इस अंधेरी दुनिया में जा पहुंचेगा जहां से रोशनी का भी गुजर नहीं होता। इसलिए अभी इसी वक्त हमें कुछ करना होगा। हम जिस रोशनी का ख्वाब सजाए बचपन से बड़े होकर स्कूल और अब कॉलेज में पहुंचे हैं, वो रोशनी मद्धम ना हो जाए। कहकशा ने और सीमा ने अपने घर जाकर तन्नू के ताल्लुक से सारी जानकारी अपने वालदैन को दी और दोनों ने तन्नू से मिलने की बात करते हुए उनको दिलासा दिलाया। एक दिन मौका पाकर तन्नू को कहकशा और सीमा ने अपने साथ ही कर लिया और तयशुदा प्लान के मुताबिक जहां कहकशा और सीमा के माँ बाप पहुंचे हुए थे, वहां तन्नू, कहकशा, सीमा और तन्नू भी पहुंच गए। इस बात का तन्नू को जरा सुराग नहीं लगने दिया कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जब तन्नू ने कहकशा और सीमा के माँ बाप को वहां देखा तो वो घबराई और इस वक्त तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में आने लगे, क्योंकि तन्नू ने गलत साथियों की सोहबत जो इख्तियार कर ली थी। वो नहीं जानती थी कि इसके इर्द गिर्द साए की सूरत रहने वाली उसकी बेहतरीन दोस्तों में से एक जज और दूसरी आला पुलिस ऑफिसर बनने के ख्वाब सजाए हुए हैं। जो ख्वाब उन्होंने देखा है उसे वो हकीकत में बदलने वाली है। इल्म की वो रोशनी जिसका ख्वाब बचपन में देखा करती थी, जिसके बहुत से किस्से उन्होंने अपने बचपन में अपनी दादी अम्मा की जुबानी सुने थे, अब वो हकीकत में बदलने वाला है। बुराई का खात्मा न सिर्फ तन्नू की जात से करने वाली है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाने वाली है। तन्नू से बात करते हुए वो सब अपने असल मकसद पर आ गईं, जहां तन्नू को ये बताना उन दोनों की मंशा थी कि अगर पढ़ने लिखने में इतनी दिलचस्पी ली होती जितनी दौलत पाने में ली है, तो आज उन बदनाम साथियों और खास तौर से बॉबी नाम के लड़के के साथ तुम्हारा शुमार नहीं होता। कहकशा और सीमा ने कहा, अभी वक्त है कि तुम उससे दूरी अपनाओ और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने की फिक्र से उसी अंदाज से करो जिसकी नसीहत हर स्कूल और पाठशाला में की जाती है। हर एक माँ बाप जिस रास्ते से दूरी बना के चलने का मशवरा अपने बच्चों को देते हैं, तनु तुम भी उसी रास्ते पर चलोगी तो हमें खुशी होगी। लेकिन कहकशा और सीमा ने कभी अपने वालदेन से ये नहीं बताया था कि जो बातें समझाने और सीधे रास्ते पर लाने की नीयत से वो तन्नु से कर रहे हैं, इस तरह की बातें प्राइमरी के दौर से उन दोनों ने हमेशा तन्नु से की हैं। मोहब्बत, मुरव्वत और हमदर्दी से पेश भी आई हैं, मगर तन्नु में एक जरा तब्दीली नहीं आई। दुनिया में मोहब्बत से सब कुछ मुमकिन बनाया जा सकता है, ये पढ़ा है और सुना है, लेकिन हम तन्नु को बदलने में अभी तक नाकाम हुए हैं। तन्नू के सोच में तब्दीली न आने की वजह उसका वो बचपन था, जिसका खतावार ये समाज था, जिसकी अंधी पैरवी वहां के लोग क्या करते थे। कैसा जमाना आ गया है, धर्म मजहब की बातें करने वाले और नेक पारसा बने दिखने वाले भी हर किसी से मोहब्बत से पेश नहीं आते। तन्नू को बचपन से एक ही उमंग थी और वो उमंग थी दौलत की, जिसके बल पर वो हर एक चीज पाने का दावा करती थी। उसने बॉबी की चंद दिनों की सोहबत में जाकर देख लिया था कि पैसा वाकई बड़ी चीज है, इसलिए लालच जहन में रखकर अगर दुनिया में जिया जाए तो हर्ज ही क्या है। कहकशा और सीमा के वालदेन ने ठंडे दिमाग से समझाने के तौर पर कई मिसालें ऐसी भी तन्नू को दी जिन्हें टेलीविजन चैनल पर खबरों के जरिए सारे मुल्क में आम किया जा चुका था, जिनके बारे में हर एक को जानकारी थी। तन्नू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पड़ोसी मुझे किस लिए समझा रहे हैं। नौजवानी में अक्सर बड़ों की बातें बुरी महसूस होती हैं, तन्नू को भी ऐसी बुरी लगती रही। कहकशा और सीमा के वालदेन ने अपनी औलाद की तरह दस्ते शफकत रखते हुए आखिरी कोशिश भी तन्नू को दुरुस्त राह पर लाने, सुधारने की नीयत से कर डाली, लेकिन उस पर उसका कोई असर ना हुआ। इस तरह तन्नू, कहकशा और सीमा की राह उस दिन से अलग हो गई। आज मुल्क में कहकशा और सीमा यानी दोनों बच्चों की तरक्की की मिसाल दी जाती है और हक के तालीम के साथ हुकूमत हिंद की तालीमी पॉलिसियों का भी जिक्र किया जाता है, जिनके जरिए दिगर बच्चियां पढ़कर आगे बढ़ रही हैं और समाज में एक मकाम बनाने में कामयाब हो रही हैं। अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में तन्नू नाकाम रही, न दौलत हासिल हुई और न आला तालीम हासिल कर सकी। बढ़ती उम्र के साथ रस्म और रिवाज के धागों में बांध दी गई, यानी उसकी शादी हो गई। कहकशा जज बनी और सीमा

0: इसकी आला ऑफिसर। इस तरह इल्म की रोशनी का दोनों का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और दोनों बच्चियों ने बड़े होकर अपने माँ बाप और मुल्क का नाम रोशन किया।
1: सामीन, अभी आप मोहतरमा आफिया खान से उनका अफसाना सुन रहे थे। अफसाने का उनवान था रोशनी का ख्वाब। आइए सामीन, पंकज उदास की आवाज में गजल सुनते हैं। कलाम है मुमताज राशिद का।

0: सामीन, अभी आप पंकज उदास की आवाज में गजल सुन रहे थे। कलाम था मुमताज राशिद का। सामीन, कबीर का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। बकौल रहीम, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। सामीन, दोहा हिंदी और उर्दू शायरी की एक मकबूल सिंफ है। दो मिस्रों में शायर कोई गहरी बात, नसीहत, फलसफा, अखलाक या जिंदगी के किसी अहम पहलू को नहायत सलीस और मौसर अंदाज में बयान करता है। कबीर, रहीम और तुलसीदास के अलावा अमीर खुसरो और बाबा फरीद के दोहे मशहूर हैं। आज भी दोहे लिखे जा रहे हैं जिनमें जमीलुद्दीन आली, अजमतुल्ला खां, निदा फाजली, जफर गोरखपुरी, निगार सिद्दीकी वगैरह शामिल हैं। आइए सामीन, इसी सिलसिले में जनाब मुजफ्फर हुसैन गजाली से उनकी तकरीर सुनते हैं। मौजू है उर्दू में दोहे की रिवायत।
1: दोहा उर्दू अदब की शेरी रिवायत का एक ऐसा हीरा है जिसकी जड़ें इस धरती की मिट्टी, सकाफत और अवामी शऊर में बहुत गहरी हैं। अगरचे दोहा बुनियादी तौर पर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से होता हुआ हिंदी शायरी का तुर्रे इम्तियाज बना, बाद अजां यही सिंफ ब्रज भाषा, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी और दीगर शुमाली हिंद की जबानों में मकबूल हुई, क्योंकि उर्दू जबान की पैदाइश, तश्कील और इर्तका का हिंदी ब्रज भाषा और खड़ी बोली से गहरा ताल्लुक है। इसलिए जब उसने इन जबानों से फैज हासिल किया तो दोहा भी उसके अदबी सरमाए का हिस्सा बन गया। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, रसलीन, रहीम, कबीर, गुरु नानक, मीरा जी वगैरह ने दोहे की रिवायत को आगे बढ़ाया। 20वीं सदी में उर्दू शायरों ने दोहे को दोबारा जिंदा किया। उस दौर के शोरा ने हिंदी रिवायत और उर्दू की लिसानी हुस्न को उर्दू के लिसानी हुस्न को मिलाकर दोहे तख्लीक किए। दोहे की सबसे बड़ी खसूसियत इख्तसार, मानवियत, सादगी, रवानी, असर आफरीनी। दोहा सिर्फ दो मिसरों का नाम नहीं बल्कि ये समुद्र को कूजे में बंद करने का फन है। दोहे की अपनी मखसूस बहर और मात्राई तरतीब होती है। रिवायती तौर पर पहले तीसरे हिस्से में 13 मात्राएं जबकि दूसरे और चौथे हिस्से में 11 मात्राएं शुमार की जाती हैं। उर्दू में दोहे की रिवायत इतनी ही कदीम है जितनी खुद उर्दू जबान की तारीख। हजरत अमीर खुसरो को उर्दू और हिंदी का मुश्तरका असासा माना जाता है। उन्होंने फारसी के साथ साथ हिंदी, हिंदवी में भी तबा आजमाई की। उनके दोहे तसव्वुफ, हिजर व विसाल और लोक रंग का बेहतरीन नमूना है। उनका ये दोहा तारीख के सफात पर अमर है जो उन्होंने अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के इंतकाल पर कहा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, सांझ भई चहुदेस। इस दोहे में जो सोज, सादगी और गुदाज है वो उर्दू शायरी की रिवायत का खमीर बन गया। कुरूने वस्ता में भक्ति तहरीक और सूफिया इकराम के पैगाम को

0: रहेगा मिट्टी में मिल जाए। उर्दू दोहे की रिवायत को आगे बढ़ाने में जिन अहम शोरा ने अपना खून जिगर सर्फ किया उनमें पड़तो रोहेला, जफर गोरखपुरी, निदा फाजली, सत्यपाल आनंद, मुजफ्फर हनफी, बशीर बद्र, शफीक खलिश काबिल जिक्र हैं। निदा फाजली के दोहे जदीद दौर की उलझनों, शहरी जिंदगी की तनाई और रिश्तों के टूटने फूटने की अक्कासी करते हैं। उन्होंने फलसफे को आम जिंदगी के मजाहिर से जोड़ा। बच्चा बोला देख कर मस्जिद, आलीशान अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। जफर गोरखपुरी के दोहों में एहतजाजी रंग दिखाई देता है। उन्होंने दोहे को समाजी नाइंसाफी और गरीब की आवाज का तर्जमान बनाया। उनके दोहों में तलखी और सच्चाई कूट कूट कर भरी है। 21वीं सदी में भी उर्दू दोहे की रिवायत थमी नहीं है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मुशायरों के जरिए दोहा अब भी अवाम के दिलों को छू रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क के मुआसिर शोरा इस सिंफ में मुसलसल नए तजुर्बात कर रहे हैं। आज का दोहा सिर्फ प्रेम और अतम की बात नहीं करता बल्कि ये ग्लोबलाइजेशन, कंप्यूटर के दौर की तनाई और सियासी मुनाफ़त पर भी कारी ज़र्ब लगाता है। मिसाल के तौर पर जदीद दौर के तनाजुर में ये दोहा देखें, क्लिक किया और खुल गए दुनिया के सब बाब, लेकिन अब इंसान को आते नहीं है ख्वाब। जायजे से अंदाजा होता है कि उर्दू में दोहे की रिवायत इस बात का बयन सबूत है कि उर्दू जबान किसी एक सकाफत या खित्ते की जागीर नहीं बल्कि ये एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब की अमीन है जो हर खूबसूरत रंग को अपने अंदर जर्ब करने की सलाहियत रखती है। अमीर खुसरो से शुरू होने वाला ये सफर जमीलुद्दीन आली और निदा फाजली से होता हुआ आज के दौर तक जारी है। दोहे ने उर्दू शायरी को वो सादगी, नगमगी, जमीनी सच्चाई अता की है जो फारसी ज़दा असनाफ में बाज़ औकात मफकूद हो जाती है। मौजूदा दौर में जब मुख्तसर मगर बा मकसद इजहार की जरूरत बढ़ रही है, दोहा पहले से ज्यादा मौसर सिंफ बनकर सामने आ रहा है। इसलिए ये कहना बजाना होगा कि दोहा सिर्फ माजी की अदबी मीरास नहीं बल्कि उर्दू अदब का वह रोशन चिराग है जिसकी लौ हमेशा मिट्टी की खुशबू और इंसानियत के एहसास से मुनव्वर रहेगी।
1: सामीन, अभी आप जनाब मुजफ्फर हुसैन गजाली से उनकी तकरीर सुन रहे थे। मौजू था उर्दू में दोहे की रिवायत। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। अपनी मेजबान नसरीन बेगम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रम्बनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रोबोवो ने कहा कि प्रम्बनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और एक यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
4: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।

0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों के दौरे की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हो गया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज बारिश से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जल भराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के अगले दो तीन दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के साथ हुआ समझौता अब प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी ईरान से बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta along with the Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva Temple. In a joint statement, President Prabowo said that Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing at the Prambanan Temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 4:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। खोए हुए पुरुष का पूरा नाम श्याम सिंह है। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 65 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 4 इंच है। हाल पता सेक्टर 24 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 24 नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम रितिका है। इन्हें अंतिम बार 21 मई 2026 को ग्राम अछेजा में देखा गया। इनकी आयु 21 वर्ष है। रंग गेहुआ है एवं कद 5 फीट 3 इंच है। इन्होंने अंतिम बार पर्पल रंग का सूट एवं सलवार पहना था। रितिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना बादलपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम शिवानी है। ये राम किशोर की पुत्री है। इन्हें अंतिम बार जेजे कॉलोनी सेक्टर 8 नोएडा में देखा गया। शिवानी की आयु 20 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है। कद 4 फीट 5 इंच है एवं रंग गोरा है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम नेहा है। ये जगदीश की पुत्री हैं। इन्हें

अंतिम बार ककराला में देखा गया। इनकी आयु 23 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट है। इनका रंग गोरा है। नेहा अपने घर से ब्यूटी पार्लर का कहकर निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम नंदिनी है। ये राजीव की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार C-33 सेक्टर 8 कंपनी में देखा गया। नंदिनी की आयु 19 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है एवं कद करीब 5 फीट है। ये अपने घर से कंपनी में ड्यूटी करने निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी। नंदिनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 2 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम फलक है। ये शाहिद की पुत्री है। इन्हें अंतिम बार 30 मार्च 2026 को ककराला फेस 2 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। फलक की आयु 19 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है एवं कद 4 फीट 5 इंच है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, फिर वापस नहीं लौटी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम धर्मेंद्र ठाकुर उर्फ धर्मेंद्र सिंह है। ये स्वर्गीय सरदार सिंह ठाकुर के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार गायत्री चेतना केंद्र Q2 सेक्टर 12 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में देखा गया। आयु 40 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 8 इंच है। ये एक हाथ से लकवे से ग्रसित हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 24 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में खोए हुए पुरुष का पूरा नाम संतोष है। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 40 वर्ष है। शरीर की बनावट मजबूत है। कद 5 फीट 5 इंच है। इनके सीधे हाथ पे हिंदी में विजेंद्र गुदा हुआ है। ये बिना बताए अपने घर से कहीं चले गए हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: हर शाम एक नई कहानी लेकर आती है, जो बात दिल से निकले वही देर तक रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युववाणी, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। मैं हूं निखिल और आज मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट डिम्पल।
1: अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा, और अगर आप थोड़ा थक भी गए हो तो फिर डोंट वरी, वी आर हियर टू मेक योर इवनिंग अ लिटिल लाइटर।
0: एब्सोल्युटली, आज हम बात करेंगे कुछ दिलचस्प विषयों पर, सुनेंगे कुछ शानदार गीत और बीच बीच में होंगे कुछ ऐसे पल जो शायद आपके चेहरे पर मुस्कान भी ले आए।
1: तो फिर देर किस बात की है, लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग टुगेदर।
0: सो सेटल इन एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज वी हैव गॉट एन एंगेजिंग इवनिंग प्लान्ड जस्ट फॉर यू। एंड टू सेट द मूड, हियर्स अ सॉन्ग दैट इज एज रिफ्रेशिंग एज द इवनिंग इटसेल्फ।
1: तो ये

0: played. It simply means you absolutely nailed it.
1: Oh my god, Gen Z's have practically created their own dictionary. कभी कभी लगता है कि इंग्लिश तो समझ आ जाती है, लेकिन ये Gen Z इंग्लिश को सीखने के लिए अलग से ट्यूशन लगानी पड़ेगी।
0: हाँ सच में डिंपल, कभी स्ले, कभी डेलुलू, फिर पीओवी, ऑरा, नो कैप, और पता नहीं कल कौन सा नया शब्द ट्रेंड कर जाए।
1: एग्जैक्टली निखिल, और सबसे मजेदार बात तो ये है कि Gen Z's इन टर्म्स को इतना कैजुअली यूज करते हैं जैसे पूरी दुनिया को इनका मतलब पता हो, और अगर इनसे कुछ पूछ लो या आपको कुछ समझना है तो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप पिछली सदी से अभी टाइम ट्रैवल करके आए हों।
0: सच में डिंपल, मैं तो खुद भी कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट ऑनेस्टली एवरी जनरेशन हैज इट्स ओन वे ऑफ स्पीकिंग, लैंग्वेज कीप्स इवॉल्विंग एंड सोशल मीडिया हैज मेड इट हैपन इवन फास्टर।
1: राइट निखिल, और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है, हर जनरेशन अपनी पहचान सिर्फ अपने आइडियाज से नहीं बल्कि अपनी लैंग्वेज से भी बनाती है।
0: बिल्कुल, बस जरूरी ये है कि हम नए शब्द सीखते रहें, और अगर समझना आए तो पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं।
1: यस निखिल, योर ऑरा इज लिटरली अनमैच्ड, यू आर गिविंग अ मेन कैरेक्टर एनर्जी टुडे।
0: अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया।
1: आई थिंक आई एम स्लेइंग टुडे, इजंट इट?
0: अरे बस बस, एक दिन में पूरा Gen Z सिलेबस खत्म मत कर देना।
1: Fine, Nikhil. I'll save some of my Gen Z vocabulary for my next show.
0: और हम चलते हैं एक ऐसे गाने की ओर जो किसी ट्रांसलेशन का मोहताज नहीं है। तो आइए सुनते हैं, अजीब दास्तां है ये, भारत की स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज में।

0: वाह, व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है डे स्पेसिफिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम पीएम सेतु स्कीम, क्या निखिल आप इसके बारे में जानते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, और हम अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि आज के जमाने में सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम सेतु यानी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज शुरू किया है।
0: बिल्कुल, और ये जानकारी हमारे सभी लिसनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्कीम का मकसद है देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआईज को मॉडर्न बनाना। इसके तहत देश भर के 200 आईटीआईज को अपग्रेड किया जा रहा है।
1: और हाँ, हमारे युवा लिसनर्स को ट्रेनिंग के साथ साथ बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलेगा।
0: वाओ, व्हाट एन अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ वक्त हो गया है एक प्यारे से गीत का, तो आइए सुनते हैं सिलसिला मूवी का गीत किशोर कुमार जी की आवाज में, देखा एक ख्वाब।

0: वाह, मजा आ गया ये गाना सुनकर। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। तो इस सिलसिले को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, टुडे इन हिस्ट्री।
1: डिंपल, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा भारत, जिसकी धरोहर, जिसकी सभ्यता, जिसका कल्चर कई हजारों साल पुराना है, तो आखिर यूरोपियन ट्रैवलर वास्को डगामा ने इसकी खोज या इसकी डिस्कवरी 1498 में कैसे की?
0: निखिल, ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे पास इसका काफी सिंपल और काफी इफेक्टिव आंसर है। असल में वास्को डा गामा ने इंडिया डिस्कवर नहीं, बल्कि इंडिया को एक्सप्लोर किया था। पर निखिल, अचानक तुम्हें वास्को डा गामा की याद कैसे आ गई?
1: इसका जवाब तो मैं अपने लिसनर्स को भी देना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि आज ही के दिन वास्को डगामा ने अपना इंडिया को एक्सप्लोर करने का सफर शुरू किया था। 8 जुलाई 1497 को वास्को लिस्बन से निकले और लगभग 10 महीने का सफर तय करके वो मालाबार कोस्ट के कैलिकट, जो कि आज की डेट में कोझिकोड़े, जिसको मसालों का शहर भी कहा जाता है, उनका जहाज 20 मई 1498 को वहां पहुंचा।
0: वैसे उन्होंने भले ही भारत की डिस्कवरी के बजाय भारत को एक्सप्लोर किया हो, पर उन्होंने एक चीज की खोज भी की थी।
1: किस चीज की खोज डिंपल?
0: वास्को डगामा ने यूरोप से साउथ एशिया तक आने वाले डायरेक्ट सी रूट की खोज की थी।
1: सही कहा, कितना रोमांचक रहा होगा वास्को का सफर। तो क्यों ना एक सफर में सुनने लायक गाना सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल निखिल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
1: तो ये रहा हमारे सभी लिसनर्स के लिए अगला सॉन्ग फ्रॉम सनी देओल सर की मूवी गदर से, विच इज मैं निकला गड्डी ले।

0: वाह, मजा आ गया ये गीत सुनकर, और आशा है कि हमारे श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज क्विक बस, जहां आपको न्यूज मिलेगी फटाफट।
1: क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारी इस जनरेशन को हर चीज चाहिए क्विक एंड एफिशिएंट, सो लेट्स बिगिन।
0: क्रिस्टियानो रोनाल्डो कन्फर्म्स टू रिटायर फ्रॉम वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट्स एट द एज ऑफ 41 आफ्टर हिज लास्ट मैच इन 2026 फीफा वर्ल्ड कप अगेंस्ट स्पेन।
1: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिलीजेस वैकेंसीज ऑन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 टेक्नीशियंस, एप्लीकेशंस बीइंग एक्सेप्टेड ऑन द आरआरबीज ऑफिशियल वेबसाइट टिल 29th ऑफ जुलाई।
0: टुडे इज अ सिक्स डे ऑफ अमरनाथ यात्रा, सो अगर आपको भी पहाड़ों पे घूमने का मन कर रहा हो या घर वालों के साथ एक धार्मिक यात्रा करने का मन है, देन दिस इज योर टाइम, पैक योर बैग्स एंड गो फॉर इट।
1: वाह, यहाँ तो दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं सत्ते पे सत्ता मूवी से ये प्यारा सा सॉन्ग इस ऑसम मौसम के लिए।

0: वाह, क्या गाना था! उम्मीद है हमारे लिसनर्स को भी ये गाना काफी पसंद आया होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं, एंड वी होप दैट यू लाइक द टुडेज प्रोग्राम।
0: तो कल भी आपके साथ हमारे साथी इसी समय पर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
1: तब तक के लिए स्टे देयर, स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए युववाणी।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रमाणन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीनों देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। इस बीच

0: वेंकैया नायडू ने बताया कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। 450 मीटर लंबे इस अंडरपास के ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, गुजरात और केरलम के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये अभियान स्वस्थ और अनुशासित युवाओं के निर्माण पर केंद्रित महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण पहल है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म को और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is en route to Australia after concluding his 3-day successful visit to Indonesia. During his 3-day visit to Australia, Mr. Modi will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with his counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Discussion between the two leaders will cover cooperation in areas including critical minerals, the cybersecurity domain, supply chain resilience, emerging technologies and others. Prime Minister Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex, with Prime Minister Modi offering prayers at the main Shiva temple. In a joint press statement at the temple premises, President Prabowo said Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: Yesterday, the two leaders held delegation-level talks in Jakarta to strengthen cooperation in defense, security, maritime and other sectors. Prime Minister Modi also addressed the joint session of the Indonesian Parliament and the Indian community in Jakarta. Union Home Minister

0: कार्यक्रम लोकरंजनी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: लोकेंद्र भाई,
1: हाँ प्रीति बहन,
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर है।
1: हाँ, और कार्यक्रम में हम जो हमारे श्रोता भी सभी से इंतजार करते हैं हमारे लोकरंजनी कार्यक्रम का, उसमें हम अपने लोक गीत सुनवाते हैं
0: जी।
1: और जो लोकगीत होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं और एक नोक झोंक उसमें हर तरह का मैसेज मिलता है। तो सबसे पहले आप किसको सुनवा रहे हैं?
0: सबसे पहले सुनवा रहे हैं बबीता चौधरी को।
1: तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: मिलवा फूफा छाती को। अभी प्रीति बहन हमारे श्रोता सुन रहे थे बबीता चौधरी की आवाज में ये लोकगीत।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं पायल रावल की आवाज में ये अगला लोकगीत।

0: प्रीति बहन,
1: जी।
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पायल रावल की आवाज में ये लोकगीत।
1: और आइए अब सुनवाते हैं अगला लोकगीत सविता शर्मा की आवाज में।

0: प्रीति,
1: जी
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सविता शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।
1: और आइए अब अगला लोकगीत सुनवाते हैं यमुना गर्ग की आवाज में। आइए सुनते हैं कि लोकगीत के माध्यम से ये क्या कह रही है।
2: लेकर आए वापिस करो।
3: हाँ।

0: प्रीति,
1: जी
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे यमुना गर्ग को, और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित लोक रंजनी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करते थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल खबरों से जुड़ा ये कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। और मेरे साथ हैं विजेता।
3: नमस्कार सभी श्रोताओं को, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी बिल्कुल। और विजेता, आज जो इस अंक में हम चर्चा करेंगे फीफा विश्व कप की, जहां बेहद रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और कल के मुकाबले भी कुछ अलग नहीं थे, जहां अर्जेंटीना ने मिस्र को हराया और स्विट्जरलैंड ने शूटआउट में कोलंबिया को पराजित किया। हालांकि अंतिम तेरह मिनट में 3 गोल करके अर्जेंटीना जीती है, नाटकीय अंदाज में वापसी की है, लेकिन मिस्र ने इस जीत पर, अर्जेंटीना की जीत पर को विवादास्पद भी बताया है। बहरहाल इसके अलावा हमारा जो चर्चा हम इसमें करेंगे वो भारत इंग्लैंड के बीच तीसरी T20 की होगी, जहां भारतीय टीम को 125 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा विंबलडन पे भी चर्चा होगी, अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी पे, शॉटगन विश्व कप और तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 पर भी हम चर्चा करेंगे। तो विजेता, क्यों ना सबसे पहले फीफा विश्व कप की बात की जाए और ये जो मुकाबला अर्जेंटीना और मिस्र के बीच खेला था उस पर ये रिपोर्ट पेश है। अर्जेंटीना और मिस्र के बीच फीफा विश्व कप का यह मुकाबला रोमांच का नया पैरामीटर बन गया। इस मुकाबले में अर्जेंटीना जीत जरूर गया, लेकिन 79वें मिनट तक विश्व चैंपियन टीम 2 गोलों से पिछड़ रही थी। उसके बाद लगभग 13 मिनट में अर्जेंटीना ने 3 गोल करके नाटकीय वापसी की और मिस्र को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर। दरअसल यह मुकाबला रोमांच का पूरा पैकेज था, जहां मिस्र की मजबूती दिखी तो मेसी का मैजिक भी। जीत के बाद लियोनल मेसी की आंखों से छलकते आंसू बेहद कड़े मुकाबले की कहानी बयां कर रहे थे। उलटफेर की कगार से निकलकर मिस्र की झोली से जीत छेने वाली अर्जेंटीना टीम का मैच के बाद मेसी को हवा में उछालना और सामूहिक डांस करना टीम की राहत और सुकून का संकेत दे रहा था, वरना खेल रक्षण तो मिस्र की टीम का भी लाजवाब रहा था, खासकर गोलकीपर मोस्तफा शोबेर का, जिन्होंने लियोनल मेसी का पेनल्टी भी रोक दिया था। इसके अलावा भी डाई लगाकर कई शानदार बचाव किए थे।
4: No, he can't. Not yet, anyway. He's denied by Mustafa Shabir.
2: पहले हाफ में मिस्र ने शानदार शुरुआत की। 15वें मिनट में सेंटर बैक यासर इब्राहिम ने मरवान अत्या के कॉर्नर पर हेडर लगाकर गोल कर दिया था।
4: What a start to the match. What a header. Yasser Ibrahim.
2: मध्यांतर

0: इस समय मिस्र 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन कहीं न कहीं इस कोशिश में उसका रक्षण कमजोर पड़ गया। उसी का फायदा उठाकर मिस्र ने काउंटर अटैक बोली। अगर रेफरी फ्रांसवा ने वीएआर तकनीक की मदद से मिस्र का एक गोल अमान्य नहीं किया होता तो कहानी उलट भी हो सकती थी। इस मूव के समय मोहम्मद सालेह ने अर्जेंटीना के डिफेंडर लियांड्रो पेरेडेस को टैकल करते समय जर्सी पकड़ ली थी। उसके बाद सालेह गेंद लेकर आगे बढ़े और बॉक्स में मोस्तफा जीको को गेंद बढ़ा, उन्होंने गोल कर भी दिया था, लेकिन रेफरी ने अर्जेंटीना के डिफेंडर लियांड्रो के खिलाफ फाउल के कारण गोल को मान्यता नहीं दी। गोल अमान्य होने के बावजूद मिस्र ने हौसला नहीं खोया और जल्द ही 2-0 की बढ़त कर ली, जब 67वें मिनट में मोस्तफा जीको ने गोल कर दिया। यह गोल भी काउंटर अटैक पर हुआ, जब अर्जेंटीना का कॉर्नर मिस्र ने क्लियर कर दिया था और मोहम्मद सालेह ने तेज काउंटर अटैक बोला, गेंद हैसम हसन को दी जिन्होंने पीछे की ओर कट बैक पास दिया, जिस पर मोस्तफा जीको ने गोल किया। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना 2 गोलों से पिछड़ गया तो लगा कि इस विश्व कप के सबसे बड़े उलटफेर की तैयारी हो गई है, लेकिन मेसी को खुद पर भरोसा था और टीम को उन पर, और अर्जेंटीना ने 4 मिनट के अंतराल में 2 गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। अब तक विश्व कप में 13 मुकाबले ऐसे हुए हैं जब 0-2 से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार 2 गोलों से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने जीत हासिल कर वह मिथक भी तोड़ दिया। पहले 79वें मिनट में क्रिस्टियानो रोमेरो ने मेसी के क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर 1-2 किया और 83वें मिनट में मेसी का असल मैजिक दिखा जब लियोनल ने एल्वारेज के पास पर लेफ्ट फुटर की मदद से जोरदार हाफ वाली से बराबरी का गोल कर दिया। यह इस विश्व कप में मेसी का 8वां और ओवरऑल विश्व कप में उनका 21वां गोल रहा। गोल्डन बूट की रेस में मेसी सबसे आगे चल रहे हैं। मेसी विश्व कप के लगातार 6 नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। उनके नाम सबसे ज्यादा 9 गोलों में असिस्ट करने का रिकॉर्ड भी हो गया है। मैच में मेसी ने 1 गोल किया और 1 असिस्ट भी किया। वैसे तो मेसी ने 1 पेनल्टी मिस भी की और इस विश्व कप में उन्होंने अब तक 2 पेनल्टी मिस कर दी है, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दूसरी इस मुकाबले में मिस्र के खिलाफ। वे ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही विश्व कप में 2 पेनल्टी मिस की। निर्णायक गोल एंजो फर्नांडिस ने अंतिम क्षणों में करके अर्जेंटीना को 3-2 से जीत दिला दी और टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई, जहां उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। बेशक मिस्र ये मैच हार गया, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों के दिल तो उसने जीत लिए। मिस्र के स्टार मोहम्मद सालेह का यह संभवतः अंतिम विश्व कप माना जा रहा है। सालेह ने मिस्र को प्री क्वार्टर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखी। 115 मैचों में 67 गोल करने वाले मिस्र के इस स्टार को दर्शकों ने करतल ध्वनि से विदाई दी। और विजेता दूसरे मुकाबले की बात करें तो वो भी किसी रोमांच से कम नहीं था, पेनल्टी शूटआउट में निर्णय हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे उस मुकाबले पर?
1: और अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, जो खेला गया वैंकूवर के बीसी प्लेस में, जहां स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच मुकाबला 120 मिनट तक बराबरी पर टिका रहा। दोनों टीम गोल नहीं कर पाई। कोलंबिया की टीम आक्रामक अंदाज में खेली, जबकि स्विट्जरलैंड ने डिसिप्लिन्ड और डिफेंसिव रणनीति अपनाई। एक्स्ट्रा टाइम में कोलंबिया के पास 2 बड़े मौके आए। जॉन लुकुमी का हेडर क्रॉसबार से टकराया और जोमिंटन कंपोज का शॉट गोलकीपर के अकेले रहते हुए भी बाहर चला गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा। शूटआउट बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने बारी बारी से गोल किए, लेकिन कोलंबिया के डिफेंडर डाविनसन सांचेस का शॉट क्रॉसबार से टकराया और कुको हार्डनेस का शॉट गोलकीपर ग्रेगोर कोवेल ने बचा लिया। आखिरकार रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड को 4-3 से जीत दिला दी। स्विट्जरलैंड की फुटबॉल टीम ने 1954 के बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। 72 साल पहले अपनी मेजबानी में हुए टूर्नामेंट में टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। स्विट्जरलैंड ने इस जीत के साथ एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये पहली बार है जब टीम ने किसी एक विश्व कप में नॉकआउट।

0: प्रमुख चरण के एक से अधिक मुकाबले जीते हैं। इससे पहले स्विस टीम कभी भी विश्व कप के एक ही संस्करण में लगातार दो नॉकआउट जीत दर्ज नहीं करवा पाई है। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल लाइन अप तय हो चुकी है, यानी कि अब 8 टीमें शेष रह गई हैं जिनके बीच से विजेता निकलेगा इस विश्व कप का। और अभी जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं वहां फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा 9-10 जुलाई की रात को, जबकि स्पेन की टीम बेल्जियम से भिड़ेगी 10-11 जुलाई की रात को।
0: तीसरा मुकाबला होगा सबसे चर्चित, जो कि 11-12 जुलाई को होगा, नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में। वहीं चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच 12 जुलाई को कैनसास सिटी में खेला जाएगा, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड।

0: भव्यता राष्ट्रमंडल खेल भी होने हैं और ग्लासगो में होने वाले इन खेलों के लिए भारत की तैयारियां बहुत शानदार हैं और भारतीय खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ अपनी चुनौती पेश करेंगे और नया इतिहास रचने के लिए बेताब हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ ने इन खिलाड़ियों के सम्मान में एक विदाई समारोह किया और जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी मौजूद थे, उन्होंने खास बातचीत की, कैसी तैयारी है, खिलाड़ियों से खास इंटरव्यू किए, तो पेश है ये खास रिपोर्ट शाहिद आजमी की।
1: नई उम्मीदें, नए सपने और ग्लासगो में इतिहास रचने का जुनून। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय दल पूरी तरह से तैयार है। नई दिल्ली में बीती रात भारतीय ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों को भव्य विदाई दी, जहां टीम इंडिया की आधिकारिक प्रतियोगिता किट का भी अनावरण किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होंगे। समारोह में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त लिंडी कैमरन, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह, खेल विभाग के सचिव हरिरंजन राव, शेफ डिमिशन रोहित राजपाल, साथ ही खिलाड़ी और कोच मौजूद रहे। लेकिन पूरे कार्यक्रम का सबसे आकर्षक पल वह था जब टीम इंडिया की नई आधिकारिक किट का अनावरण हुआ। देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा,
2: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। दोस्तों, समय के साथ स्थिति बदलती है और जो व्यक्ति, समाज या संस्था अपने स्वयं को बदलने की कोशिश करती है वो समय के साथ ताल मिला सकती है। स्पोर्ट्स का 75 इयर्स का हमारा इतिहास शायद मेडल टैली के हिसाब से बेस्ट माने ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये देश में यूथ में, क्योंकि 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, ये देश के यूथ में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जज्बे भी कोई कमी नहीं, ना कमी थी ना आज है ना भविष्य में रहेगी। ये ही युवा एथलीट आने वाले दिनों में, हमारी कहावत है ना, जब फसल को अच्छा खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो फसल अच्छी ही पकेगी, उत्पादन अच्छा ही आएगा। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे। जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं, तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है, देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले जनवरी 2025 से जून 2026, डेढ़ साल में 36 इंटरनेशनल इवेंट भारत में आयोजित हुई। अभी ये साल के 6 महीने बाकी है, 9 इंटरनेशनल इवेंट लाइन में है और 2027 2028 के लिए 19 इंटरनेशनल टूर्नामेंट भारत होस्ट करना तय हो चुका है और 9 और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए हमारी भारतीय फेडरेशन ने बिल कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है जो भारत ने गोल तय करा है 2036 हमें 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में हमारा स्थान को अंकित करना है, 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें दुनिया के 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में उभरना है।
1: भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि भारतीय दल ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करेगा।
3: अभी तो अच्छा, आई होप दैट प्लेयर्स डिड पैड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड।
1: गेम्स कम है, होप्स ज्यादा, लेकिन
3: एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है, तो एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एनीवे 2 मंथ्स इज देयर, दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई

0: Is it expecting good performance? Why? Because the government, Indian Olympic Association, Sports Authority of India, all association is in one line and they are providing all the facilities which players want. So exposure is the must. They are getting foreign exposure and all those things. And association is working on it. And lot of sponsors also. For IOA is also giving full support to players. So that I hope that players acha kare.
1: Ab baat seedhe un khiladiyon se jinke kandhon par desh ki ummeedein hain. Sabse pehle milte hain desh ki agrani judo khiladi तुलिका मान से, जो इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेंगी।
2: उस चीज को मैं अगर प्रेशर पे लूंगी तो मेरे लिए अलग है, बट बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन ये है कि मतलब 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है गोल्ड।
1: अब सुनिए जूडो खिलाड़ी करणजीत मान क्या कहते हैं अपनी तैयारियों और लक्ष्य के बारे में।
3: कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का पहले भी जो बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, इनके मेडल्स हैं। मेरी ये पहली कॉमनवेल्थ गेम्स है, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अपने जो मेरे ओपोनेंट्स उनको भी वॉच कर रहा हूँ, हर उनकी टेक्निक्स हर चीजें, और उस हिसाब से भी मेहनत कर रहा हूँ। इस बार ये हमारा जो जूडो टीम है वो पूरी जा रही है काफी टाइम बाद, क्योंकि 18 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो था नहीं, क्योंकि तब ऑल्टरनेट ईयर्स में होती थी। जब 22 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ हाफ वेट गए थे, जिसमें इनकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी, ऑलमोस्ट सभी वेट्स में मेडल आए। इस बार हमारी टीम पूरी जा रही है, तो होपफुली ये हमारे लिए अच्छा भी और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे सारी टीम।
1: इस बार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे भारत के मजबूत पदक वाले खेल शामिल नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीदें मुक्केबाजी टीम से है। भारतीय मुक्केबाज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ पदक जीतने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं 70 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को।
4: जी, तैयारी तो काफी अच्छी है और उम्मीद यही है कि मैंने जितनी मेहनत करी है उतना ही बेस्ट मैं वहाँ अपना दिखाऊं और गोल्ड मेडल लेकर वापस आऊं।
5: देखिए, कई खेल नहीं है वहाँ पे, ज्यादा जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर होती है कि मेडल टेबल पे ज्यादा जाए, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ ज्यादा मेहनत की है?
4: जो मेहनत हमारी पहले थी, क्योंकि अभी लास्टली हमने एशियन चैंपियनशिप भी खेली थी, तो तैयारी वैसे ही चल रही है। जो फॉरनर कोच हमारा वो हमें वैसे ही पूरी तैयारी करवा रहा है और उससे हम पे बहुत भरोसा है कि हम बहुत बेस्ट करेंगे।
1: अब मिलते हैं 51 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाज साक्षी से, जिन्होंने ट्रायल में दिग्गज मुक्केबाज निखत जरीन को हराकर ग्लासगो का टिकट हासिल किया है।
6: जी, हम अभी कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम 9 जुलाई को आयरलैंड जाएंगे, जहाँ हमारा मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा, वहाँ से हम डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे। तो अभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
5: बहुत दमदार तरीके से आपने ट्रायल्स में ट्रायल्स जीत कर यहाँ कदम रखा है। ट्रायल्स में जब इतने बड़े बॉक्सर को हराती हैं तो मनोबल तो बढ़ता होगा।
6: ट्रायल्स में मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उसी को मेंटेन रखूं और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं।
1: यह 60 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाज प्रिया घंगास।
7: फिलहाल तो सर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, हमारे पटियाला में कैंप चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हम फ्राइडे को निकल रहे हैं बेलफास्ट आयरलैंड के लिए, 15 दिन का पहले ट्रेनिंग है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मोटिवेशन मिला हुआ है यहाँ ट्रेनिंग करके, पूरी उम्मीद यही है कि गोल्ड के साथ ही वापस आएंगे।
1: अब बात करते हैं पुरुष मुक्केबाजी टीम के दमदार खिलाड़ी सचिन सिवाज से, जिनका कहना है इस बार भारतीय मुक्केबाज सिर्फ पदक नहीं बल्कि स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से रिंग में उतरेंगे।
8: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, अपने अपोनेंट्स के सारे उनके वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है।
5: क्या होप्स करें, 1-2-3 कौन सा मेडल?
8: लगभग सभी के गोल्ड ही हैं जी,
5: गोल्ड
8: है बिल्कुल।
5: अपोनेंट को कैसे देख के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग तय है कौन से अपोनेंट किस कैटेगरी में सामने आने वाले?
8: कोई बॉक्सर रसर है, कोई बॉक्सर लॉन्ग रेंज से है, तो उनके गलतियों को देख के उन पे काम कर रहे हैं।
5: किन टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक पे ज्यादा काम कर रहे हैं?
8: लगभग सभी बॉक्सर की अलग अलग टेक्निक है, तो उन पे ही काम करना पड़ रहा है।
5: टीम आपकी लड़कों लड़कियों की बेस्ट टीम नजर आ रही है, कितने मेडल आने की उम्मीद?
8: सभी के गोल्ड ही आने हैं।
1: क्या वास्तव में भारतीय बॉक्सिंग टीम पहले से ज्यादा मजबूत है? आइए जानते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह से।
3: देखिए, 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा, जबकि इस बार जो इवेंट्स हैं वो कम है, गोल्ड कोस्ट में इवेंट ज्यादा थे, तो पूरी अपेक्षा हमें यही है कि बॉक्सिंग का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन।
1: अब रुख करते हैं तैराकी का। राष्ट्रमंडल खेलों में स्विमिंग की प्रतिस्पर्धा सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में गिनी जाती है। भारत के लिए यहाँ पदक जीतना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार युवा तैराकों का आत्मविश्वास कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। सबसे पहले सुनते हैं तैराक अनिश गौड़ा को।
9: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी बहुत हार्डवर्क हो रही है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाके हमारे देश को प्राउड

0: करे और एक मेडल जीत के वापस आए।
1: अब बात करते हैं उभरते हुए तैराक एस दक्षिण से।
2: मैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ स्विमिंग स्पोर्ट से। अभी मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है और ये भी बड़ा इवेंट है और हम वर्ल्ड क्लास स्विमर्स के साथ रेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। अभी परफॉर्मेंस का तो हमारा तो बेस्ट परफॉर्मेंस आने के लिए हम चाहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स
1: कौन कौन सा इवेंट आपका होगा?
2: मैं 400 फ्रीस्टाइल और 4x200 फ्रीस्टाइल रिले स्विम कर रहा हूँ।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के शेफ डिवीजन रोहित राजपाल का कहना है कि ग्लासगो में खेलों से इतर भी भारत के लिए बहुत कुछ खास है।
3: कि सिंबॉलिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट होस्ट है, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है वहाँ पे। हम लोगों को बैटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस दिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है एक्सचेंजेस जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिंबॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम्स इंडिया को आएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारत 124 खिलाड़ियों का मजबूत दल भेज रहा है जिसमें सक्षम और पैरा खिलाड़ी दोनों शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, जूडो, जिम्नास्टिक्स, साइकिलिंग, लॉन बॉल्स, तैराकी सहित कुल 10 खेलों और विभिन्न पैरा स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। आपको बता दें बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीते थे और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। अब निगाहें ग्लासगो पर हैं जहां हर भारतीय खिलाड़ी का एक ही सपना है, ज्यादा से ज्यादा पदक जीतकर देश का मान बढ़ाना। आज के अंक में बस इतना ही। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 स्टैंड अप समारोह स्थल से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
4: और नवीन जी अभी एक और सूचना आई है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय जी ने घोषणा की है कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा। तो ये खबर खेलो इंडिया के हवाले से।
5: आप बात अब क्रिकेट की करते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और जहां T20 सीरीज में उसे बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलों का सामना इसलिए क्योंकि तीसरे T20 में भारतीय टीम को 125 रन से करारी हार झेलनी पड़ी है। ये रनों के अंतर से भारत की T20 में सबसे करारी हार है। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और अगले दोनों मैच जीतकर इंग्लैंड 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे चल रही है। भारतीय टीम को जीत के लिए 202 रन के लक्ष्य के जवाब में महज 11.4 ओवर में 76 रन पर आउट हो गई। यह T20 में भारत का दूसरा सबसे कम स्कोर है। सिर्फ 4 भारतीय बल्लेबाज ही दोहरे अंकों में पहुंच सके। अभिषेक शर्मा ने 10 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी जो कि 15 साल के नए युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं लेकिन वो भी बड़ा योगदान नहीं कर पाए। 2 छक्के उन्होंने आर्चर और टंग पर जरूर लगाए लेकिन वे 13 रन ही बना सके। इसके अलावा विशान किशन ने 13 और अक्षर पटेल ने 10 रन का योगदान दिया। मैन ऑफ द मैच रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रे आर्चर जिन्होंने 3 ओवरों में 29 रन देकर 3 विकेट अपनी झोली में डाले। डंग ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत की ओर से गेंदबाजी की अगर बात करें तो हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए और इंग्लैंड के बल्लेबाजी में साल्ट ने 44 गेंदों में 70 रन बनाए जिससे मेजबान टीम ने 7 विकेट पर 201 रन बनाकर भारत को एक मजबूत चुनौती दी थी। जहां तक बात श्रेयस अय्यर की कप्तानी की है तो इस सीरीज में वो जीत की तलाश में है, बल्कि आयरलैंड के खिलाफ भी T20 मुकाबले में भारतीय टीम अच्छा नहीं कर सकी थी, सीरीज गंवा दी थी और यहां भी मुश्किलों का सामना कर रही है। 14 T20 कल खेला जाएगा तो भारतीय बल्लेबाजों को अपनी कमियों से सबक लेकर बेहतर करना होगा। इसके अलावा क्योंकि तेज गेंदबाज आर्चर और टंग अभी तक 7 विकेट ही ले दोनों ने मिलकर लिए हैं और भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती जो कि भारत के मुख्य स्पिनर हैं वो 7 ओवरों में सिर्फ 1 विकेट ले पाए हैं। तो चौथे मैच में भारतीय टीम को एक बार अपना क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने की जरूरत है। तो बात अब क्रिकेट से टेनिस की करते हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम चल रहा है, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है ग्रास कोर्ट पर।

0: और ये क्या मुकाबले, अभी क्या नतीजे रहे हैं, कैसे कौन खिलाड़ी आगे बढ़ने में सफल रहे हैं, पेश है ये खास रिपोर्ट।
1: विंबलडन 2026 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां क्वार्टर फाइनल राउंड्स में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं पुरुष सिंगल्स की, तो सेमीफाइनल्स में पहला बड़ा नतीजा आया टॉप सीड इटालियन योनिक सिनर से, जिन्होंने जर्मनी के जॉन लेनोट स्टॉफ को सीधे सेट्स में 7-5, 7-6, 6-3 से हराकर आसानी से सेमीफाइनल का टिकट कटाया। सिनर अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से बेहद दमदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला रहा सर्बिया के नोवाक जोकोविच और तीसरी सीट फेलिक्स ऑगर एलियाजिम के बीच। ये मैच पूरे 5 सेट तक चला, 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, लगभग 5 सेट तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन निर्णायक क्षणों में जोकोविच का अनुभव भारी पड़ा। अपनी इस शानदार जीत पर क्या कहते हैं सर्बियन खिलाड़ी जोकोविच, आइए सुनते हैं।
2: You know, exciting to be part of such an epic match, you know, that was played over 5 hours and whatever it was, I don't even know exact time, but just one of the best matches I was honestly part of in Wimbledon. I mean, I don't recall playing this long any match. Maybe Roger final 2019 comes close, but in terms of the the time and length, but it was really, really super even, anybody's game. Honestly, Felix also played on a really high level, and you know, he dropped his level a little bit in that super tiebreak, and I used all my opportunities and hung in there, you know, played the right shots, and that was enough. You know, the crowd was up on their feet, you know, particularly the last, you know, 30 minutes of the match. You know, they also recognized how special the moment is, you know, of us battling the curfew as well a few minutes earlier. Then 11 and yeah, just very proud to come out as a winner.
1: 5 घंटे 15 मिनट का ये क्वालिफिकेशन मैच विंबलडन के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला मैच रहा। आखिरकार 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने मैराथन मुकाबला जीतकर अपना रिकॉर्ड सेमीफाइनल पक्का किया। 39 वर्षीय जोकोविच ने पिछले दौर में अपनी 106वीं जीत दर्ज कर ऑल इंग्लैंड क्लब में सबसे अधिक मैच जीतने का रोजर फेडरर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया था। अब उनका सामना सिनर से होगा। दोनों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड से सिनर आगे हैं, यानी कि जोकोविच के लिए ये कठिन चुनौती हो सकती है। बात करते हैं महिला सिंगल्स की, तो तय हो चुके सेमीफाइनलिस्ट महिला वर्ग में भी दो बड़े नाम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। 7वीं सीट की अमेरिकन खिलाड़ी कोको गोफ ने 4थी सीट और अपनी हमवतन जैसिका पेगुला के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 4-6, 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की है। पहला सेट गंवाने के बाद गोफ ने अपनी सर्विस को मजबूत किया और मैच पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया। अपने इस मुकाबले पर क्या कुछ कहती हैं कोको गोफ, आइए सुनते हैं।
3: Really special considering, you know, the results I've had of late and just especially on the surface. So it definitely is special. And I think I'm able to relax a bit because, I don't know, I just feel like regardless of, you know, how the rest of this tournament goes, I really think I found like a bit of a breakthrough on grass. So regardless of how it goes, I think I'm just proud of myself. Obviously, I'm not satisfied. I think, you know, I want to go all the way, but also at the same time, I'm just looking at, you know, the match in front of me and just trying to keep doing better with each point.
1: दूसरी तरफ चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुखोवा ने जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका को 7-6, 6-4 से हराया। खास बात यह है कि मुखोवा ने इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक भी सेट नहीं गवाया, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है। अब बात करते हैं बाकी की 4 सेमीफाइनल सीट्स के बारे में। महिला वर्ग में 12वीं सीट में यूक्रेन मार्टा कोस्यू का सामना 13वीं सीट की इटली की खिलाड़ी यास्मीन पाओलिनी से होगा और 9वीं सीट की चेक गणराज्य की लिंडा निसोकोवा भिड़ेंगी 25वीं सीट की बेल्जियम एलिस मार्ट्रेस से। पुरुष वर्ग में सबसे दिलचस्प कहानी है ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड आर्थरी फेरी की, जो घरेलू दर्शकों के सामने अपना सपना जी रहे हैं। उनका सामना होगा 9वीं सीड और फ्रेंच ओपन के उप विजेता फ्लोविया कोबोली से। दूसरा मुकाबला है अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और दूसरी सीट के जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के

0: ज़ेवरेव जो इस साल फ्रेंच ओपन चैंपियन बने थे, पहली बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती है। फ्रिट्ज के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड 5-10 है और फ्रिट्ज ने पिछले 7 मुकाबले लगातार जीते हैं। घास के कोर्ट पर फ्रिट्ज की बेहतरीन फॉर्म को देखते हुए इस मैच को हल्का सा फेवरेट भी माना जा रहा है। महिला डबल्स के राउंड ऑफ 16 में एक बड़ा मुकाबला हुआ, जहां दूसरी सीड ग्रेबियेला डार्बावस्की जो कि कनाडाई खिलाड़ी हैं और ब्राजील की खिलाड़ी लुइजा स्टेफनी की जोड़ी ने 14वीं सीड की स्टाम हंटर्ज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और अमेरिकन खिलाड़ी केटी मैकेनेली की जोड़ी को सीधे सेट्स में 6-1 6-4 से हराया।
1: बात तीरंदाजी करते हैं तो मैड्रिड से एक अच्छी खबर यह है कि भारतीय महिला कंपाउंड टीम आर्चरी विश्व कप तीरंदाजी स्टेज 4 के फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष कंपाउंड टीम 4th स्थान पर रही। पुरुष कंपाउंड क्वालिफिकेशन में मौसम ने असर डाला था, जब तेज आंधी और बारिश के कारण सामान्य 72 तीर पूरे नहीं हो पाए थे और प्रतियोगिता को 36 तीरों के बाद रोकना पड़ा था।
0: और अब बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन की, जो कि इटली में हो रहा है, और उसमें बता दें कि वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के साथ हैनकॉक की जीत। पुरुष वर्ग में अमेरिका के दिग्गज विंसेंट हैनकॉक ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 36 में से 36 परफेक्ट स्कोर करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं अमेरिका के खाते में एक और स्कोर आया, रजत पदक भी, जिसमें क्रिश्चियन इलियट ने 36 में से 35 स्कोर कर दिया। और बात अगर भारतीय खेमे की करें तो शॉटगन में मिराज 16वें स्थान पर रहे, भवतेज सिंह गिल 45वें रैंक, अनंतजीत सिंह नरोजी का 72वां रैंक रहा, ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया 103 पर रहे। महिला वर्ग की बात करें तो परिनास धालवाल 13वें स्थान पर, राइजा डिल्लन 25वें स्थान पर।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी में भारत के 48 भार वर्ग में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं और भारतीय फुटबॉल फेडरेशन और ISL क्लबों के बीच अगले 4 सालों के लिए करार हुआ है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
3: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने

0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is en route to Australia after concluding his three-day successful visit to Indonesia. During his three-day visit to Australia, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit with his counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Discussion between the two leaders will cover cooperation in areas including critical minerals, the cybersecurity domain, supply chain resilience, emerging technologies and others. Prime Minister Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex, with Prime Minister Modi offering prayers at the main Shiva temple. In a joint press statement at the temple premises, President Prabowo said Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: Yesterday, the two leaders held delegation-level talks in Jakarta to strengthen cooperation in defence, security, maritime and other sectors. Prime Minister Modi also addressed the joint session of the Indonesian Parliament and the Indian community in Jakarta. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The minister also thanked him for his sharing of perspectives on developments in the Gulf. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact

0: कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है भेंट वार्ता। विषय है साहित्य और पत्रकारिता, कल आज और कल। वार्ताकार हैं जयप्रकाश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार। भेंटकर्ता संतोष द्विवेदी मनोज।
1: जयप्रकाश पांडे जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद संतोष जी।
1: दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक साहित्य और पत्रकारिता में क्या अंतर संबंध है, और दूसरा कि आप अपने आप को एक साहित्यकार के तौर पर चाहते हैं जाना जाए या फिर एक पत्रकार के तौर पर।
2: संतोष जी देखिए, एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपने किया। दरअसल 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के बीच की बात है, पश्चिमी समाज में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, साहित्य और पत्रकारिता बटे हुए नहीं थे। भारत में भी हम देखते हैं तो साहित्य और पत्रकारिता दो अलग अलग चीजें नहीं रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हों या मुंशी प्रेमचंद हों या तिलक हों या महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, जो भी जितने भी हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे, ये सभी एक साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। दरअसल साहित्य और पत्रकारिता को हमें समझने की जरूरत है, इन दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर, और वो अंतर ये है कि पत्रकार जहाँ केवल घटनाओं को संप्रेषित करता है, वहीं साहित्य उससे जुड़ता है। वह जो लेखक है वह अपनी कल्पना को भी उसमें स्थान देता है, भावनाओं को भी जोड़ता है, और वह यह प्रयास करता है कि समाज में कुछ परिवर्तित हो जाए। इसीलिए जब हम स्वतंत्रता संग्राम के समय को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जितने भी हमारे साहित्यकार थे वह कहीं न कहीं पत्रकार भी थे, और यह क्रम लगभग 80 के दशक तक आता है।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो पहले के जो हमारे समाज के अगुआ थे या जिन्होंने समाज को दिशा दी, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों, या गणेश शंकर विद्यार्थी जी जैसे महान पत्रकार रहे हों, तो वो अलग अलग तरह से पत्रकारिता के तौर पर, सामाजिक सुधार के तौर पर, या यूं कहें कि समेकित स्वरूप में समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसे दिशा दे रहे थे। मानते भी हैं कि भारतीय पत्रकारिता का जो जन्म है एक तरीके से साहित्य की गोद में हुआ है। अगर हम समझना चाहें, आज के श्रोता जो हमारे हैं, इस बात की समझ अगर विकसित करना चाहें, तो उस दौर की पत्रकारिता को देखते हुए और आज की दौर की पत्रकारिता को अगर हम देखें, तो आप दोनों में कुछ समानता या असमानता कैसे देखते हैं आप इसको?
2: देखिए, अभी उस समय की सामाजिक सरोकारों की तुलना तो आज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो माध्यम बदल चुका है, दूसरा उद्देश्य बदल चुका है। आज पत्रकार घटनाओं को रिपोर्ट करता है। आप देखेंगे कि चाहे वह प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक तो समय की सीमा में बंधा हुआ है सब कुछ। पुराने समय में समय की सीमा नहीं थी, हमारे सामने एक लक्ष्य था, हमारे राष्ट्र निर्माताओं के पास या स्वतंत्रता सेनानियों के पास। हम अंग्रेजी शासन के अधीन थे, हमें जनता को जागरूक करना था, हमें जनता को नेतृत्व करना था, हमें एक स्वरूप प्रस्तुत करना था, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, बाबा साहेब हों, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

0: हूँ चाहे महात्मा गांधी जी हूँ, तो एक साथ आप देखेंगे कि उस दौर के लोग बराबर काम करते थे। अब आज अगर हम सोचें कि कोई भी पत्रकार, कोई भी साहित्यकार, दरअसल ये दोनों बट इसीलिए गए कि 80 के दशक के बाद, 70 के दशक के बाद जिस तरह से समाज अपने को परिवर्तित करने लगा और दूसरे माध्यम लगातार आने लगे, तो उद्देश्य बदल गए। आज के समय में साहित्यकार अपनी कृतियों का सृजन करता है, वह अपनी कल्पना की बातों को या अपनी सोच को, अपने अनुभवों को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। पत्रकार भी वही काम करता है, लेकिन पत्रकार का उद्देश्य तात्कालिक है। वर्तमान समय में जो हमारा पत्रकार समुदाय है, उसके पास चूंकि तकनीक का अंतर है, उसके पास वो समय नहीं है, तो वो बतौर साहित्यकार अपने को स्थापित नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं अलग है। और जो साहित्यकार है वो पत्रकारिता में अपना योगदान उस रूप में नहीं कर पा रहा है।
1: जैसे आपने कहा कि जो पत्रकारिता है वो तात्कालिक लक्ष्यों को साधता है, तो वहीं जो साहित्यकार होता है वो दीर्घकालिक चीजों को देखता है, समाज को दिशा देता है। इसी में जोड़ते हुए जयप्रकाश जी, अगर हम देखें जो पत्रकारिता का जो एक तरह से बदलाव आया है, मिशन से प्रोफेशन, या फिर आप कहें कि मीडिया इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है, आज के समय में अगर समाज को दिशा देना है और साथ के साथ जो एक और चलन बढ़ गया कि सबसे तेज या सबसे पहले, तो इसको एड्रेस करते हुए जो आज का पत्रकार है वो कैसे समाज का अगुआ बने?
0: आज का पत्रकार अपने को अगुआ के रूप में देख भी नहीं रहा है। दो चीजें हैं हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार है वह अपने को सेलिब्रिटी के तौर पर देख रहा है, जो एंकर है, तो वह अपने काम से जितना नहीं जाना जाता उतना अपने चेहरे से जाना जा रहा है, जबकि पुराने समय में ये बात नहीं थी। इसी तरह से साहित्यकार, साहित्यकार जो वर्तमान में बदलाव हुआ है उससे अपने को जोड़ने में जूझ रहा है। मैं बड़े से बड़े साहित्यकारों की बात करूं तो मेरा निरंतर उनसे संवाद होता रहता है, वो अभी तक तकनीक के बदलाव को भी नहीं समझ पा रहे हैं। स्वाभाविक है, हम एक बुजुर्ग से 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र के लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तकनीक को समझ लें, लेकिन जो आज का युवा है उसे यह समझना पड़ेगा और पत्रकार को भी समझना पड़ेगा कि आप स्थायित्व तो तभी पाएंगे जब आपके अंदर गुणवत्ता होगी, आप समाज से जुड़े होंगे।
1: जी बिल्कुल, पहले की किताबों को भी आपने देखा है, आज की किताबों को भी आप देख रहे हैं, तो जो पहले के साहित्यकार हैं और या जो अब का जो साहित्य रचा जा रहा है उसमें भाषा की बात हो या उनके सामाजिक सरोकारों की बात हो, उसमें क्या आप रेखांकित कर पाते हैं, क्या कोई बदलाव पाते हैं उसमें?
0: संतोष जी, देखिए बहुत बदलाव हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमें ये स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वर्तमान समय में साहित्य भी अपने स्थान से एक तरह से इतर हुआ है, क्योंकि वो जो बदलाव हुआ है, जो बहुत तेजी से पिछले दो दशकों का बदलाव है, जो तकनीक का बदलाव है, और सूचना विस्फोट के दौर में हम रह रहे हैं, लगातार अब AI आ चुका है, इंटरनेट आया, मोबाइल हर आदमी के हाथ में टेलीफोन है, और उसके चलते जो बदलाव है, साहित्यकार उस समाज की उस गति को नहीं पकड़ पा रहा है, पत्रकार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बिंदु पर हम ये देखेंगे कि जो आज का पत्रकार है या जो नया युवा है जो पत्रकार बनना भी चाहता है, वो नई तकनीक से तो वाकिफ, साहित्यकार जो है नई तकनीक से वाकिफ नहीं है, वो अपने युग में है, वह इस बदलाव को नहीं देख रहा है। तो हम उस तरह के स्थायी साहित्य की अगर बात करें तो आज के समय में वैसी किताबें हमें बहुत कम मिलती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी की किताबों में जो भारत के अंग्रेजी लेखक हैं वह आज पौराणिक आख्यानों को लिख रहे हैं और उससे वो चर्चित हो रहे हैं दुनिया भर में। यानी हम वहीं पे स्थापित हो रहे हैं, हम अपने पौराणिक काल में जा रहे हैं, महाभारत की कथाओं में जा रहे हैं, रामायण की कथाओं में जा रहे हैं, और उनको हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं तो हम स्टार और सेलिब्रिटी राइटर बन जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो पुरानी चीजें थी एक तरीके से हम अपने मूल में ही फिर से लौट के जा रहे हैं, भाषा का अंतर है और वो भाषा का अंतर उन्हें सेलिब्रिटी बना दे रहा है। जयप्रकाश जी, जैसे बहुत सारे युवा श्रोता भी हमें इस समय सुन रहे हैं, तो उन युवा श्रोताओं के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भविष्य के पत्रकार हैं या फिर भविष्य के साहित्यकार हैं, दोनों ही तरह के लोग जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा?
0: मेरा मानना है कि जब भी कंटेंट की दुनिया में हम होंगे, यानी जब लिखने पढ़ने की दुनिया में होंगे, बोलने की दुनिया में होंगे, तो हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि हमें हड़बड़ी नहीं करनी। दूसरा ये ये है कि हमें पढ़ना जरूर चाहिए, बिना पढ़े कोई भविष्य नहीं है। जब आप लिखने पढ़ने बोलने के माध्यम में हैं तो आपकी बुनियाद पढ़ाई लिखाई से ही बनेगी। तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें तकनीक को समझना है, लेकिन समझने के साथ साथ हमें पढ़ने की जरूरत है। और जब तक हम अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, अपनी अतीत को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता

0: को अगर नहीं जान पाएंगे तो हम भविष्य में कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। आज भारत का गौरव क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत का नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रज्ञा के स्तर पर, आध्यात्म के स्तर पर, सभ्यता के स्तर पर, धरोहर के स्तर पर हम दुनिया की सर्वाधिक लचीली संस्कृति और एक ऐसी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुम्बकम को अपना मूल मंत्र मानती रही है। हम हर प्राणी में भी आत्म तत्व देखते हैं। तो हमारे युवाओं को मेरा सुझाव ये है कि अगर आप पत्रकारिता या किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर स्थान बनाना चाहते हैं तो पढ़ें पढ़ें और पढ़ें, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं।
1: जी बिल्कुल, जीवन में पढ़ाई और पढ़ाई में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जयप्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुमूल्य जानकारी साझा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था साहित्य और पत्रकारिता, कल आज और कल। वार्ताकार थे जयप्रकाश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार, भेंटकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी मनोज।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं संस्कृत न्यूज।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे यूनेस्को वैश्विक सांस्कृतिक अभिलेख स्थलस्य प्रम्बानन मन्दिरस्य ऐतिहासिकं भ्रमणम् प्रतिपादितं यत् मन्दिरस्य संरक्षणे भारतस्य सहभागिता द्वयोः देशयोः सांस्कृतिक न्यासं प्रकटीकरोति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जलाप्लावितेन प्रभावितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषणं विधाय केन्द्रसर्वकारपक्षतः सम्भाव्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनम् अयच्छत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागानुसारं देशस्य मध्य पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च सम्भावना वर्तते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उदघोषयत् यत् ईरान देशेन साकं युद्धविरामाय कृतं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदम् एति। वैश्विक भूराजनैतिक चिन्तन प्रभावात् भारतीय शेयर विपणौ भीषण ह्रास। सेंसेक्स निफ्टी सूचकांकौ सार्ध द्विशतात्मिका अपचिति दृश्यते। अपि च फीफा विश्वकप पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेन कोलंबिया दलं पराभूय प्रागुपान्त्य चरणे अर्जेंटीना दलेन सह क्रीडा सुनिश्चिता कृता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे संस्थिते यूनेस्को विश्व न्यास स्थले प्रम्बानन मन्दिर परिसरे इण्डोनेशिया राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यमुना साकं भ्रमणम् अकरोत्। तत्र पारम्परिक गैमेलिन संगीत ध्वनिभिः शास्त्रीय नृत्यैश्च प्रधानमन्त्रिणः अभूतपूर्वम् अभिनन्दनं विहितम्। नवमशताब्द्याः अस्य मन्दिर परिसरस्य अवलोकनावसरे प्रधानमन्त्रिणा मुख्य शिव मन्दिरे विशेष पूजार्चना कृता। सहैव भारत इण्डोनेशिया देशयोः सहयोगेन मन्दिरस्य संरक्षण प्रयासाः दृष्टाः। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना प्रतिपादितम् यत् प्रम्बानन मन्दिरं भारत इण्डोनेशिया देशयोः शतशः वर्षाणां प्राचीन सभ्यतायाः प्रतीकभूतं वर्तते। मन्दिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञम् आविष्कृतम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत। द्वादशशताब्देः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इण्डोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में

0: कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: जकार्तायाम द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणापत्रे भारत इंडोनेशिया देशाभ्याम सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निंदा विहिता। द्वयोर देशयोः नेतृभ्याम् अन्ताराष्ट्रिय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्। उभाभ्याम् प्रमुखाभ्याम् वैश्विक स्तरे प्रतिबंधितानां आतंकवादिनां संघटनानां च विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय बलं प्रदत्तम्। उग्रवाद विरोधी सहयोगं च दृढीकर्तुं सहमतिः प्रकटिता। स्वस्य त्रिदेशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे प्रधानमंत्री अद्यैव त्रीणि दिनानि यावत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरं प्राप्स्यति। तत्र सः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा एंथनी एल्बनीज इत्यनेन साकं तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। अनेन साकमेव सः भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् उभय देशस्य शीर्ष उद्योगपतीन् तथा च मेलबर्न नगरे प्रवासी भारतीय सभां च संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य अतिवृष्ट्या जलौघ सदृश परिस्थित्या सहैव भूस्खलनेन प्रभावितानां संकटग्रस्तानां अनेकेषां राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः साकं दूरभाषेन संभाषणं विहितवान्। तेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य पक्षतः संभाव्य सर्वविधसाहाय्यस्य दृढाश्वासनं च असौ अयच्छत्। श्रीशाहेन महाराष्ट्रराज्ये भीषणातिवृष्ट्याः जलप्लावनस्य च स्थितेः समीक्षां कर्तुं महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन सह विशेष चर्चा अकारी। संवादावधौ गृहमन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणं प्रति संकटकाले महाराष्ट्रसर्वकारस्य सहयोगार्थं केन्द्रीय प्रशासनात् सर्वविधसाहाय्य प्रदानस्य प्रतिश्रुतिः अभिव्यक्ता। अनेन सहैव गृहमन्त्रिणा गुजरात राज्ये अतिवृष्ट्या जल अवरोध स्थिति सन्दर्भे गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन साकमपि मन्त्रणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य मध्यम एवं पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अनेन सहैव ऋतु विभागेन जम्मू कश्मीर लद्दाख हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेशेषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामिषु द्वित्रि दिनेषु प्रावृट् उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु क्षेत्रेषु तथा च राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रान्तानां शिष्टेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धमानः सन् सम्पूर्णे देशे पूर्णतः व्याप्तो भविष्यति। अमेरिका राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन सह सैन्य संघर्षं निर्वापयितुं हस्ताक्षरितं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् अमेरिका सम्प्रति तेहरान प्रशासनेन सह सम्भाषणं कर्तुं नैव वांछति। राष्ट्रपतिः ट्रम्पस्य इदं वक्तव्यं तुर्की देशस्य राजधान्याम् अंकारा नगरे आयोजिते नाटो शिखर सम्मेलनस्य वार्ताहर सम्मेलने आगतम्। एषः घटनाक्रमः होर्मुज़ जलपोते त्रिषु तैलग्राहक पोतेषु अस्त्रप्रहारेण संजातस्य विवादस्य पश्चात् अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये प्रवृत्तस्य प्रत्यक्ष सैन्याक्रमणस्य परिणामो वर्तते। यद्यपि ईरानेन अस्य आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं प्रत्यक्षतया नैव अंगीकृतम्। अद्य भारतीय शेयर विपणौ महती विक्रय प्रतिस्पर्धा दृष्टा। यस्य प्रभावात् सेन्सेक्स निफ्टी इत्येतौ उभावपि प्रमुख सूचकांकौ 100% 2%+ अपचितिः

0: अभवत्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन अद्य श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकं च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्यपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा वर्तते। फीफा विश्वकप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड देशैः राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वन्द्वे विजित्य अन्तिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम्। शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्यचक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को
1: राम राम।
0: लोकेंद्र भाई,
1: हाँ प्रीति बहन,
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और जैसा कि मौसम जो है उसके हिसाब से हम अपने भाइयों को आगाह करना चाहते हैं कि ये जो मौसम होता है इसमें अपना ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, और देखिए खान पान का हो वो जब मौसम के अकॉर्डिंग हमें रहना है। और देखिए जैसा कि एकदम से मौसम में बदलाव हो रहा आया है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप निकली हुई, तो इस सर्द गर्म वाला
0: जी
1: हो जाता है, तो इससे हमारे शरीर को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। देखिए बरसात का मौसम है, राहत के साथ साथ संक्रमण बीमारियां भी लेके आता है, जिससे खतरा भी बढ़ता है। इस मौसम में सर्दी जुकाम हुआ, वायरल बुखार हुआ, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जल जनित रोग भी होते हैं, जिसमें दस्त है, टाइफाइड है, पीलिया जैसे संभावनाएं होती हैं। तो इसके स्वास्थ्य के प्रति हमें सावधानी बरतनी है।
0: जी बिल्कुल, और जहाँ तक आपने खाने पीने की बात कही है तो पानी जो है बड़ा स्वच्छ पिए,
1: हाँ।
0: और अगर नहीं आपके यहाँ फिल्टर है तो उसको उबाल कर तब पिए, और अपने आसपास बिल्कुल सफाई रखें क्योंकि बारिश का मौसम होता है, घर में जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं टूटे रहते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो वो पनपते हैं और उससे फिर बीमारियां आती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें ताकि आप अपना अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अपने भाइयों से बताना चाहूंगा कि देखिए बारिश तो हो रही है और हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसका निकास जरूर करें, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो वहां पर मच्छर मक्खी आएंगे तो बीमारी हमें आएंगी। और अक्सर देखा गया कि जो गर्मी अभी चल रही थी, तो गर्मी में हमारे भाई बहन कूलर इस्तेमाल करते थे तो उसमें पानी भरा रहता था, उसका पानी समय समय पर निकालते रखें। और इस मौसम में कूलर के पानी में पेट्रोल या कुछ ऐसे दवाई लिक्विड डालें जिससे मच्छर ना होता।
0: अब तो दवाई भी आती है कि दो बूंद दवाई आप डाल दें तो उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे, क्योंकि वो आप ही के स्वास्थ्य के लिए ही ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए बातें तो अभी और भी होंगी, क्यों ना हम पहले मनोरंजन करवाएं अपने ग्रामीण भाइयों बहनों का। तो सुनवाते हैं सबसे पहले नरदेव बेनीवाल की आवाज में ये रागिनी,
1: तो आइए सुनते हैं।

0: प्रीति बहन,
1: जी
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये रागनी कलाकार थे नरदेव बेनीवाल। देखिए
1: और
0: प्रीति बहन,
1: जी
0: जैसे कि जितनी हमारे लिए सुविधाएं भी हो रही हैं, उतना हमारे लिए नुकसान भी हो रहा है।
1: जी
0: देखिए, गांव में बढ़ते यूपीआई और एटीएम फ्रॉड के बारे में हम अपने भाइयों को बता दें कि आज का जो समय है वो डिजिटल भुगतान का उपयोग गांव में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ यूपीआई और एटीएम से जुड़े धोखाधड़ी भी घटनाएं भी बढ़ रही हैं,
1: जी
0: क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे भाई बहन है वो ज्यादा पढ़े लिखे तो
1: चीजों
0: होते
1: को
0: नहीं हो।
1: समझ
0: हाँ
1: मतलब नहीं इतना समझ पाते हैं, जालसाजी और ये सब तरीके नहीं जानते हैं।
0: हाँ
1: वो बड़े मन से बड़े साफ होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर किसी ने फोन करके ये बोल दिया कि आपने ये गलती की है, चलिए इतना पैसा दीजिए, तो वो इतना
0: घबरा जाते।
1: सोच ही नहीं
0: हाँ
1: पाते हैं कि ये एक तरह का जालसाज है या एक तरह की धोखाधड़ी है, तो वो ये समझ नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए आजकल ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि जो सामने से कोई कॉल आता है या सामने वाला कुछ ऐसा करता है कि माइंड एक जो हमारा दिमाग है एकदम काम करना बंद कर देता है,
1: जी
0: तो उसको देखते हुए हमारी जो सोचने की क्षमता होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हमें ये समझ में नहीं आता क्या करना है। तो हमारे पास जो होता है, जैसे कोई किसी ने ओटीपी मांगा तो ओटीपी हम शेयर कर देते हैं, या कुछ ऐसा चीजें होती है को उनको बता देते हैं, तो हमारा अकाउंट जो होता है खाली होता है। तो
1: जी
0: पहले का समय जो था, हमारे भाई बहन अपने जो पैसे को घर में छुपा के रखते थे, लेकिन बैंक की जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी तो बैंक में जमा करने लगी। अब बैंक के साथ साथ लोगों को साथ सुविधाएं भी मिली और नुकसान भी हो रहा है। मतलब बैंक नुकसान नहीं कर रही है, पर जो धोखाधड़ी के जरिए नुकसान किया जा रहा है लोगों को, गलत संकेत के
1: जी
0: जरिए
1: तो ऐसे
0: उस
1: में तो बस यही है कि खुद को जागरूक करना, और जैसे सरकार समय समय पर रेडियो जिंगल के माध्यम से, कॉलर ट्यून के माध्यम से वो आपको अवेयर करती है कि ताकि आप अगर ये सुनेंगे, ये भी जो भी संदेश होता है ये आप सुनेंगे, तो उससे भी आप थोड़ा जानकार बन जाते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे हम कि जितने भी हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचने का सबसे आसान उपाय यही है कि कोई भी अगर आपको फोन करता है और बताता है कि आपने ये किया वो किया, सबसे पहले आप उसकी शिकायत दर्ज कराएं, और इतनी जल्दी भरोसा ना वो करें कि भाई ऐसा, जब आपने जो चीज गलत नहीं की है तो उसके लिए आप डरे भी नहीं, है ना।
0: बिल्कुल। देखिए प्रीति बहन, एक्चुअली क्या है, देखिए इस टाइम जो मैं ही अपने बारे में बताऊं कि मेरे साथ एक बार मेरे पास फोन आया कि मेरे का दिमाग ऐसा हो गया कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था।
1: हाँ
0: उन्होंने बोला
1: ऐसा
0: कि मैं आपके रिलेटिव बोल रहा हूँ, और रिलेटिव के आप मुझे एकदम से अर्जेंट पैसे की जरूरत है, या मैं आपके पास बार कोड भेज रहा हूँ, ये तो मेरे को आप पेमेंट कर दीजिए। तो
1: जी
0: मैंने सोचा मतलब यार, ऐसा इतने बड़े आदमी होकर वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कुछ ना कुछ। मैं थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, फिर उनको डायरेक्ट फोन किया मैंने कि ऐसी ऐसी बात है आपके पास, तो
1: जी
0: उन्होंने मना कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तो भैया जो हमारी सोच, मैं भाइयों से बताना चाहता हूँ, जो हमारी सोचने की क्षमता होती है उस टाइम सिचुएशन ऐसी पैदा कर देते कि हमारे समझ में नहीं आता कि हमें
1: जी
0: करना क्या है। तो इन चीजों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, और हमारा एटीएम पिन है, एटीएम नंबर है, और बैंक खाते वगैरह, ये चीजें हमें गोपनीय रखी है, और बैंक भी कहता है कि हमें उनके साथ भी शेयर ना करूं। तो
1: जी
0: इन चीजों को हमें हमारे भाइयों को
1: और
0: इसके लिए
1: कभी
0: प्रतिशत
1: भी
0: ना।
1: इस तरह का मैसेज जो आता है आपके पास या कॉल आता है कि आपने इतना पैसा अचानक निकाल लिया है और अब अपना ओटीपी बताइए, फिर हम आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, तरह तरह के तरीके होते
0: हाँ
1: हैं आपको धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के,
0: फंसाने
1: है
0: के।
1: ना। तो कई बार ये होता है कि आपके वहां पर किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया है और इतना पैसा चाहिए, तो लोग इतना सोच नहीं पाते हैं और वो डर के मारे अपना ओटीपी अपना पैसा बता देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो एक तरह का फ्रॉड था।
0: हाँ, अब ये तो रही हमारी एटीएम से संबंधित, बैंक से संबंधित बात। अब चल रहा है यूपीआई का। अब
1: जी
0: देखिए, हम छोटे छोटे बाजार में जाते हैं, छोटे छोटे पेमेंट के लिए
1: अमाउंट
0: हम
1: का जो
0: यूपीआई
1: होता है हम
0: हाँ
1: यूपीआई का
0: यूपीआई
1: इस्तेमाल
0: करते हैं, तो
1: करते
0: उससे
1: हैं।
0: हमें लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि
1: जी
0: अब कैश हर कोई तो जेब में रखे नहीं।

0: चलता है, बस मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, साथ साथ बैंक अकाउंट से लिंक होता है तो हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं, हमें तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, तो हमारी ये सुविधाएं भी हुई है।
1: जी बिल्कुल, यूपीआई से ये भी फायदा है ना कि अगर बहुत ज्यादा पैसा आपको कहीं जैसे शादी ब्याह का मौका है तो अब पहले क्या होता था कि जो जेब होती थी पैसे रखने की उसको एक नहीं दो दो रखी जाती थी, लेकिन अब ये फायदा है कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप अच्छा खासा अमाउंट आप उससे वो कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: दे सकते हैं, तो अच्छा है, यूपीआई का फायदा भी आपको उठाना चाहिए।
0: बातचीत और भी करेंगे, आप किसको सुना रहे हैं?
1: अब हम सुनवा रहे हैं खेमचंद और साथी की आवाज में ये रागिनी,
0: सुनते हैं।

कनी और महरिया सरफी तेरी खाली जेब डटोलू ना हेरा दारू पी के लेटेगा हेरा दारू पी के लेटेगा तेरे पांदा बुसरे रोडू ना ओड पहरे सिंगर के ने

अरे मेरे जैसा जे करे दुनिया में, मेरे जैसा इस दुनिया में जे कर साप का कोन्या। सब दुनिया ते प्रेम करूं मेरे लेस पाप का कोन्या। गंधर किन्नर रहे रुखाड़े डर तीन ताप का कोन्या। जड़ सा पहलम बोलेगा वहां

तरह का तू लोभ दिए मैं हाजर गात करूं कोन्या लक्ष्मी चंद पैज की पूरी।

0: प्रीति बहन,
1: जी
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये रागनी। कलाकार थे खेमचंद वासाथी और किस्सा था वीर विक्रमादित्य से। और देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए बहुत सारी योजना चलाई हैं, जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। इसका जो उद्देश्य है प्रीति बहन, रासायनिक उर्वरकों विशेषकर यूरिया के संतुलित

0: उपयोग को बढ़ावा देना है और किसानों को प्राकृतिक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य हम भी और भी बता देते हैं कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर कम करना है, जैविक खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और अन्य वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देना है और मिट्टी की उर्वरकता और स्वास्थ्य में सुधार करना है, खेती की लागत कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये तो रही योजना, तो आप किसको सुनवा रहे हैं आप?
1: अब हम सुनवा रहे हैं बेघराज नागर की आवाज में ये रागिनी।

0: प्रीति बहन,
1: जी
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे मेघराज नागर की आवाज में ये रागनी और किस्सा था सेठ ताराचंद से। और इसी
1: जी
0: के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। और सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्वार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्तीय पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रूपये फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेर

हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम।
0: लोकेंद्र भाई,
2: प्रीति बहन,
0: कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हम अपने किसान भाइयों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देते हैं, साथ में मनोरंजन करवाते हैं।
2: और आज के हमारे जो कार्यक्रम है कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत हम भाइयों को अनुभवी किसानों से बातचीत भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने भाइयों को बता दें कि बरसात का मौसम है, इस मौसम में हमें अपने पशुओं की किस तरह से देखभाल करनी है, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है, हम ये भी बता देते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में पशु का जो स्वास्थ्य है वो बहुत जल्दी बिगड़ता है। इस दौरान उन्हें नमी, कीचड़ और दूषित पानी के कारण विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है।
0: जी, और जैसे कि हमने बात की थी अपने कार्यक्रम ग्राम संसार में कि एक संतुलित आहार लेना है, वैसे ही हमारा जो पशु परिवार है उसके लिए भी खान पान का ध्यान रखना है। उन्हें ताजा पानी पिलाना है और जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर पानी की जो निकासी है, जैसे कि लगातार बारिश का मौसम चल रहा है, तो निकासी का ध्यान रखना है।
2: और इसके साथ साथ देखिए, पशुओं को हमेशा ऐसी जगह साफ, सूखे और हवादार स्थान पर बांधें इस मौसम में, और पशुशाला में जो वर्षा का पानी जमा ना होने दें, और तथा इसके साथ साथ नियमित रूप से साफ सफाई, कीटाणु रोधक जो दवा होती है उसको छिड़काव करते रहें समय समय पर, और पशुओं को स्वच्छ और ताजा हरा चारा, साफ पानी जरूर पिलाएं। और इसके साथ साथ सड़ा गला, फफूंद लगा या भीगा हुआ चारा ना खिलाएं क्योंकि इससे उनकी पाचन क्रिया में समस्या पैदा करती है।
0: जी बिल्कुल, और इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि कृषि का जो रीढ़ है, कृषि की जो रीढ़ है वो हमारा पशुधन है। तो जब हमारा पशुधन ठीक रहेगा तभी कृषि में हम उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ा सकते हैं।
2: हाँ, और देखिए एक बात और बता दूं अपने भाइयों के कि बरसात के मौसम में पशुओं को नियमित टीकाकरण और जो उनकी बीमारी होती है उसका दवा जो हो, पशु चिकित्सक होते हैं उनसे समय समय पर उनका उपचार दिखाते भी रहे जिससे उन्हें बीमारी ना हो, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां जैसे खुरपका मुंहपका इस तरह की बीमारी होती है, तो उससे उनके टीके भी लगते हैं, तो वो जरूर लगवाएं।
0: जी, तो आइए, जानकारी तो अभी कार्यक्रम में और भी होगी, आइए सुनवाते हैं सबसे पहले राजेंद्र जाटव की आवाज में ये उपदेश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र जाटक की आवाज में ये उपदेश।
1: पृथ्वीन, जैसा कि आपने कहा था कि हम अपने भाइयों को सुनवाएंगे कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत अनुभवी किसानों की बातचीत, तो आइए बातचीत सुनते हैं। और इनसे बातचीत कर रही हैं संध्या गुप्ता, उन्होंने हमारी जो अनुभवी किसान है उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन के एक नवीन अंक में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में कुशलता और सूझबूझ के साथ खेती करने वाले प्रगतिशील किसान अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं।
3: मैं मनेंद्र सिंह, गांव खंडेरा, ब्लॉक तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। मैं सन 80 से खेती कार्य कर रहा हूं। पहले पारंपरिक खेती की, इसके बाद मैं वैज्ञानिक तरीके से मशीनरी से खेती की, और सन 2001 में डॉक्टर वी पी सिंह जो राइस ब्रीडर हैं, जो पद्मश्री प्राप्त किए हुए है, उनके देखरेख में मैंने KRVL कंपनी का धान का बीज तैयार किया। तो उसके बाद में मैंने बहुत लोगों को धान के बारे में जैसे बीज उत्पादन किया, तो उसमें मुझे 2006 में जिला स्तर पे अधिक उत्पादन धान में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं इसी तरह खेती करते रहा। उसके बाद में गेहूं की भी 2012 में गेहूं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोदीपुरम जो विश्वविद्यालय है उन्होंने प्रगतिशील कृषक का सम्मान प्रदान किया, और अनेकों बार जो KVK है उन्होंने बार बार कभी साग भाजी में कभी उसमें, क्योंकि मैं खेती लगातार कर रहा था उसके साथ साथ अपने लायक साग भाजी और लोगों को प्रभावित कर रहा था। तो इसी तरह करते करते मैंने 2011 में बागवानी के नींबू के पौधे IRI से सीडलेस के पौधे लिए 50, जिनको डेवलप किया, कलम बना के लोगों को वितरित किया और लोगों को जागरूक किया कि नींबू को जितना फायदा है। उसी में मुझे 2007 में इनोवेटिव कृषक का सम्मान प्राप्त किया, क्योंकि मैंने जो नींबू का उत्पादन किया उसमें अचार और उसका स्कोर तैयार करके उसकी जैसे मेडिसिन वैल्यू चाय वगैरह में इस्तेमाल किए हैं, नींबू में इस्तेमाल करें, तो इस तरह से उसका भी मैंने लोगों को प्रचार प्रसार किया और लोगों को पौधे तैयार उपलब्ध करा के दिए और अब भी दे रहे हैं। हाँ, फिलहाल जो हमने SRI से धान की बिजाई की है, जो नई प्रजाति है उसमें नई बीज जो रिलीज हुए है फिलहाल में पिछले साल ही 1985 और 1979, उसके भी 4 एकड़ के करीब सीधी बिजाई की है। इस तरह से मैं लोगों को नई नई तकनीक और उसके बारे में जानकारी देता हूँ, जिसका प्रदर्शन खेतों पर समय समय पर लगाता हूँ। अभी पीछे 3 साल की योजना थी ST ST में, जिससे मैंने IRI का 5-6 गांवों को बीज वितरण किया, जो उन्होंने सब्जी का और धान का और गेहूं का 3 साल तक उनकी योजना चली। इस अनुसंधान IRI से जुड़ा हुआ हूँ। KVK ने, मेरठ विश्वविद्यालय ने, और एक हमारी संस्था है मोबिलाइजेशन सोसाइटी, उसमें आजीवन सदस्य हूँ। उसमें अनेकों बार प्रगतिशील किसान का सम्मान मिला है। इस तरह से मैं प्रगतिशील किसान तो नहीं हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ नई तकनीक के बारे में, नए अनुसंधान के बारे में, जो नए बीज तैयार हो रहे हैं। अभी फिलहाल जो अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जी ने जो 108 वैरायटी रिलीज की थी, उसमें भी मैं वहां पहुंचा हुआ था, जिसमें केवल 30 ही व्यक्ति थे पूरे इंडिया से।
4: रंदानंद प्रधान, ग्राम तिगरी, तहसील हापुड़, जिला हापुड़। हम यहाँ फूलों की खेती करते हैं, करीब सन 82 से खुले खेतों में करते थे पहले, सन 2000 से पोली हाउस में खेती करते हैं और यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं। हम जो आम खेती करते हैं जैसे गेहूं, गन्ना, धान, जो भी करते हैं, उसका कम से कम भी हमें 20 गुना मुनाफा इन फूलों की खेती में मिलता है। ये एक तरह से हाईटेक एग्रीकल्चर। पहले से ही मैं जो है पूसा में जाता था, नए नए बीज लेके आते थे वहां से, तो मुझे पता लगा कि कोई एक फूल ऐसा है जो की गांठ 2 रुपए की होती है और उसका फूल भी 2 रुपए का बिक जाता है और इसमें जो है कम से कम इतनी बचत आ जाती है आधे की। कुछ जो अच्छे मार्केट है जैसे ग्रेटर कैलाश है, डिफेंस कॉलोनी है, साउथ एक्स में जो है ना, ये सारा फूल का चंद लोग ही खरीदते थे उस टाइम।

0: मुनाफा हो जाएगा, आगे बढ़ाते चले गए और आज तक बराबर खेती कर, जो पोली हाउस में खेती कर रहे हैं हम, पहले उसकी तैयारी करके उसकी कम से कम 1 से 1.5 फुट की बेड बनाते हैं पूरे पोली हाउस में। जैसे 1 एकड़ है तो उसमें बेड बना के और ड्रिप इरीगेशन के साथ लगाते हैं, उसके साथ उसमें जो हम गुलाब की खेती करते हैं तो उसमें 30,000 पौधे आते हैं, देख रेख करते हैं, फिर उसे मार्केट, उसकी दिल्ली मार्केट है, इसमें गाजीपुर में एक्सपोर्ट भी हो जाता है बाहर देशों के लिए। गुलाब के अलावा जिप्सोफिला है, जरबेरा, कार्नेशन और कई खेती करते हैं। 1 मीटर की बेड हो गई या 80 सेंटीमीटर की बनाते हैं, उसका 40 का पात बनाते हैं उसके चलने के लिए, तो उसमें जो है ना पेड़ ऊपर लगाते हैं बेड के ऊपर, उस पर ड्रिप इरीगेशन लगाते हैं और खाद भी उसी ड्रिप से ही देते हैं, जो घुलनशील खाद आते हैं वो ही लगाते हैं। अब तो यहाँ 50-60 आदमी काम कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ फूल काट लिया, शाम तक वो तैयार हो जाता है, शाम को गाड़ी आती है कैंटर या वो, उसमें जो है पानी में क्रेट होती है, क्रेटों में पानी हल्का सा भर के उसमें जो है खड़ा करके उसे मार्केट भेज देते हैं, वो ताजा रहता है, तो वहां तक मार्केट तक जाने में उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे गांव से लगभग 1 घंटे में गाजीपुर गाड़ी पहुंच जाती है। यही है जी, इसमें जो बीमारी की रोकथाम करना, बाकी तो लगाने के लिए हर आदमी लगा सकता है, लेकिन उसे उगाना, उसके जो खाद पानी देना, उसको थोड़ा सा उसका मानक होता है कि इतना पानी लगेगा, इतना खाद लगेगा, इस तरह लगेगा, ये टाइम पे ये दवाई लगेगी, तो उस तरह कर। कई बार मुख्यमंत्री जी ने इसमें सम्मानित करा है, एक दो जगह गोष्ठी होती है, गोष्ठियों में सम्मान करा है, तो इस तरह सम्मान मिलते रहते हैं जी। बस ये है कि काम कर रहे हैं, आगे आने वाले अब जो बच्चे आ जाएंगे इस काम में, अपना और कारोबार बढ़ाएंगे, गरीब लोग हैं या जो वो काम करने तो कहीं जाना नहीं पड़ता, यहीं अपना काम कर लेते हैं जी। हम तो जो है जो भी आ जाएगा हमसे प्रेरणा लेगा, उसे सही दिशा में जो है प्रेरणा देंगे। ये तो मेहनत का सौदा है, इसमें तो जितनी जो मेहनत करेगा उतने ही पैसे, उसे अक्टूबर से लेकर और मार्च तक, अप्रैल तक का मौसम होता है, ये सबसे बढ़िया होता है इस फूल के लिए। कोई सा भी फूल हो, जो पोली हाउस में फूल लगते हैं वो इस टाइम के सबसे अच्छे निकलते हैं और मार्केट भी इसी टाइम की होती है। हमारे यहाँ जैसे हॉर्टिकल्चर है, इसमें के जो है गोष्ठी होती है, किसी मंत्री की गोष्ठी है, किसी डीएम की गोष्ठी है या किसी की है, तो उसमें हमारे फूल जाते हैं। अब पैकिंग तो इसकी ये है कि जो हमारा एक पैकिंग होती है, जैसे हर चीज की जरबेरा की तो एक पन्नी आती है, वो उसको फूल पे लगानी पड़ती है, और गुलाब का एक जैसे 20 बंच का हम बनाते हैं तो उसके ऊपर जो है ना गुलाब के ऊपर एक रैपर लगा, उसमें उससे पैक करते हैं, उसकी अलग अलग पैकिंग है। जैसे जिप्सोफिला है उसको एक पन्नी आती है मार्केट से ही, उसको पन्नी में बंच को पैक करते हैं।
1: जी नमस्कार, मैं एक प्रगतिशील महिला किसान हूँ, मेरा नाम कुसुम मौर्य, ग्राम रायपुर वजीरगंज गोंडा से। जी मैं मुख्य रूप से एलोवेरा है, सहजन है और शतावरी अश्वगंधा ये खेती कर रही हूँ, और ये 4 एकड़ में मेरा प्लांट है पूरा। औषधीय खेती मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग औषधीय खेती कर रहे हैं, तो मेरा भी विचार आया कि मैं भी औषधीय खेती करूं, और इसमें थोड़े लागत और ज्यादा मुनाफा भी दिख रहा है, इसलिए मैंने औषधीय खेती पर अपना रुझान, इसमें अपना रुचि लाई। 2025 में मुझे प्रगतिशील किसान का सर्टिफिकेट मिला है, और ये औषधीय खेती करने के कारण। जी जलवायु तो अपने यहाँ का ठंडी और गर्मी, ये बरसात, ये तीनों मौसम है, और इसमें अच्छा ये फसल चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे एलोवेरा है तो उसे लगाया गया जुलाई महीने में, लगाते हैं तो अच्छा डेवलप होता है, साल भर कम से कम लग जाता है तैयार होने में, और फिर इसकी कटाई जो है 3-4 महीने में किया जाता है। एक बार कटाई किए तो फिर उसके 2 महीने बाद फिर कटाई करेंगे, उसमें पत्ता आता रहता है, कटाई करते रहते हैं और पत्ता मतलब उसमें नया निकलता रहता है, बार बार इसे लगाना नहीं पड़ता है, ही तो इसमें लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। सहजन भी इसी तरह है, सहजन लगाए, 1 साल लगा दिए तो 4-5 साल बड़े आराम से चल जाता है, और उसके पत्ते की कटाई करते रहते हैं, छटाई करवा देते हैं, पत्ता उसका निकाल लिए मतलब ड्राई करके पाउडर बनाते हैं, फिर उसमें नए कल्ले आ जाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं एलोवेरा से, एलोवेरा जेल है, साबुन है, जूस है, एलोवेरा तेल है, ये सारे इस प्रोडक्ट में बनाती हूँ, और सहजन से पाउडर है और सहजन का तेल है, दर्द निवारक तेल, सहजन का साबुन भी बनाते हैं। 11 महिलाएं हमारे से जुड़ी हुई हैं जो इसमें अपना सहयोग करती रहती हैं, जो भी काम होता है सब पूरा मिलके करती हैं। जी प्राकृतिक खेती है, किसी भी प्रकार का मतलब केमिकल

0: वगैरह या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते। हाँ, नेचुरल तरीके से प्राकृतिक खेती, जैसे गो आधारित गोबर की खाद है या केचुआ की खाद, ये सब प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद प्रयोग नहीं करते। ये मार्केट अपना यहाँ गोंडा में है, अयोध्या है, फैजाबाद है, और नजदीक ऐसा फिर जो हम मतलब अपने कॉन्टेक्ट नंबर है उनको, जैसे दिल्ली हुआ, बनारस है या हरिद्वार है, कई जगह मतलब मैंने सामान ये कॉन्टेक्ट द्वारा भेजी हूँ, डाक द्वारा या कुरियर से मैं भिजवा देती हूँ। जो भी अपना संपर्क करता है और उसको सामान चाहिए होता है तो उसको मैं भिजवा देती हूँ। मैं किसानों को यही संदेश देना चाहूंगी कि कोई भी काम करें, मन लगा कर करें, और इच्छा से जब करेंगे तो अच्छा ही होगा। कोई भी खेती करते हैं तो उसमें अपना बढ़िया से रुचि लगाएं, जैसे औषधि खेती है या खेती किसान मतलब ये सब्जी वाला है या गन्ना की फसल, कुछ भी करें लेकिन मन लगा कर करें तो उनको ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, अगर कोई भी लेना चाहे। मैं अचार भी बनाने का काम करती हूँ, और ये ना साबुन है, जेल है, ये भी कोई बनाना चाहे और सीखना चाहे तो मैं उसका प्रशिक्षण भी देती हूँ। अब मेरा खेती जो अच्छा है उसको पसंद आता है और मुझसे पूछता है कि ये कैसे किया जाता है, मैं उसको भी बताती रहती हूँ और वो सीखता रहता। बहुत सारे लोग मतलब देखने भी आते हैं जिसको मैं, जिसको अच्छा लगता है कि ये कैसे किया जाता है या कैसे होता है, मैं उसको उसके बारे में बताती रहती हूँ। भविष्य की योजना है कि मैं जो हमारे सारे ये प्रोडक्ट हैं कुछ पाउडर फॉर्म में है बन रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि इसे टेबलेट फॉर्म में बनाया जाए तो ज्यादा आसान होगा खाने में। धन्यवाद।
1: मेरा नाम मुकेश नागर, ग्राम पोस्ट बम्बावड़, जिला गौतम बुद्ध नगर। मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। बासमती 11-21 पे ज्यादा हमने काम किया है, और वो भी पेस्ट मैनेजमेंट पे। NCIPM से जुड़े हुए हैं, 15-16 साल होगी जिसमें कि हमने अभी तक बिना पेस्टिसाइड के जो ज्यादातर बासमती पे काम किया। किसानों को भी हम अपने खेत पे प्रतिदिन दिखाते हैं और कम पेस्टिसाइड लगाने के लिए ज्यादा करते हैं, जो जिसमें हम कुछ जैविक भी करते हैं, अपना जो बनाकर लगाते हैं। हमने DSR से भी, हम 2 साल से जुड़े हुए हैं, DSR विधि से भी हमने लगाया। अब के मैंने 5 एकड़ में DSR लगाई है, 1985 और 1989। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, कम खर्चे में और अधिक मुनाफा इसमें, जो लेबर भी कम लगेगी लग रही है इसमें जो, और बहुत ही फायदेमंद है ये जो DSR विधि धान की। जो धान से हमने गेहूं की भी करी है, और गेहूं के बाद में हरी खाद लगाते हैं, ढेचा और मूंग, जो उससे हमें जो है कम यूरिया की लागत में हमको धान की फसल मिल जाती है, उससे हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है मूंग से, जो मूंग और ढेचा से। लेबर की बड़ी समस्या हुई, फिर हमने DSR विधि लाई, इसमें धान की कम से भी कम 70% बचत है पानी की DSR विधि में। DSR विधि ये होती है जी, अब हमने गेहूं काटने के बाद में हमने इसमें जो 20 मई बिजाई चालू करी है, गेहूं का खेत का पड़ेवा करा और उसमें सीधी धान की बिजाई कर दी, 15 से 20 दिन बाद उसमें पानी लगा दिया। अगर जनरेशन में कुछ कमी आ रही है तो 10 से 12 दिन पानी लगा दो तो पूरा जनरेशन आ जाता है। इसमें किसान को बहुत ही फायदा, लेबर मिलती नहीं है, लेबर 1,000 रुपए, 5,000-6,000 रुपए एकड़ का ले रही है, और इससे काम हो जाता 2,000 रुपए में किसान का जो एकड़ का। NCIPM का जो प्रोग्राम चलाया था अपना वेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट पे, इस पे जो हमें पूछताछ से भी अवार्ड मिला, हमें NCIPM ने पिछले साल भी हमको अवार्ड दिया। इसी पे जो हमने कम पैसे साइड पर किसानों को जागरूक किया, और वो हमने कम से कम अपने 25-30 गांवों में हमने ये प्रोग्राम चलवाया, और इससे किसानों को बहुत ही फायदा हुआ। जानकर किसान को यही पता नहीं था रोग और कीट क्या है, दुकानदार पर निर्भर रहता था। उसके लिए हमने बहुत अपील की, प्रोग्राम में मेहनत करी, डॉक्टर बुलाते थे हम बहुत ज्यादा, जो हर महीने मीटिंग कराते थे और किसानों को जाकर जागरूक करे थे, और इसी पे हमको कई बार अवार्ड मिल चुके हैं। जो ज्यादातर हम किसानों को जो है यही जागरूक करते हैं कि भाई कम से कम जहर मुक्त खेती करें, और हमारे इधर जो है कोई भी दुकानदार है वो बिगैर हमारे पूछे दवा नहीं दे सकता। कोई किसान बम्बावड़ से इन गाँव से जाता है तो पहले हमसे मालूम करता है जी ये दवा कुएं दें या नहीं दें, जब हम कहेंगे उनके खेत को देख के, जब उनको जागरूक करके जब लिख के देंगे भाई दवा लगानी, इसके ऊपर हमको बहुत सफलता हासिल हुई है। अनुभव तो ये होता है कि एक तो पहचान होती है कि आते भाई ये ऐसी खेती कर रहे हैं। अब बाहर सुबी KVK सुबी बहुत ज्यादा हमें मेरठ सुबी बात पे जो भाई वो बम्बावड़ में, फिर हमारा जो चावल है वो 4-5 देशों में गया है, वहाँ वो जहर मुक्त गया था, इसलिए तो उसमें एक अनुभव सा होता है भाई हमने कुछ करा है। और भी आदमी कहाँ भाई, 2 आदमी आपस में पूछे भाई ये कर रहे हैं, इनको जानकारी है, तो उसको एक अनुभव होता, अलग खुशी होती है।

0: कृषि समाचार दर्शन का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि समाचार दर्शन और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के गाए कुछ गजलें, प्रोग्राम गजल के अंतर्गत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा, ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण संबंधी नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत ढही, राहत और बचाव कार्य जारी। और दिल्ली के भारत मंडपम में प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 14 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा कि अगले 4 वर्षों में दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या मौजूदा लगभग 9,000 से बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को वास्तविक अर्थों में ईवी सिटी बनाने के लिए आधुनिक और फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने, पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा सभी स्लो चार्जिंग स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, डीडीए बाजारों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी परिसरों, मॉल और प्रमुख क्षेत्रों के आसपास स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने मेट्रो, डीडीए और वाहन निर्माताओं के साथ समन्वय बढ़ाकर ईवी चार्जिंग अवसंरचना का तेजी से विस्तार करने पर भी बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगी। यह समारोह सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। 12 किलोमीटर से अधिक लंबा 10 स्टेशनों वाला यह कॉरिडोर पश्चिम, मध्य और पुरानी दिल्ली को जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद सड़कों पर यातायात का दबाव कम होने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और गाजीपुर, ओखला तथा भलसवा अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। महापौर ने बताया कि ओखला अपशिष्ट निपटान क्षेत्र पर अब तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन लेगसी वेस्ट का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, जबकि लगभग 15 लाख मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के कार्य का तीव्र गति से जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि ओखला और भलसवा अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों को इस वर्ष दिसंबर तक तथा गाजीपुर अपशिष्ट निपटान क्षेत्र को अगले वर्ष दिसंबर तक समाप्त करने का लक्ष्य है। श्री वाही ने कहा कि वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिल्ली को स्वच्छ, हरित और अपशिष्ट मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम तेजी से कार्य कर रहा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों के पंजीकरण में स्टैंप ड्यूटी की चोरी रोकने और संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए के पंजीकरण संबंधी नियमों को और सख्त बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी सब

0: रजिस्ट्रारों को जीपीए दस्तावेजों की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और बच्चों जैसे रक्त संबंधों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित जीपीए को पंजीकरण से पहले अनिवार्य रूप से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर 30 दिनों के भीतर कारण सहित तर्कसंगत लिखित आदेश पारित करेगा। जांच में विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि कहीं दस्तावेज में किसी प्रकार के पैसे के लेन देन, संपत्ति का कब्जा सौंपने, जीपीए अपरिवर्तनीय और संपत्ति को बेचने, उपहार देने, ट्रांसफर करने या बंधक रखने का स्थायी अधिकार तो नहीं दिया गया है। पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रत्येक सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ऐसे मामलों का अलग रजिस्टर रखा जाएगा और उसकी मासिक रिपोर्ट भेजी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य जीपीए के माध्यम से कम स्टाम्प शुल्क पर संपत्ति की बिक्री, कब्जा, हस्तांतरण या मालिकाना हक का अवैध हस्तांतरण रोकना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा और प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा आयोजित इस आयोजन को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। यह आयोजन वस्त्र फैशन निरंतरता, तकनीक, नवाचार, निवेश और विश्व बाजार में भारत के संपूर्ण वस्त्र उद्योग की व्यापकता और विविधता को एकीकृत वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में 140 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत टेक्स के तीसरे सत्र में वैश्विक कपड़ा उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता और अन्य हितधारक शामिल होंगे। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है।
2: हथकरघा हैकेथॉन का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। विद्यार्थी, स्टार्टअप, शोधकर्ता, डिजाइनर, उद्यमी तथा हथकरघा पेशेवर पंजीकरण करने के साथ अपने विचार www.youthideathon.in/handloom पर साझा कर सकते हैं। चुनी हुई टीमें 1 अगस्त को अपने समाधान ज्यूरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसका आयोजन IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन ट्रांसफर में होगा। इस पहल के बारे में वस्त्र मंत्रालय में हथकरघा मामलों के विकास आयुक्त डॉक्टर एम वीना ने बताया कि हथकरघा हैकेथॉन का उद्देश्य देश की युवा रचनात्मकता को हथकरघा क्षेत्र की समृद्ध विरासत के साथ जोड़ना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के सदस्यों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि दिल्ली सदियों से देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रही है और आज वैश्विक कूटनीतिक तथा प्रौद्योगिकी संचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज आईटी विभाग की समीक्षा बैठक में डिजिटल क्षमता निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आईटी प्रशिक्षण लैब और प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि विकास भवन 2 का AI आधारित आईटी प्रशिक्षण प्रयोगशाला उद्घाटन के लिए तैयार है और जल्द ही सरकारी अधिकारियों को डिजिटल प्रशासन तथा AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से स्टार्टअप, नवाचार और बेहतर जनसेवा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश व्यास ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बच्चों के अधिकार की सुरक्षा और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और भरोसेमंद वातावरण विकसित करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

0: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेस्ट वाइज सिटीजन्स नामक नागरिक जागरूकता पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर NDMC अध्यक्ष केशव चंद्रा ने पुनर्चक्रण योग्य कचरे के घर घर संग्रह के लिए रिड्यूस रिसाइकल रीयूज RRR ऑन व्हील्स वाहनों को झंडी दिखाई। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने क्राफ्ट सस्टेन्स ट्रेडिशनल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक का लोकार्पण किया। यह पुस्तक भारत की शिल्प परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। पुस्तक में 19 शोध लेखों के माध्यम से भारतीय शिल्प परंपराओं के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और समकालीन विकास पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संशोधित पारगमन उन्मुख विकास TOP नीति के अंतर्गत भूमि विकास के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आवेदन DDA के ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम के माध्यम से किए जा सकेंगे। इस नीति के तहत मेट्रो क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली RRTS और रेलवे कॉरिडोर के आसपास 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें पहली बार करीब 80 वर्ग किलोमीटर नया क्षेत्र जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत के गिरने की खबर सामने आई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना शाम 4:19 पर मिली थी। विभाग ने बताया कि इस दुर्घटना में घायल दो लोगों को स्थानीय निवासियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं खबर लिखे जाने तक इस दुर्घटना में 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य मौके पर लगातार जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को रोहिणी के बुद्ध विहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 100 ग्राम उच्च स्तर की मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी अन्य 15 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वहीं ऐसे ही एक अन्य मामले में एक महिला आरोपी को 20 ग्राम से अधिक उच्च स्तर के मादक पदार्थ के साथ दिलशाद गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयन मंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का आयनित भाग है, जो संचार और उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में होने वाले दैनिक बदलाव, GPS और भारत की नाविक प्रणालियों जैसे संकेतों को प्रभावित करते हैं। मंत्रालय के अनुसार इस तकनीक से ऊपरी आयन मंडल की संरचना और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा भारतीय क्षेत्र के लिए अधिक सटीक आकलन उपलब्ध होगा। ये तकनीक विशेष रूप से भूचुंबकीय भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन मंडल की गतिविधियां अत्यधिक जटिल होती है। अक्षित वैद्यांत की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमीशा।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। राजधानी दिल्ली में आज हल्की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे। आज का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह और दोपहर के समय कई जगहों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई EV नीति की समीक्षा बैठक में कहा

ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण संबंधी नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत ढही, राहत और बचाव कार्य जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका। फिल्म संगीत के इस खूबसूरत कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां, और ये हसीन शाम और कुछ गुनगुनाते हुए ये गीत जिसका आप आनंद लेंगे। और कहते हैं ना कि जिंदगी में जब भी आप सिर्फ आगे के लिए सोचते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो छोर है वो उन यादों की तरफ ज़रूर रहता है जो पीछे गुजर गया, और वो छोर जो है वो ही हमारी ज़िंदगी को आगे लेकर जाने का एक कामयाब रास्ता भी हमें दिखाता है। और इस खूबसूरत शाम में जब आप उन लोगों को याद करते हैं जो मंजिल में आप तक पहुंच, आपका साथ देते हैं और उस मंजिल तक पहुंचने में आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, और यूं ही कहीं इसी हसीन शामों में उनकी ही यादों का कारवां निकल पड़ता है, तो उसी कारवां को याद करते हैं, उन्हीं यादों के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत गीत

अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में फिल्म आशिकी से। दोस्तों कहते हैं कि प्यार का जो एहसास होता है वो कुछ इस तरह होता है कि शब्दों से आप बयां कर सकें ना कर सकें, लेकिन कुछ ऐसे संगीत होते हैं जिनसे बयां करना आसान हो जाता है और कुछ ऐसे ही बातें दिल की बयां करता है ये अगला गीत।

कभी कभी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ खामोशी में महसूस किया जा सकता है। रात की तन्हाई हो, चांदनी रात हो, और उस धीमी रोशनी में अपनों की याद हो, तो बस दिल यही चाहता है कि वो साथ बैठें, पास बैठें, और ऐसे में उस शख्स की याद छुपके से आकर बैठ जाती है आपके पास।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दिल की धड़कन कुछ अलग कहानी कहने लगती है। वजह समझ में ही नहीं आता, लेकिन मुस्कुराहट अपने होठों पर जरूर रहती है और लगता है कि किसी की एक झलक ने पूरे दिल की रंगत ही बदल डाली। कुछ अनकहे एहसासों और मासूम सी बेचैनी को बयां करता है ये अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

तो कार्यक्रम गीत मालिका का ये सफर एक कहते हैं कि इस पड़ाव पर पहुंच गया है कि जहां से आप इस कार्यक्रम से विदा भी लेंगे, और साथ ही जाते जाते सुनते जाइए ये खूबसूरत गीत। और कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं होती, ये हमारी किस्मत हमसे मिलवाती है। एक चेहरा, एक मुस्कान, प्यारी बातें और साथ, सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है कि दिल की धड़कन फिर से धड़कने लगती है और फिर शुरू होती है कस्मे वादे प्यार निभाने की, वो साथ वक्त बिताने की सारी बातें। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: तो इसी खूबसूरत गीत के साथ मुझे यानी तरन्नुम जहां को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्रुक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य अंगना संचिता उबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा

0: सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
4: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।

0: वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वर्णा नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
2: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्तेस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनज़ाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इआदा किया। दिफाई तहकीको तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइश परवाज की है। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है और विम्बल्डन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओ'नील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आज मेलबोर्न की पूरी फ़जा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगु भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने AR रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए महताब आलम।
0: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के CEOs के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तम से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरका प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: भारत और रूस ने आज अक्वाम मुत्तहदा ब्रिक्स EAG और शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ारत खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वज़ारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर खारजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया।

सतह पर तैयारी बनाने के इस संग मील से उड़ान नजरिए को मजीद तकवीत हासिल होगी, जिसका मकसद मेड इन इंडिया तैयारों में दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को मजबूत करना है। आज शाम कौमी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 16 के इलाके में एक इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मलबे के नीचे 4 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि आज सपहर 4:20 पर उन्हें इस हादसे की एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद जाय हादसे पर 6 गाड़ियां रवाना की गईं। इब्तदाई मालूम के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत के कुछ फ्लैट्स में तामीर नौ का काम जारी था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए मुंजमद कर दिए हैं। ये मामला गैर ईमानदाराना माली लेन देन और रुकूमात के मुश्तबा इस्तेमाल से मुतालिक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज बनाने से मुतालिक कानून 2002 के जाब्तों के तहत कल कोलकाता में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी थी। ये तलाशी की कार्रवाई शहरी हवाबाजी के शोबे में काम करने वाली एक निजी कंपनी से वाबस्ता मकामात पर अंजाम दी गई थी। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान एआईटीसी के बैंक खातों से निजी कंपनी और इससे वाबस्ता इदारे को तकरीबन 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। घरेलू हिस्सा बाजार में आज जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी असर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अनकरा में मुनाकिदा नेटो समिट के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात में मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदे मुजाकिरात जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मुजाकिरात के कामयाब होने के इम्कानात पर शुबा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक नई फौजी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि ये हमले आबनाए हुरमुज में तजारती जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक होर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तुयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीड की खिलाड़ी मार्ता कोस्तुयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी और पहली मरतबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीड की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से हराया और पहली मरतबा विंबलडन के सेमीफाइनल फाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। वह दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एल नीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
3: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है

0: वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ धन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए जुलाई 15 तक नहीं बो पाए लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इन्फॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होता है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस

0: रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एलिनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है
1: जी
0: और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, पर इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है,
1: जी
0: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, अब बैड वेदर है जब मतलब कि भाई अलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो है बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान ली 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सरवाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच

में कितना है? आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले

0: लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहाँ पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, तो वो एक बड़ी अच्छी बात हो। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे

0: एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में, जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है, वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा, दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूं, ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजर देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए, और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेंगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सके, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेन भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारे

0: मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली है, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार है, पढ़े लिखे भी है, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने

आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल सबाह से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, सेना और उद्योग जगत को इस अवधि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मार्टेंस्को और यूक्रेन की मार्ता कोस्यूक ने जैस्मिन पॉलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार सृष्टि सिन्हा की आवाज में भोजपुरी गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कार्तिक कुमार का राग दरबारी कान्ना में सितार वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का राग दरबारी कानड़ा में सितार वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने

और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रूपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पावलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रिया का स्नेह भरा नमस्कार। कभी रिमझिम फुहारे, कभी बादलों की गूंज और कभी धूप की हल्की सी दस्तक। दोस्तों, मौसम बदलता रहता है, लेकिन संगीत का जादू हर मौसम को और भी खूबसूरत बना देता है। मैं हूं आपकी अपनी प्रिया और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। और शुरू करते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

दोस्तों, कुछ लोग बारिश से बचते हैं और कुछ बारिश में याद बन जाते हैं। जिसके साथ भीगने का मन करे शायद वही दिल के सबसे करीब होता है। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म नमक हलाल से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नी लाल सागर, आशीष अमर, हितेश, राजेश रूबी, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना श्रीमती ओमवती भारती, खनक शुकुन, सारांश आयांश, आदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल वर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप सिंह, साथ ही अनिल शर्मा ने।

जी हाँ, बरसो रे मेघा, यूं ही गुनगुनाते रहो, धरती की प्यास के साथ दिलों को भी भिगाते रहो। कुछ यादें ताज़ा कर दो और कुछ सपने सजा दो, इस मौसम को भी और हसी बना दो। श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म गुरु से। इस गीत की फरमाइश की थी कालका दिल्ली से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। मेरठ से इस गीत की फरमाइश की थी दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति जया रिया और दर्शन भाई ने।

दोस्तों, प्यार हो, बारिश हो और दिलों का तालमेल हो, फिर हर मौसम किसी खूबसूरत गजल सा लगता है। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे खूबसूरत गीत फिल्म ताल से। इस गीत की फरमाइश की थी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, साथ ही शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल ने।

कि जिसमें अपने आप ही में आप बारिश में नहा लो, आप खुशी से पागल हो सकते हैं, आप झूम सकते हैं, और आपको किसी संगीत की जरूरत नहीं है बारिश में। उसकी बूंदों की, बारिश की, बारिश में जो हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, उसमें आपको खुद ही धुन मिल जाएगी और आपके पैर थिरकने लग जाएंगे। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म अनाड़ी से। इस गीत की फरमाइश की थी पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह गुरलाल, अविराज और पोत्रे गुरनूर सिंह ने, शुभदीप सिंह ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी महाराज से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद, गोविंदापुरम अहमदाबाद नगर से जुनेद मुजावर, साहिबा सबीहा माइकल जैनब मुजावर ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सिंदूर से। इस गीत की फरमाइश की थी श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ने। साथ ही वो एक संदेश बहुत अच्छा हमें लिखते हैं, बरसात केवल पानी का गिरना नहीं, बरसात केवल पानी का गिरना नहीं बल्कि प्रकृति का उत्सव है जो सूखी धारा को भी हरियाली देती है और मन को असीम सुकून पहुंचाती है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दो बदन से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज हुसैन, रिफाकत हुसैन। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा ने और मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुर, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ने।

कविता कृष्णामूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश ने। साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी एसपी सिंह, प्रियाशी, बेबी वेदांशी, मनीष, गीतांजलि, तनिष्का, रणवीर सिंह, राखी, मनु, प्रियांश और इशी ने।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म चलते चलते से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं।

0: श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। भारत और म्यांमार ने सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में संपन्न हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के उप मंत्री मेजर जनरल मिंथू ने किया। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में निलिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities Claire O'Neill upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khaled Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कार्यक्रम सुरों का सफरनामा लेकर मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां। जी हां, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। दोस्तों, जब हम बॉलीवुड सिंगर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत गंभीर चेहरे आते हैं, हाई नोट्स के गाने, क्लासिकल अंदाज। लेकिन आज सुरों का सफरनामा एक ऐसे फनकार के नाम है जो माइक के सामने आते ही बड़े कैजुअल से मूड में आते हैं, और जब वो गाते हैं तो उन गानों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कानों में मिश्री घुल रही है और एनर्जेटिक सॉन्ग्स के साथ आपके पैर यूं ही थिरकने लगते हैं। और साथ ही जब इन गानों को सुनकर जब आवाज आप पहचान लेते हैं तो आपके जहन में एक मासूम सा चेहरा नजर आता है जिसमें एक प्यारी सी स्माइल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात किस सिंगर की कर रही हूं। जी हां, मैं बात कर रही हूं हम सबकी आन बान और शान की। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं आज किस फनकार की बात को लेकर आपके साथ हूं इस कार्यक्रम में। जी हां, वो हैं शान यानी शांतनु मुखर्जी, और प्यार से हम इन्हें शान तो कहते ही हैं, और ये बॉलीवुड की एक शान है जिन्होंने बेहतरीन गाने दिए। और आज इस

वाह क्या बात है। और इस गाने में जो शान की आवाज़ में खनक है वो सीधे रूह को छूती है। और सुरों का सफ़रनामा जो कार्यक्रम हम आपके लिए लिख कर आए हैं, इसमें आप सुनेंगे शान की बेहतरीन आवाज़, कुछ चुनिंदा गाने। कह सकते हैं कि उनकी गानों में जो सहजता है, जो ठहराव है, वो साथियों ऐसे रातों रात नहीं आया। इसमें भी एक बहुत गहरा कनेक्शन है। 30 सितंबर 1972 को मध्य प्रदेश के खंडवा में शान का जन्म हुआ। जी हाँ, खंडवा, वही पावन भूमि जहां महान किशोर कुमार का भी जन्म हुआ था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, किशोरदा की तरह ही शान की आवाज में भी वही जिंदा दिली है, वही खुशबू है, वही खनक है, वही मोहब्बत है, जिसे आज हम बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इस चांद जैसे चेहरे में एक खनकती हुई आवाज सुनते हैं फिल्म से ये गीत।

शान को संगीत विरासत में मिली थी। उनके दादा जहरमुद्दीन मुखर्जी एक नामी शास्त्रीय गायक थे और इनके पिता मानस मुखर्जी 70 के दशक के एक बेहद प्रतिभाशाली संगीत निर्देशक थे। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। इतने महान लोगों के बीच जन्म हुआ था शान का और बचपन से ही संगीत की दुनिया में इन्होंने जो कदम रखा था वो बहुत कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड होता है। और जब शान सिर्फ 13 साल के थे तब उनके पिता का साया सिर से उठ गया और दुख की इस घड़ी में वो इतने उदास हो गए और ज़िंदगी के जब फ़लसफे उनको नहीं समझ आते थे, 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने घर को संभालना सीखा, अपने आप को संभालना सीखा। उनकी माँ का साथ हमेशा बना रहा। उनकी माँ सोनाली मुखर्जी ने सिंगर के तौर पर काम करके पूरे परिवार को संभाला और शान ने भी बहुत कम उम्र में अपनी बहन सागरिका के साथ विज्ञापनों में जिंगल्स गाना शुरू कर दिया था। क्या कभी सोचा भी नहीं था हम सबने कि शान जो एक प्लेबैक सिंगर बनेंगे वो अपनी ज़िंदगी में किन कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़े हुए और उन्होंने किस तरह अपने सबने मिलकर अपने घर को संभाला, आगे बढ़े। छोटे छोटे काम ही सही, कहते हैं कि कभी वो कोरियर सर्विस में भी उन्होंने हाथ आजमाया, प्रिंटिंग बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि घर में जो संगीत का माहौल था उसमें संगीत जो है शान का एक जीवन बन गया। और कहते हैं कि जब शुरुआत में वो जिंगल्स गाते और अपनी बहन के साथ कुछ संगीत की दुनिया में कदम रखते तो वहीं से उनकी ज़िंदगी में अपने करियर को पाने की चाहत जो है वो बढ़ती गई। और किस तरह से ये और गानों की जो दिलचस्पी है वो बढ़ती गई, किस तरह आगे बढ़े, बहुत कुछ जानेंगे। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शान की और उनके शुरुआती करियर की। तो वो जो दौर था, वो ज़माना था कैसेट्स और सीडी का, और एमटीवी चैनल भी, यहाँ पर पॉप सिंगिंग का बड़ा राज था। और 90 के दशक की बात हो रही है, तो वो दौर याद कीजिए जब पॉप म्यूज़िक का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। और साल 2000 में शान का एक सोलो एल्बम आया इसी बीच, जिसने एक अलग इतिहास रचा। एल्बम का नाम था तन्हा दिल, और इस गाने ने उस दौर के युवाओं के दिलों को ऐसा छुआ कि शान जो है वो रातों रात पॉप स्टार बन गए। इस गाने के लिए उन्हें एमटीवी एशिया म्यूजिक अवार्ड भी मिला। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस दौर के हर युवा की पहचान बन गया और हर युवा की आवाज बन गई, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर किसी नए शहर में कदम रख रहा है। और इस गाने को फिल्माया भी बड़े अच्छे अंदाज में था, कि शान ने लंबे बाल रखे थे, गले में एक सिंपल सा लॉकेट पहने, पीठ पर गिटार टांगे बस सड़कों पर चलते नजर आए। और वो एक ऐसा स्टाइल हिट हुआ कि कॉलेज के हर लड़के ने लंबे बाल रखने शुरू किए उसी स्टाइल में।

चलना फिरना शुरू किया और उनके गाने तो बस लोकप्रिय थे ही, उनके गाने हर रेडियो टीवी हर जगह बस सुनने को मिल जाते थे। और इस एल्बम ने शान को एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पहचान दिलाई, उन्हें एमटीवी एशिया म्यूजिक अवार्ड से नजारा नवाजा, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और शान का ये स्टाइल आज भी बहुत पसंद किया जाता है और वो हमेशा ऐसे ही, जब भी शान का चेहरा सामने आता है, शान का हम नाम लेते हैं, तो ये स्टाइल इतना पसंद किया गया कि आंखों के सामने बस उनका ये अंदाज बिल्कुल ऐसे ही आ जाता है। तो चलिए इस गाने को हम भी याद करते हैं और सुनते हैं, तन्हा दिल।

जी हाँ साथियों, तन्हा दिल की यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, पॉप वर्ल्ड में जो इस गाने से तहलका मचा, इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया। बॉलीवुड के दरवाजे शान के लिए पूरी तरह खुल चुके थे। वैसे तो उन्होंने फिल्म परिंदा में एक लाइन गाकर शुरुआत की थी, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में उनको पहला बड़ा ब्रेक मिला। और जब उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में गाना गाया तो उनकी उम्र महज 17 साल की थी। 1989 में आई फिल्म परिंदा के लिए उन्हें एक ही लाइन गाने का अवसर मिला था, और इस दौरान उन्होंने आरडी बर्मन का गाना रूप तेरा मस्ताना का रीमेक गाया था, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। और साल 1999 में शान ने भूल जा गाना एक लिखा, और इसको दर्शकों ने भरपूर पसंद किया, बहुत प्यार दिया। इन्होंने एल्बम में भी गाना शुरू कर दिया था। कई फिल्मों में इसके बाद उनको गाने का मौका मिला, और 1999 में ही फिल्म प्यार में कभी कभी के लिए इन्होंने कई गाने गाए, जिसमें से बहुत प्यारा ये गाना है मुसू मुसू हासी। हम इसे जरूर सुनेंगे। और इस जानते हैं, इस गाने के बाद उन्होंने लगान, साथिया, हम तुम, लक्ष्य, फना, भूल भुलैया, ओम शांति ओम जैसे बहुत सारी फिल्मों में सुपरहिट गाने गाए। और जब से तेरे नैना, सांवरिया फिल्म का यह है, शोना, बहती हवा सा था वो, ये जो सदाबहार गाने हैं वो आज भी हर समय सुनने वाले हैं और बहुत पसंद करते हैं। और जब हमने बात करी मुसू मुसू हासी की, तो इस गाने को तो ज़रूर ही सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो लगातार इस गाने को सुनते हैं, हर रोज़ सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गाने कहीं खो ना जाएं, कहीं हम इन्हें भूल ना जाएं, तो इसलिए मैं ज़रूर इस गाने को आपको सुनवाऊंगी।

दोस्तों, इन्होंने बहुत बेहतरीन गाने गाए और अपने शुरुआती करियर के दौरान इन्होंने इतने बेहतरीन गाने गाए कि आज भी हम उनको सुनते हैं। 2001 में आई फिल्म दिल चाहता में है, इस फिल्म में भी उन्होंने कई गाने गाए, जैसे वो लड़की है कहाँ, जिसे ढूंढता है दिल घड़ी घड़ी, या फिर कोई कहे कहता रहे। इन गानों ने तो जैसे कमाल ही कर दिया था और शान बॉलीवुड के यूथ आइकन बन गए। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? वर्सेटिलिटी। जी हाँ, उनके गानों में इतनी विविधता होती है, इतना अलग अलग वो संगीत देते हैं, इतने अलग अलग आवाज़ों में, अलग अलग स्टाइल में वो गाते हैं कि बस हर गाना एक दूसरे से जुदा लगता है। एक तरफ वो दस बहाने और शिकदुम में बहुत ही हाई एनर्जी के क्लब सॉन्ग्स गाते हैं, तो दूसरी तरफ ब्लैकमेल या फिर कह सकते हैं कांटे, इन फिल्मों में वो उन्होंने बहुत सॉफ्ट सॉन्ग भी गाए हैं जो बहुत मासूमियत से, बहुत प्यार से इन्होंने जो संगीत दिया, इन्होंने जो गाया है, जैसे अपनी आवाज़ दी, जो अपने एक स्टाइल दिया है, उसको आज बहुत पसंद किया जाता है। क्या आपको पता है कि जब भी ये हम गाना सुनते हैं कि वो लड़की है कहाँ, तो कहीं ना कहीं हम शान का चेहरा जो है हमारे जहन में अपने आप ही आने लगता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, शान सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि वो छोटे पर्दे के भी बेताज बादशाह रहे हैं। और याद कीजिए सारेगामा पा का वो दौर जब शान स्टेज पर आते थे तो अपनी हाजिर जवाबी, शालीनता और जो भी बढ़ावा देने के जो अंदाज होते हैं वो उनसे वो सबका दिल जीत लेते थे। उन्होंने द वॉइस ऑफ इंडिया भी होस्ट किया। बॉलीवुड में उन्हें सबसे नो कंट्रोवर्सी और सबसे शांत इंसान माना जाता है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और उनकी लाइफ पार्टनर राधिका ने भी हर कदम पर उसका साथ दिया। और बात करें उनके फिल्में करियर की तो उन्होंने बहुत हिट गाने भी दिए और उन हिट गानों में बहुत एक लंबे लिस्ट है और कोशिश भी की है हमने उन चुनिंदा गानों को आपको सुनवाने की। और कहते हैं ना कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनसे आपको सारी दुनिया याद करती है और आपको पुरस्कारों से भी नवाजा जाता है। तो आपको पता है कि जब से तेरे नैना का ये जो गाना है जिसमें फिल्म सावरिया से जिसमें रणबीर कपूर ने बड़े ख़ास अंदाज में डांस भी किया और शान ने उसको आवाज़ दी, तो रणबीर की भी ये पहली फिल्म थी और जो आवाज़ शान की थी उस गाने को बहुत हिट बना दिया गया। और इस गाने के लिए शान को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। तो चलिए उसी मस्ती में हम भी डूबते हैं और सुनते हैं ये सुपरहिट ट्रैक।

वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, खासकर तब जब सुरों की महफिल सजती है, कोई एक अच्छा कलाकार होता है और होते हैं आप और हम और कुछ चुनिंदा गीत। दोस्तों, आज सुरों का सफरनामा जो है कार्यक्रम, इसमें हमने जिया है शान की खूबसूरत जिंदगी को, उनके सफर को, एक ऐसा कलाकार जिसने हमें मुस्कुराना सिखाया, जिसने हमें प्यार करना सिखाया और जिसने अपनी आवाज़ से हमारी ज़िंदगी के कई पन्नों को यादगार बनाया। आज भी जब शान स्टेज पर आते हैं तो वही 90 के दशक वाली एनर्जी जो है और उनका मासूम चेहरा, उनकी मुस्कान स्टेज पे एक अलग जादू बिखेरती है और वो सबके चहेते बनते हैं।

तो कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आज हम बात कर रहे थे प्लेबैक सिंगर शान की, और बिल्कुल शान की जो जादुई आवाज़ है वो कभी नहीं मिटने वाली, उनकी जो मुस्कान है वो आज पूरी दुनिया में हमेशा यूं ही बरकरार रहे, और उनकी धुनों पर, उनके गीतों पर हम यूं ही नाचते रहें। और बॉलीवुड में उनकी आन जो है हमेशा बरकरार रहे, उनकी बादशाहत हमेशा बरकरार रहे। और इसी खूबसूरत गीत के साथ इस कार्यक्रम को मैं तरन्नुम जहां यहीं संपन्न करती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत

0: करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद को भी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तंबाकू कंपनियों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुरंत खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अमरावती में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि तंबाकू का मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही कंपनियों को अपने खरीद संबंधी वादे पूरे करने के निर्देश दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची से हटाने के फैसले की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये अमेरिका और सीरिया के रिश्तों में एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सीरिया की नई सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजों की चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australia counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. India and Russia yesterday reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs, C.B. George and Deputy Foreign Minister of Russia, Dmitry Lubinsky, co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups and their proxies and affiliates. Defence Research and Development Organisation, DRDO, yesterday conducted a successful flight test of Pinaka Long-Range Guided Rocket, LRGR, at the Integrated Test Range, Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. Defence Minister Rajnath Singh congratulated DRDO.

आप सुन रहे थे मुकेश और गीता रॉय की आवाज में ये गीत फिल्म बावरी नैन से। आइए सुनते हैं मुकेश की ही आवाज फिल्म बेकरारी से।

करते हैं दुआएं मांग रहे हाय हाय दुआएं मांग रहे हैं असर को।

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता

अभी आप सुन रहे थे बूट पॉलिश से ये गीत, आवाज़ आशा भोसले और मन्ना डे की। आइए सुनते हैं अगला गीत इस कार्यक्रम के अंतर्गत शमशाद बेगम की आवाज़ में, फिल्म नगमे से।

आप सुन रहे हैं पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनहरे। आइए सुनते हैं अगला गीत मुबारक बेगम और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म श्री 420 से ये गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म चंद्रकांता से।

0: महाराज दिलजीत सिंह घोड़े पर सवार अकेले पश्चिम की तरफ जा रहे हैं।
1: शुभ अवसर जी, राजा बापू महाशंकर के मंदिर जाया करते हैं, ये हमारा पुराना रिवाज है।

0: झूठे महाशंकर, आज तेरा ये भक्त अपनी भक्ति के फूल आखिरी बार तेरे चरणों में चढ़ाने आया है। लड़ाई जीतने में मुझे इतनी खुशी न मिलती जितनी हार मानने में मिली। हे महाशंकर, तेरी दया से तेरा ये भक्त सपनापुर जीत सकता था, कुमार का सिर काट कर तेरे चरणों में चढ़ा सकता था।
1: और इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आइए अब सुने हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों की उनकी उपज को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा

0: खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रूपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमरीकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया के पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमरीकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार हैं। इस फैसले को लागू होने से पहले अमरीकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजों चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australia counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. India and Russia yesterday reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SEO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary, West Ministry of External Affairs, Sibi George, and Deputy Foreign Minister of Russia, Dmitry Lubinsky, co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorist groups and their proxies and affiliates. Defence Research and Development Organisation, or DRDO, yesterday conducted a successful flight test of Pinnacle Long Range Guided Rocket, or LRGR, at the Integrated Test Range, Chandipur in Orissa. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. Defence Minister Rajnath Singh congratulated DRDO, the Indian Army and the industry on the successful flight test. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national-level meeting between India and Myanmar concluded yesterday in New Delhi. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency, narcotics trafficking, arms smuggling, human trafficking, wildlife trafficking, cybercrime, and other forms of organized crime. They also agreed to enhance intelligence sharing and operational coordination and undertake capacity building initiative to address shared security challenges effectively. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh

0: नॉन स्टॉप फिल्मी गीतों पर आधारित ये प्रोग्राम यहीं संपन्न करते हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया आर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96

हजार मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमरीकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया के पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमरीकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार है। इस फैसले को लागू होने से पहले अमरीकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में गजल, ये अलग बात है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं सिरगाजी एस गोविंद राजन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कल्याणी जो आदिताल में निबद्ध है। आपके साथ वलन पर संगत किया है थिरुपर कादल एस वीरा राग रवन ने। संगीत दिया है श्री रंगम ने, श्री रंगम रंगा स्वामी पिल्लई ने। तो लीजिए सुनिए सिरगाजी एस गोविंद राजन का गाया रागम कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे सिर राग गाजी एस गोविंद राजन। आपने प्रस्तुत किया रागम कल्याणी जो आदिताल में निबद्ध था। आपके साथ वलन प्रसंगत किया थिरु पर कादल एस वीर राघवन ने। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग, कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। पांच बजकर 20 मिनट पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। 5:30 बजे का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित मधु मुदगल से गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग भटियार। सुबह 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। आज आप सुनेंगे भगवान महावीर के दर्शन पर विचार। 6:45 पर सुनिएगा रामचरित मानस से पाठ। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 111। 6:55 पर संस्कृत में

समाचार होंगे और उसके बाद सुनेगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शाहरुख हसन के गाए भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम का समय रहेगा। 8:45 पर सुनिएगा सितार वादन। कलाकार होंगे मेहतल अली खान। आप प्रस्तुत करेंगे राग अलहिया बिलावल। 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा एनालिटिक्स से उद्योग और शिक्षा का बढ़ता समन्वय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेरणा गौड़, कैंपस निदेशक नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली और संस्थापक निदेशक एवं सदस्य सचिव अटल इनक्यूबेशन सेंटर NSUT।

0: साढ़े 9 बजे सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये प्रस्तुत करेंगी हरजीत कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर स्वरांजलि कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नौटंकी में किस्सा राजा हरिश्चंद रानी तारामती। संचालन करेंगे कमल किशोर बड़ाई। साथियों, आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा दीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुदरा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के कोटा में श्री गडकरी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन प्वाइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा

0: केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87,000 मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल है। खोपरा की पूरी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जाएगी। स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रूपये से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत शिक्षकों और उनके परिवारों को 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हमलों से युद्ध विराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Melbourne, Australia on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival yesterday. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. India has expressed deep concern over the recent attacks and escalation of tensions in West Asia. The External Affairs Ministry said that these developments risk undermining regional peace, security and stability. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions and ensure protection of civilians as well as the uninterrupted flow of energy supplies and commerce. New Delhi has urged the parties to return to dialogue and diplomacy to achieve a peaceful and lasting solution to the conflict. This comes after the US carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national-level meeting between India and Myanmar concluded in New Delhi yesterday. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency, narcotics trafficking, arms smuggling, human trafficking, wildlife trafficking, cybercrime and other forms of organized crime. The Indian Space Research Organization, ISRO, has successfully conducted a critical integrated main parachute airdrop test, IMAT, for the Gaganyaan missions at the Aerial Delivery Research and Development Establishment, ADRDE, drop zone in Shyopur, Madhya Pradesh. ISRO said that the objective of the test was to qualify the main parachute for its structural

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीथ आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं।

करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं विष्ठ की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से चंगा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं। पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें, श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित मधु मुदगल का गायन। आपने प्रस्तुत किया है राग भटियार। आपके साथ तबले पर संगत किया है शेर प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर साथ दिया है समर ने। विलंबित ख्याल एक ताल में और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तो लीजिए सुनिए पंडित मधुप मुदगल का गाया राग भटियार।